0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः

0: प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मिनट पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुप्रभात, लेकर आपके साथ होंगे गौतम गौर। 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। सात बजकर 5 मिनट पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ रहेंगे निखिल कुमार और 8 बजे गौतम गौर। 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे निखिल कुमार। 10 बजे समय रहेगा हिंदी समाचार का।

10:05 पर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक लेकर आपके साथ रहेंगी अतिथि बेस्ट। बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुनेंगे रंजन अरनेजा के साथ। 12 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक में आपके साथ रहेंगी अदिति बिस्ट। एक बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 1:05 पर प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग लेकर आपके साथ रहेंगे रंजन। 2 बजे प्रोग्राम आशियाना के साथ गीतिका उनियाल आपके साथ होंगी। 3 बजे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर फॉलोइंग प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी श्वेता शर्मा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों

0: कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: पेश है प्रायोजक प्रोग्राम।
3: This program is sponsored by SR Media Academy.
4: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेस द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हमारा पिता परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, जिसकी महिमा आकाश लोक हो या पृथ्वी, हर तरफ

विद्यमान है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम से जहां दो या तीन एकत्रित होते हैं वहां मैं मौजूद रहता हूं, और जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब हम अपने लबों से अपने प्रभु की महिमा करते हैं, तो बीमारी हो या आर्थिक समस्या हो, मुश्किल हालात हो या फिर किसी भी तरह की परेशानी हो, ये सारे बंधन टूट जाते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु पिता परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ मुमकिन है।

जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारा पिता परमेश्वर हमसे हमारे सोचने से ज्यादा मोहब्बत करता है और इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि हम सब नजात पा सकें।

जी हाँ, हमारे प्रभु की मोहब्बत बेमिसाल है। हम उसकी जितनी भी तारीफ करें या उसकी महिमा के गीत गाएं, वो कम होंगे। इसीलिए निरंतर उस पर भरोसा रखकर उसकी आराधना करते रहें। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: ये हमारा दिल ही तो है जो आपके दिल में मुकाम देखता है। एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम, हाजिर हो चुका है स्टूडियो में।
1: पत्थर के

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर कैसे तू आसमान देखता है।

दुनिया झूठे हैं ये सच्चे हैं, सपने आखिर सपने हैं, और सपनों को साकार करने के लिए आपको जागना पड़ता है। जैसे मैं जाके आ गया हूँ स्टूडियो में, 6:24 हो चुके हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसा है सबका हालचाल, सुप्रभात लेकर हाजिर हो चुका हूँ मैं। एंड कहा जाता है कि यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और यूं ही कुछ किए बिना हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना रोशनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, है ना। कुछ स्टोरीज हैं जो आपके समक्ष लेकर आया हूं और सुनाऊंगा थोड़े अपनी मधुर वाणी में। अक्सर कहते हैं कि अपनी मर्जी का हो जाए तो बहुत अच्छा।

होता तो फिर वो ऊपर वाले की मर्जी का होता और वो बेहतरीन होता है। नागार्जुन एक कवि है बिहार के, और उनकी कुछ लाइनें हैं कि जो पूर्ण नहीं हो सके काम, उनको करता हूं मैं प्रणाम। अक्सर लाइफ में ऐसी ढेर सारी चीजें होती हैं जो आज घटित नहीं हो रही, लेकिन आपको लगता है कि अरे ये अगर आज घटित नहीं हो रही तो मेरा कल्याण कैसे होगा। अरे रुको जरा, सबर करो, अभी अभी तो आए हो और ढेर सारी कहानियां लेकर आए हूं आपके लिए, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे क्या

में ऐसी ढेर सारी चीजें होंगी जो पहली बार होंगी, और ट्राई करने से कभी पीछे रहना मत, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं लर्निंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। या तो मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं। कि मैं टूटा तो सही लेकिन हो गया काबिल, चलो इस हार से कुछ तो हुआ है सर। एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। कहते हैं कि जब ऊपर वाला आपको काफी कुछ देना चाहता है ना, लाइफ में कामयाब बनाना चाहता है, तो आपकी परीक्षा बहुत लेता है। आपको जीरो से, शून्य से दोबारा शुरू करना पड़ता है कि मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। अब आफतों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं। दरअसल एक बच्चे की पेंसिल टूट जाती है और वो उदास हो जाता है। उदासी आई जाती है ना लाइफ में, अगर कोई चीज ना मिले तो फिर ऐसा लगता है कि दी एंड है, इसके बाद क्या होगा। अरे रुको, जरा सबर करो, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वो बच्चा काफी निराश था और शिक्षक ने कहा कि पेंसिल टूटी है, खत्म नहीं हुई, इसे फिर से तराशो और लिखना दोबारा शुरू करो। जीवन में मुश्किलें अंत नहीं होती दोस्तों, नई शुरुआत का मौका मिलता है आपको। तो कभी भी जीरो से स्टार्ट करने में घबराओ मत, है ना। ये हमारे टीचर कहा करते थे कि जो जीरो से टकराएगा वो जीरो ही बन जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि जीरो से हीरो तक का सफर है, और ये सफर अभी भी जारी है।

कि सितारों से आगे जहां और भी हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नहीं नहीं, यहां पर कोई इम्तिहान नहीं है, दिल से दिल तक का ये रास्ता है और रास्ता एकदम क्लियर है। तो 102.6 FM सुप्रभात, सुन रहे हैं आप आरजे गौतम के साथ। एंड हम बातें कर रहे थे ना कि कहते हैं कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल मैं मंजिल लिख दूंगा। छोड़ दें दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। जहां चाह है वहां राह है, और हम भी दरिया हैं, कि हम भी दरिया हैं, जिस तरफ चल देंगे वहीं से रास्ता बन जाएगा। दरअसल ये कहानी है कि नदी का रास्ता वो खुद तय करती है। कैसे? कि एक नदी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं है। वो कभी उनके ऊपर से, कभी आसपास से बहती हुई आगे बढ़ती रहती है ना? तो इसलिए राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, और हिम्मत तो रखनी पड़ेगी आपको। तेरा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे से खुजा समुंदर टकराएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बाधाएं रास्ता रोकने नहीं, नया रास्ता

सिखाने आती है और सीखने ही तो है। या तो मैं जीत जाता हूं या फिर मैं सीखने की कोशिश करता हूं। नेवर एंडिंग प्रोसेस।

टॉप ऑन द टॉप। और यही तो सबकी ख्वाहिशें होती हैं, और ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा है। कई बार यूटर्न होकर आना पड़ता है ना आपको वापसी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सपने देखते रहिए। और सपने वो है जो आप आंखें बंद करके ना देखें, बल्कि उन्हें पूरे करने के लिए आपको जागना पड़ता है, माफ कीजिएगा, और जागने के साथ साथ बहुत मेहनत करके भागना भी पड़ता है। Wake up in the morning and be someone else is the best way of living. For an entertainer, entertainment तो हम करते ही हैं आपका। 6:46 हो चुके हैं and 102.6 FM सुप्रभात सुन रहे हैं आरजे गौतम के साथ। तो सपनों की हम बातें कर रहे थे, और सपने जो हैं वो कोई फर्क नहीं देखते हैं, क्या अमीरी क्या गरीबी, सपने देखने का और उन्हें सच करने का अधिकार तो हर किसी का है ना। तो एक गरीब लड़का सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, फिर आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या आर्टिस्ट क्यों ना बने। वो लड़का सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। लोगों ने उसको बहुत कोसा, उसका बहुत मजाक उड़ाया। कहते हैं जिस पर यह जग हंसा है उसी ने ही तो इतिहास रचा है ना। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो संघर्ष में लगा रहा। एवर ट्राइड एवर फेल, ट्राई अगेन ट्राई बेटर फेल बेटर। और वर्षों की तपस्या के बाद वही लड़का बड़ा अधिकारी बन गया। कुछ भी हो सकता है यहां पर, इससे हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां नहीं हौसला इंसान को सफल बनाता है। तो हौसला तो रखना ही पड़ेगा आपको।

आपको कि आपको लाइफ में अगर बदलाव चाहिए तो फिर बदला थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा आपको। चेंज इज कॉन्स्टेंट। और अगर ऊपर वाला आपके नेस्ट को शेक कर रहा है, मतलब वो उड़ान की तैयारी में आपको, इज प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बिग फ्लाई। इसीलिए कहा जाता है कि डरना छोड़ो और करो तुम भी कुछ ऐसा काम, कह पाओ खुलकर देखेंगे हो जो भी अंजाम, होगा जो अंजाम किसी का तो हित सद पाएगा और दोष खोजने वाले निर्दोषों का दिन आएगा। किंतु कहीं यदि एक किरण भी साहस की फूटी तो फिर किसे पता किसका साहस क्या

बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं और हम भी आपसे कितना प्यार करते हैं। 102.6 FM सुप्रभात, आरजे गौतम के साथ। और कहते हैं कि खोने के लिए जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो पाने के लिए पूरा आसमान होता है। और जाकिर खान की कुछ लाइनें हैं कि हम भूख के सताए हुए बच्चे हैं, एक दिन आएगा कि सब कुछ खाएंगे और घर से निकले हैं तो इतिहास रच कर ही जाएंगे। घायल हैं इसलिए घातक हैं। वेल, मेरा साइन आउट करने का समय आ गया है। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर निखिल कुमार होंगे आपके साथ और फिर से मुलाकात होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में

0: किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ शुरुआत हो चुकी है इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और इस प्रोग्राम में हम आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, शुरुआत करते हैं उन बातों से जो इतिहास से संबंधित होती हैं। आज 28 मई का दिन है, कई मायनों में खास है। कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपको मैं बताता हूं। तो आपको ये जानकारी देते हैं कि वर्ष 1934 में आज के दिन ही कनाडा के ओंटारियो में ओलिवा और एल्जायर डियोन के घर में 5 बच्चों ने जन्म लिया था। और लिखित इतिहास में ये पहला ऐसा मौका था जब एक साथ पैदा हुए

ये पांचों बच्चे जीवित रहे थे। वर्ष 1959 में आज के दिन ही दो अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की थी। वर्ष 1961 में आज का दिन था जब मानव अधिकारों के संरक्षण और दुनिया को इनके बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई और इसे 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें कि वर्ष 1967 में ब्रितानी नाविक सर फ्रांसिस चिटचेस्टर 65 साल की उम्र में अकेले नाव में दुनिया का चक्कर लगाकर अपने घर पहुंचे थे। और श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 1970 में आज के दिन ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का औपचारिक तौर पर विभाजन हुआ था। और वर्ष 1996 में आज के दिन ही रूस चेचेनिया को अधिकतम स्वायत्तता देने पर सहमत हुआ था। और आपको बता दें कि आज का ही वो खास दिन था जब वर्ष 1958 में मुंबई महापालिका ने 75 वर्ष पूर्ण होने पर वीर सावरकर का सम्मान किया था। और इससे पहले वर्ष 1926 में नागपुर में मोहिते के बाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा को प्रारंभ किया गया था। तो ये ऐसी प्रमुख घटनाएं थी जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान बनी हुई है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। एक बहुत प्यारा सा गीत आपके लिए है।

0: हर्षिता आइए अब सुनते हैं हमारी खास प्रस्तुति आकाशवाणी पर।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एच 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान आकाशवाणी देश के लिए सबसे विश्वसनीय सूचना तंत्र और मनोबल बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में उभरा। विशेष रूप से कोलकाता केंद्र ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसी केंद्र से स्वतंत्र बांग्लादेश सरकार के गठन की पहली आधिकारिक

0: घोषणा प्रसारित की गई थी। संवाददाता सुरजीत सिंह की प्रभावशाली रिपोर्टिंग और समाचार वाचक मेलविल डिमेलो की ओजस्वी आवाज इस युद्ध के दौरान देश के लिए भरोसे का प्रतीक बनी। ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की खबर भी आकाशवाणी के माध्यम से ही पूरी दुनिया तक पहुंची। इस अद्वितीय योगदान के लिए 27 मार्च 2012 को बांग्लादेश सरकार ने ढाका में एक विशेष समारोह आयोजित कर आकाशवाणी को सम्मानित किया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी @90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: और श्रोताओं, तो आपको बता दें कि आज मनाया जा रहा है एमएनएसटी इंटरनेशनल डे, जो कि पिछले लगभग 6 दशकों से हर वर्ष 28 मई को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये उन लोगों के बारे में एक वैश्विक आंदोलन है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अन्याय सहा है, और ये सभी मिलकर एक ऐसी दुनिया के लिए अभियान चला रहे हैं जिनके पास सभी मानवों के पास लगभग एक समान अधिकार हो। और आपको बता दें कि दुनिया भर में बाल श्रम जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के बारे में बात हो, या फिर विवाह की स्थिति को लेकर के बात करनी हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की बात करनी हो, तो इस तरह की जो कोशिशें हैं उसे आगे बढ़ा रहे हैं तमाम संगठन, और इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल डे को भी मनाया जाता है। और आज जब हम बात कर रहे हैं जानी मानी हस्तियों को, तो श्रोताओं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज हम याद कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर को, जिन्हें हम सभी वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। आज उनकी जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी, साहित्यकार, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक रहे हैं, और उनमें देशभक्ति की भावना अत्यंत प्रबल थी, और उन्होंने युवाओं को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी। और श्रोताओं, आपको बता दें कि वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की और लंदन में रहकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया। सावरकर ने ही 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बनाया, और इस विषय पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। और आपको बता दें कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर अंडमान की सेलुलर झील, जिसे काला पानी कहा जाता है, उसमें 2 आजीवन कारावास की सजा दी थी। जेल में उन्होंने अत्यंत कठोर यातनाएं सहन की, लेकिन उनका राष्ट्र प्रेम और आत्मबल कभी भी कमजोर नहीं पड़ा था। वीर सावरकर को एक प्रखर लेखक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने हिंदी और मराठी में अनेक कविताएं, लेख और पुस्तकें लिखी थी। तो श्रोताओं, फिलहाल अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पर आप बने रहें हमारे साथ आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए बजाएंगे खूबसूरत से गीत। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी का FM रेनबो 102.6।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है महबूब खान साहब की, जो कि भारतीय सिनेमा के एक बड़े फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेहद साधारण से परिवार से आने वाले महबूब खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म स्टूडियो में कुछ छोटे छोटे कामों से की, लेकिन अपनी प्रतिभा, मेहनत और दूरदृष्टि के बल पर वे भारतीय सिनेमा के एक सम्मानित फिल्मकार के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, ग्रामीण भारत, गरीबी, संघर्ष और मानवीय मूल्यों को अपनी फिल्मों का केंद्र बनाया। और आपको बता दें कि उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म रही मदर इंडिया, जो भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्मों में से गिनी जाती है और ये ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली भारत की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में भारतीय नारी के त्याग, संघर्ष और आत्मसम्मान को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। और इसके अलावा उन्होंने आन, अंदाज, अमर जैसी कई सफल और यादगार फिल्में बनाई थी। और महबूब खान ने मुंबई में महबूब स्टूडियो की भी स्थापना की, जो भारतीय फिल्म जगत का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है विजय सिंह पथिक की, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख वीर क्रांतिकारियों में से एक थे। आपको बता दें कि विजय सिंह पथिक अपनी युवावस्था से ही रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनके साथ मिलकर ही उन्होंने कई सारे आंदोलनों में भाग लिया था। फिलहाल एक ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं एफएम रेनबो पर, इसे आप एंजॉय कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है ये।

हर्षिता, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं गोपाल प्रसाद व्यास को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, व्यंग्यकार और हास्य रस के अप्रतिम रचनाकार माने जाते हैं। हिंदी हास्य व्यंग्य साहित्य में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। गोपाल प्रसाद व्यास ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज, राजनीतिक स्थितियों और मानवीय व्यवहार की विसंगतियों पर तीखा लेकिन मनोरंजक व्यंग्य किया। उनकी भाषा सरल, सहज और जन सामान्य से जुड़ी हुई मानी जाती, जिनके कारण उनकी रचनाएं आज भी लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। वे कवि सम्मेलनों के अत्यंत लोकप्रिय कवियों में गिने जाते थे और अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति, हास्य शैली और चुटीले अंदाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते थे। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं डीवी पालुस्कर की को, उनकी भी आज पुण्य उनकी आज जयंती है। और आपको बता दें कि वे भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के अत्यंत प्रसिद्ध प्रतिभाशाली गायक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका पूरा नाम दत्तात्रेय विष्णु पालुस्कर था। वे महान संगीताचार्य विष्णु दिगंबर पालुस्कर के पुत्र थे, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने में ऐतिहासिक योगदान दिया था। बहुत ही कम आयु में डीवी पालुस्कर ने संगीत की गहरी साधना शुरू कर दी और अपनी मधुर भावपूर्ण तथा अत्यंत शुद्ध गायकी के कारण वे बहुत ही जल्द संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। वैसे वे ख्याल शैली के लिए जाने जाते थे, लेकिन भजन और अन्य शास्त्रीय प्रस्तुतियों में भी उनकी प्रमुख पहचान रही। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आपके लिए, एंजॉय कीजिए इसे।

बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त अर्जुन निखिल के साथ में। और आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं एनटी रामाराव को, जिनकी आज जयंती है। वे भारतीय सिनेमा और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग को काफ़ी सफलता प्रदान की थी। आपको बता दें कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और बहुत ही जल्द अपने प्रभावशाली आवाज़, दमदार व्यक्तित्व और पौराणिक पात्रों के जीवंत अभिनय के कारण करोड़ों लोगों के प्रिय बन गए थे। विशेष रूप से भगवान राम, कृष्ण और कर्ण जैसे पात्रों की उनकी प्रस्तुतियाँ इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी कि लोग उन्हें वास्तविक रूप से देवतुल्य ही मानने लगे थे। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया और तेलुगु सिनेमा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिनय के साथ साथ वे एक सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे और बाद में उन्होंने राजनीति जगत में प्रवेश किया और 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना

और बहुत ही कम समय में जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त किया और फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। एक और खूबसूरत संगीत हम आपके लिए लेकर के आए आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर, इसे आप एंजॉय कीजिए। उसके बाद बातें होंगी कुछ खेल जगत के बारे में, खेल गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

और श्रोता, आपको बता दें, खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियों के बारे में, तो भारतीय महिला टीम इस वक्त दौरे पर है इंग्लैंड के, जहां पर आज पहला 2020 मैच होना है भारतीय महिलाओं और ब्रिटिश महिलाओं के बीच में, जो खेला जाएगा चैम्सफोर्ड में और लोकल टाइम यानी ब्रिटिश टाइम के अनुसार शाम को 6:30 बजे से। और आपको हम बता दें कि इस बीच आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम आयरलैंड के दौरे पर है, तो वहाँ बेलफास्ट में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें आयरलैंड ने गेंदबाजी का फैसला किया था और न्यूजीलैंड ने पहली पारी में अब तक 94 ओवर में 5 विकेट पर 361 रन बनाए थे, जिसमें रैचिन रविंद्रा ने शानदार 121 और टॉम ब्लंडल ने 142 रन की पारी खेली थी। अब थोड़ा सा आईपीएल की बात कर लें तो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में एलिमिनेटर मुकाबला जो हुआ, उसमें राजस्थान रॉयल्स ने 47 रन से जीत हासिल की थी। पहले राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए थे, जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम थी वो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि उतने रन नहीं बना पाई जितनी उसे ज़रूरत थी, और इस तरह से जीत उसने हासिल की थी। कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 19 ओवर और 2 गेंद में 10 विकेट पर 196 रन। और आपको ये भी बता दें, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में क्वालिफायर का जो दूसरा मुकाबला है वो कल खेला जाएगा। जी हाँ, ये होना है न्यू चंडीगढ़ में शाम को 7:30 बजे से। फिलहाल मुझे दीजिए कुछ देर के लिए अनुमति, आप बने रहें रेनबो पर।

0: वाणी आकाशवाणी
1: कि मेरी जमीन तुमसे गहरी रही है, वक्त आने दो आसमान भी देखना कितना ऊंचा होगा। वेल, वक्त हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर, और एनर्जेटिक होस्ट आपका दोस्त आरजे गौतम स्टूडियो में आ चुका है। एंड वैसे कहते हैं कि आसमान की तरफ देखना चाहिए अगर लिखनी हो कोई नई कहानी, लेकिन कहता रहूंगा मैं कि आप पीते रहिए, इतनी गर्मी ज्यादा हो गई है तो पानी पानी है ना। 102.6 FM, दिल से दिल तक।

हो गई है इतनी गर्मी, और इस गर्मी में फिर क्या शर्मा शर्मी, अगर थकान भी हो रही है तो। लेकिन अगर मौका मिला, अगर मौका मिला कभी, तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगा, मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगा, वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है, उसे एक झूठ के पीछे दबे हजारों बेबस तूफान लिखूंगा। नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे दुनिया में, मैं तो हार कर भी जो मुस्कुराया वो लहू लुहान स्वाभिमान लिखूंगा। लिखूंगा वो रातें जब तकिया गवा था मेरी सिसकियों का, पर सुबह उठकर फिर से पहना वो चट्टान जैसा इत्मीनान लिखूंगा। मैं लिख पाऊं कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा, और अपनी रूह के हर जख्म को अपनी ही सम्मान लिखूंगा। वेल, थकान आपको होनी नहीं चाहिए, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेटेड रखना कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर इतनी गर्मी में तो लुटपुट जाएंगे आप।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी।

0: को सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

102.6 FM, दिल से दिल तक। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं। और एनर्जी तो चाहिए ना लाइफ में, चाहे छुट्टी का दिन हो या फिर ऑफिस वाला।

ये आकाशवाणी है और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आरजे गौतम के साथ। और जैसा कि आपको पता ही है कि तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और सूर्य का ताप और कहीं ना कहीं भाप और ह्यूमिड हो जाते हैं ना, मतलब कहीं आप जब बाहर निकल कर जाते हैं ऐसे मौसम में तो आपको भी फील होता है कि आप कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही है, और उन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया है कि जितनी अधिक हो सके आप सावधानी बरतें, और हम भी यही कहेंगे कि सावधानी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और कृपया कोशिश करें कि स्वयं को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें, बॉटल कैरी करके चलें। ऐसे मौसम में आपकी पेशेंस जो है वो बहुत बड़ा सहारा आपका बन सकता है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें, और मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। ये बहुत जरूरी है और खासकर जब मौसम और भी गर्म हो रहा है, लेकिन यहां स्टूडियो में भी पार्टी वाली वाइब्स हो रही हैं, तो आप भी थिरकने के लिए तैयार हो जाएं, पार्टी तो बनती है।

पार्टी तो बनती है, पार्टी बिल्कुल बनती है, इसीलिए मैं कहता हूँ जुग जुग जियो और रज के पियो पानी, बिकॉज हाइड्रेटेड रखना अपने आप को काफी इंपॉर्टेंट है। और लिखनी है मेरी तरह एनर्जी के साथ कोई बड़ी कहानी तो फिर पीते रहिए पानी, है ना। अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेटेड रखिए और साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैंने आपको हीट वेव के बारे में तो बता दिया है, लेकिन अत्यधिक गर्मी से होने वाली परेशानी के बारे में भी बता देता हूं, जैसे चक्कर आना या ज्यादा थकान लगे तो ऐसे आसपास कोई भी व्यक्ति हो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज आप खुद भी ना करें अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो, और आसपास अगर किसी को है तो भी। यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को अचानक बेहोशी जैसा लगे, कमजोरी महसूस करे या फिर अस्वस्थ दिखाई दे तो उसे तुरंत किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, उसे पानी, ओआरएस या अन्य तरल पदार्थ दें और जिससे शरीर को राहत मिल सके। बच्चे, बुजुर्ग और धूप में काम करने वाले लोग इस गर्मी में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और समय रहते ध्यान न देने पर यह स्थिति बहुत गंभीर भी हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें, और ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर नहीं है तो 12 से 4 के बीच में बाहर ना जाएं। लेकिन एक बात कंफर्म है, यो मालव मालव।

वेल माय लव, तो मैं आपको बताऊं क्या है कि इस मौसम में बहुत सारे लोग शिरकत करते हैं पहाड़ों की तरफ जाना, लेकिन मुझे पसंद क्या है, केसरिया। अरे यार, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। वेल, दाल बाटी चूरमा, लेकिन राजस्थान वाले तो हैं सूरमा, और साबित कर ही दिया है। मैं इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ, सिग्नल तो एकदम क्लियर हो गया है। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 से बाहर हो गई और टीम को एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने 47 रन से हरा दिया, यानी कि 47 रन से हरा दिया। क्वालिफायर सेकंड की बात करें तो 29 मई को राजस्थान का मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में गुजरात टाइटन से होगा। चंडीगढ़ करे आशिकी। इस मैच को जीतने वाली टीम 31 मई को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल खेलेगी। यही तो है बड़ी बड़ी मीनार और सोने के दिनार दूर से चमकती है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने सारे सिग्नल नाके तोड़ दिए, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं आप? हैं सूर्यवंशी। वेल, इशारा तो मैंने आपको दे ही दिया है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए और जवाब में हैदराबाद 19.2 ओवर में 196 रन पर ऑल आउट हो गई। और ऐसे में क्लियर हो गया है सिग्नल। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, 102.6 FM, दिल से दिल तक।

सिग्नल, और क्या सिग्नल की बात कर रहा हूँ पता है आपको? कहते हैं कि तेज हवा का झोंका और ट्रैफिक पुलिस का रोका, ये इंसान को पीछे जाने पर मजबूर करता है। लेकिन लेकिन लेकिन ये जहां खड़े हो जाते हैं लाइन, वहीं से शुरू होती है। और ये तो चीते हैं, शिकार पर ही जीते हैं। जी हाँ, और कहते हैं शिकार तो हर कोई करता है, लेकिन टाइगर से बेहतरीन नहीं, कमाल की चेजिंग भी करते हैं, कमाल की अटैकिंग मोड वाली क्रिकेट खेलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की। एंड राजस्थान को क्या कहूँ, इससे पहले ये कहना चाहूंगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वो वाओ फैक्टर, और सांसें थम गई ये पारी देखकर तो यार, फिंगर्स सभी की क्रॉस थी और ऐसा लग रहा था वैभव वैभव वैभव कमाल कर दीता यार, कमाल कर दीता। और वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 7.6 ओवर में 125 रन जोड़ दिए, और सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की पारी खेली, जिसमें काफी सारे रिकॉर्ड टूटे भी हैं और काफी सारे लोगों के दिल भी टूटे हैं, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल हैं। सोचिए सोचिए सोचिए, मतलब कमाल है। हैट्स ऑफ, एज इज जस्ट अ नंबर। और इस बात को कहीं ना कहीं प्रूव करके, साबित करके दिखाया वैभव सूर्यवंशी ने। और राजस्थान भी कह रही है कि तुमसे ही है जो भी कुछ है।

बिल्कुल, ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मैं कमाल हूँ। वेल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम, 102.6 एफएम। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जागो मोहन प्यारे। एंड वेल, आपने वो वाली रील जरूर देखी होगी कि स्मार्ट तो मैं बचपन से हूँ और अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूँ तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। वैसे सच्ची बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो स्मार्ट हूँ ही, रेडियो पर दिख नहीं सकता ना, नहीं तो आप खुद तारीफ कर देते। वेल, मैं आपको बता दूँ, स्मार्टनेस की हम बात कर रहे हैं तो राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली क्षेत्र में लगे वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स VMS को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और इस पहल का उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम ट्रैफिक जानकारी उपलब्ध कराकर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है। रियल टाइम टाइम टाइम टाइम टाइम ही पता नहीं लगता आपके साथ कहां चला जाता है, अभी है टाइम।

कल बताने से क्या होगा, कल फैसला सुनाने से क्या होगा, फिर बाद में तो बढ़ जाता है बीपी और गायब हो जाती है डीपी। वेल, स्मार्टनेस की हम बात कर रहे थे तो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नई दिल्ली के प्रमुख चौराहों और मुख्य सड़कों पर कुल 92 VMS बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें से अब तक 42 बोर्ड्स को एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग व कंट्रोल सिस्टम से इंटीग्रेट किया जा चुका है। इन अपग्रेडेड बोर्ड्स के जरिए वाहन चालकों को ट्रैफिक जैम, सड़क बंद होने, दुर्घटना, मौसम संबंधी चेतावनी और विशेष ट्रैफिक व्यवस्था जैसी जानकारियां तत्काल मिल सकेंगी। इसे कहते हैं रियल टाइम मैनेजमेंट। वैसे आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट तो होगा नहीं, खासकर छुट्टी वाले दिन, लेकिन उसे मैनेज करने के लिए भी ठुमका लगाना पड़ता है।

वेल, मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कदे किसी दा दुखायो ना। और उनका ये भी कहना था कि खुश रहो, आबाद रहो, यहां रहो या इलाहाबाद रहो, लेकिन जहां पर भी रहो पानी पीते रहो, और इसके साथ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये मैंने खुद आजमाया अपने ऊपर। कहीं ना कहीं जिम की मेंबरशिप तो ले लिया, बस जिम जाना बाकी है, लेकिन ये 2 कदम का फासला जो आपका रह रहा है ना, इसे थोड़ा सा पूरा कर लीजिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और एक्सरसाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, और जुम्बा भी कर सकते हैं। आई लव जुम्बा। थिरक लेते हैं थोड़ा इस गाने पर।

वेल वी विल गेट बैक टू यू, ये आपने लाइफ में कई बार सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है, इसलिए कहूंगा कि मिलेंगी परिंदों को मंजिल, यकीन करो ये उनके पर बोलते हैं। और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं ना और आप हार्डवर्क करना जानते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, देर सवेर कहीं ना कहीं आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी, है ना। घर से निकले हैं तो फिर मंजिल मिल ही जाएगी, नहीं तो अच्छे मुसाफिर तो हैं ही, लेकिन हाइड्रेटेड रखना है आपको अपने आप को, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा कि घड़ी किसी और की होगी लेकिन समय तेरा बताएगा। वेल समय समय समय समय यार पता ही नहीं लगता आपके साथ कहां चला जाता है। वेल जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक्स स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो और फारजे गौतम इज साइनिंग आउट, लेकिन मैं जाऊंगा तभी तो दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर आपके साथ हाजिर होंगे निखिल कुमार। तो चलिए, जहां जहां जाओगे वहीं हमें पाओगे, फिर से मुलाकात होगी आपसे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

हर्षो, तो आपको बता दें कि मेरे जाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे। तो 10:05 पर अदिति बिष्ट आपके साथ होंगी लेकर के मैचलेस म्यूजिक आर, वेस्टर्न म्यूजिक का ये प्रोग्राम है। और फिर 11:05 पर रंजन अनेजा आपके साथ होंगे लेकर के बॉलीवुड ट्रेल्स। और फिर 12:05 पर आप सुन पाएंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल अदिति बिष्ट के साथ में। और फिर 1:05 पर समय होगा मेरा वाला सॉन्ग का, जिसे पेश करेंगे रंजन अनेजा। और आप आशियाना सुन पाएंगे दिन में 2 से गीतिका उनियाल के साथ में, जिसमें आज का टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता 2 की गौरव यात्रा, हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली 200 पूरे होने पर विशेष, जिसमें आज के अतिथि हैं उमेश चतुर्वेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं रेनबो पर। बने रहे आप आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। मुझे दीजिए अनुमति, हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के

0: आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। आई एम अदिति एंड आई होप दैट योर रन अप टू प्रीकेंड और थर्सडे हैजंट बीन टू ट्राइंग। यस, इट्स बीन हॉट, इट्स बीन वेरी हॉट, बट आई होप दैट इट्स बीन ईजी। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन आवर, let's journey through some old time music and relive our younger times. And let me tell you friends, that studies say that even singing along to songs can help reduce stress and improve your mood. So technically, for the next 1 hour, this is not just music, this is self-care. So let's start, shall we?

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दुआ कर रहे हैं कि आपके दिल को चैन आए, विच इज वाई आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन टू नॉट टू फॉरगेट टू ड्रिंक इन लेमनेड्स एंड वाटर एंड हैव जूसी फ्रूट सो दैट योर बॉडी टेम्परेचर्स आर नॉर्मल. ऑलराइट, दैट वॉज किशोर कुमार जी विद ओ मेरे दिल के चैन. एंड यू नो देर आर सम सॉन्ग्स वेयर द एक्टर एंड द प्लेबैक सिंगर बिकम सो इनसेपरेबल दैट आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन वन विदाउट द अदर. एंड फॉर मेनी पीपल दैट वॉज राजेश खन्ना एंड किशोर कुमार. दिस इज ओ मेरे दिल के चैन फ्रॉम मेरे जीवन साथी विद म्यूजिक बाय आर डी बर्मन एंड लिरिक्स बाय मजरू सुल्तानपुरी. The film had come out in 1972. Where were you at that time? Do let us know. And of course, there's an old story that I want to share with you. I had read it somewhere that many Bollywood pages mentioned the story that Rajesh Khanna was initially unsure about this song, about this tune, until Pancham Das sat down and played it for him personally and convinced him about the song. And thank goodness he did, because the song has peak Rajesh Khanna energy, you know, the smile, the expressions, the tilted head movements, and alongside him was Tanuja, bringing such ease to the screen that the whole song feels like less like acting and more like two people just enjoying each other's company. May such ease and camaraderie find all of us. That's what I'm hoping for you. But how about we put our emotion in motion now with the song coming up by Billy Ocean.

0: Rocky starring Sylvester Stallone. It was also the year, now I hope you will remember this, Shivnath Singh ran barefoot into history at the Montreal Olympics, and he set a marathon record that stayed unbeaten for decades. And if you are a cricket fan, you'll get goosebumps because you might remember that in 1976, there was this legendary moment when the Indian cricket team chased down a world record of 406 runs against the mighty West Indies. Basically, people in 1976 were emotionally and physically in motion, and we still have emotions about that. Okay, and you know what? I found a very random fact. 1976 was a leap year that began on a Thursday, just like this year did. Happy Thursday, y'all.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. Phir aaya entertainment ka revolution, jab kone kone pahuncha Doordarshan. Kahani nahi badli, style gaya hai badal. Jo kahaniyan hum sunte aaye, dekhte aaye, ab wahi waisi hi kahani sunayega digital.
2: Download Waves OTT app now and watch for free.
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर

0: सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 30रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात यह आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की

प्रार्थना की। बकरीद पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर रियाज सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जानी चाहिए। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और प्रोग्राम शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स। बॉलीवुड ट्रेल्स आज थर्सडे की सुबह लेके हाजिर हूं मैं रंजन। और आप जैसे कि जानते हैं हमारे प्यारे आकाशवाणी पर ही कार्यक्रम कई सालों से आ रहा है और उसका कारण ये है कि आप लोग बॉलीवुड को खूब पसंद करते हैं, मूवीज को देखते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके स्टार्स क्या करते हैं या फिर क्या नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको ट्रबल में आना पड़ता है। तो आज बातें होंगी बहुत सारे स्टार्स की, टू नेम अ फ्यू, सुश, आशु, मिका, श्रद्धा, कैटरीना एंड लॉट्स मोर। तो फिर जुड़े रहे हैं आकाशवाणी के संग, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स। अच्छा, आशु का पूरा नाम बताना था, आशुतोष गोवारिकर।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सुष्मिता सेन की। हम सभी जानते हैं कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में उन्होंने नाम कमाया अपनी खूबसूरती को लेकर, ब्यूटी पेजेंट्स को लेकर। उसके बाद जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो उनकी च्वाइस जो थी मूवीज की वो भी बड़ी निराली थी और शुरू में लोगों को लगा कि शायद एक्ट नहीं कर सकती, लेकिन सबसे खास बात जो उन्होंने की वो आम महिला तो नहीं करती हैं और उन्होंने बहुत से ऐसे पुराने मिथ को तोड़ा और वो बनी माँ 24 की उम्र में। और ये खास बात ये है कि वो उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया और उसके बाद फिर आई थिंक थोड़े समय बाद एक और बच्ची को, तो तब उनके लिए फिल्मी करियर में आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया। ऐसा किसी और ने ही नहीं बल्कि उनके खुद के मैनेजर ने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं आपको काम मिलने में दिक्कत हो जाएगी। और जहां बड़े बड़े स्टार्स अपने शादीशुदा होने की बात को भी छुपाते हैं और आप बिना शादी के ही एक बच्चे को अडॉप्ट करने जा रही हैं, पहली बात तो इंडियन सोसाइटी में से माना नहीं जाएगा। लेकिन सुष्मिता इस बात पर पूरी तरह से अड़िग रही एंड वी ऑल नो, अब उसके बाद उन्होंने खूब अच्छी अच्छी फिल्में की, बहुत सी फिल्मों में बहुत अच्छा रोल किया जैसा हम जानते हैं, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। सो सुष्मिता ने हमेशा से ही जो नॉर्म्स हैं उनको तोड़ा है, चाहे वो उनका पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। तो क्या कहेंगे आप, डू यू लाइक सुष्मिता सेन? आई तो लाइक हर बिकॉज उनका काम अच्छा खासा एक्ट कर लेती हैं, बहुत अच्छा तो नहीं था इनिशियली बट देन जो उनके ही बकौल सुष्मिता ऑन द जॉब उन्होंने सीखा है। वैसे इसमें कोई नई बात भी नहीं है कि देखिए हर मूवी अलग होती है, हर स्क्रिप्ट अलग होती है और जब हम सेट के ऊपर होते हैं तो सभी एक्टर्स जो हैं वो मोस्टली ऑन द जॉब ही सीखते हैं क्योंकि देयर इज जस्ट सो मच दैट यू कैन लर्न वाइल you know off screen, but when you're on screen or you're shooting for the movie bahut si problems aa sakti hain us role ko nibhate hue, aur aise mein har baar kehna hota hai no problem no problem. aap sun rahe hain 102.6 megahertz par Delhi aur aas paas Akashvani Rainbow News on Air ऐप के माध्यम से आप हमें पूरी दुनिया में सुन सकते हैं, तो जुड़े रहें आकाशवाणी के संग, 90 वर्षों से लंबा सफर।

आशुतोष गोवारिकर को आपने ज्यादातर जिसलिए उनकी फेमस बहुत ज्यादा हुए वो थी फिल्म लगान, और क्या लीक से हटकर कितनी ब्लॉकबस्टर आमिर खान के साथ उन्होंने बनाई, जहां क्रिकेट का जो तड़का लगाया और भारत की और उस समय की बात जब एक अलग दौर था और अंग्रेजों के साथ जो मैच हुआ वो सब हम सब जानते हैं, वी लिव दोज मोमेंट्स। और आशुतोष को हम प्राइमरीली एज ए डायरेक्टर जानते हैं, लेकिन डीप इनसाइड कहीं वो एक एक्टर हैं। उनकी जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स भी किए हैं, कुछ एक मूवीज में भी काम किया, और रुकते संभलते वो एक्टिंग की तरफ आ ही जाते हैं। पीछे कुछ डायरेक्टर के तौर पे जो उन्होंने काम किया उतना सफल नहीं हुआ, और अब फिर से उनकी एक OTT के ऊपर इस समय एक मूवी चल रही है सिस्टम, जिसके अंदर आशुतोष हैं और सोनाक्षी हैं, और इसके अंदर आशुतोष प्ले कर रहे हैं एक लॉयर का किरदार। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि एक्टिंग की वजह से मैं बात आपसे कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि एक दौर था जब मुझे अपने बालों की बहुत चिंता होती थी, और अब I've got a perfect hair style because there are not many hair left on my head. So, देखिए मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि वो ये कह रहे हैं कि भगवान ने सबके बहुत सारे जितने भी सर हैं भगवान ने ही बनाए हैं, लेकिन जो कुछ चुनिंदा सर होते हैं जो परफेक्ट होते हैं उनको वो बालों से नहीं ढकता है। तो ये नजरिया है देखने का, क्योंकि अब मैं खुद को भी जब शीशे में देखता हूँ तो इसी नजरिए से देखता हूँ, और आपको भी इसी तरह देखना चाहिए, और जाहिर सी बात है क्योंकि किसी भी बात के दो पक्ष होते हैं। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे तो OTT पे इस मूवी को आप देख सकते हैं, जिसका नाम है सिस्टम।

बदलते समय के साथ बदलते भारतीय समाज में अलग तरह के रिलेशंस के ऊपर बनी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार, जिसके अंदर थे रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर एंड रणबीर थे कौन थे, आई थिंक कार्तिक थे, आई एम गेटिंग रियली कंफ्यूज, वैसे मैंने मूवी देखी है बट द पॉइंट इज दिस, मैं ये बात नहीं कर रहा कि उसमें कौन थे। श्रद्धा का भी एक हाल में एक वीडियो आया जहां घर पे वो अपने एक मस्त माहौल में डांस कर रही हैं और उन्होंने इसको सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर सी बातें दिखाया, बहुत बिंदास होके डांस कर रही हैं। अब डांस एक्चुअली ऐसे ही करना चाहिए जहां आप जब डांस करें तो आप ये ना देखें कि आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, और बावजूद इसके आप जानते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया पर आप उसको दिखाएंगे तो लोग बहुत सी बातें करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आपके घर में जो सामान है वो ठीक से नहीं रखा हुआ है तो ये वीडियो बनाने से पहले आपने घर की सफाई क्यों नहीं की। ये शिकायत हर माँ बाप को रहती है अपने टीनेजर बच्चों से, वैसे श्रद्धा टीनेज से तो बाहर आ गई है लेकिन उनका डांस वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए टीनेजर वुड डांस। मैं अब सवाल इससे जुड़ा पूछने जा रहा हूं, हमारे आज का जो सवाल है वो आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज, तो गौर से सुनिए जनाब, अपने अपनी जो कान है मेरी तरफ लेके आइए और इस बात को गौर से सुनिए। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, उस डांस के अंदर मुझे एक बहुत खास एक जनाब दिखाई दिए जो श्रद्धा को देख रहे थे, वो कोई और नहीं श्रद्धा के पेट डॉग हैं, तो आपने बस सिंपल सा जवाब देना है कि श्रद्धा का जो पेट डॉग है उनका नाम क्या है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य है, अगर आप बता पाए सही तो हो सकता है आज आप बन जाए बॉलीवुड सरताज। और हमारा नंबर है व्हाट्सएप करने के लिए 9868107070, That's 9868107070, 9868107070, 9868107070। झटपट भेजिए व्हाट्सएप मैसेज और जुड़ जाइए आकाशवाणी के संग 90 वर्षों से निरंतर।

Dolly का मैसेज आया, लिखती हैं कि यकीन नहीं हो रहा सर, आपके सर पर बाल नहीं है। एक दिन शो में बता रहे थे कि बालों में ऑयल और शैम्पू करके आया हूँ। डॉली जी, आपने बिल्कुल सही सुना, दोनों बातें सही हैं, लेकिन सिलेक्टिव लिसनिंग हो गई यहाँ पर। मैंने क्या कहा, बाल हैं, जा रहे हैं। सो थोड़े बड़े भारी मन के साथ अपने आप को आईने में देखना पड़ता है, समय समय की बात है। खैर, यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। आपको सवाल तो याद ही होगा, नहीं तो फिर हम थोड़ी देर में फिर से दोहराएंगे और प्रोग्राम के अंत तक किसी एक को बनाएंगे बॉलीवुड सरताज।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें।

0: कि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

ये एक वो दौर था जब बॉलीवुड फिल्मों के अंदर इंटरनेशनल लुक लाने के लिए डायरेक्टर्स लाइन लगा लेते थे कोई इंटरनेशनल रेसलर या फिर इंटरनेशनल सिंगर या एक्टर को छोटा मोटा रोल देके बाहर के ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए और थोड़ा इंटरनेशनल फील देने के लिए। उसी दौर में काइली मिनोग का इसमें एक डांस नंबर था जहां उन्हें बॉलीवुड स्टाइल में डांस कराया गया और ये गाना गवाया गया। प्राइमरली काइली ऑस्ट्रेलियन है और पॉप सिंगर रही हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है। तो आज है काइली मिनोग का बर्थडे, तो वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे काइली। अब कहेंगे कि भाई बॉलीवुड के अंदर हॉलीवुड या फिर ऑस्ट्रेलियन स्टार का नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आज चांस की बात है किसी बड़े बॉलीवुड स्टार का बर्थडे ही नहीं था, तो मुझे लगा जब इनका बर्थडे है तो क्यों ना इनका गाना जो हमारी बॉलीवुड फिल्म में इन्होंने गाया है उससे आपको सुना दें। अगला गाना मिका की आवाज में, हाउसफुल 3 से मालामाल।

जी मिका की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ माला माल ही नहीं है बल्कि दिल के दिलदार भी हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। देखिए मिका ने अपने एक डिफरेंट स्टाइल से जिस तरह से वो गाते हैं अपना एक अलग ही एक मुकाम बनाया है बॉलीवुड के अंदर, और अब वो आ गए हैं रणवीर सिंह के बचाव में, उनके साथ उनके सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी FWICE ने रणवीर को बैन कर दिया है। क्योंकि आपको पता ही है ये बात कई दफा इस कार्यक्रम में भी दोहराई गई है कि डॉन 3 को बनते बनते समय हो गया, 2 साल के प्री प्रोडक्शन के अंदर, प्लानिंग के अंदर रणवीर ने अपना मन बदल लिया एंड आई थिंक ही गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। तो धुरंधर में जो उन्होंने किया आपको वो देखने को मिलता, बताओ मिलता कि नहीं मिलता? और वैसे भी एज

आर्टिस्ट, ये आपका राइट है, आप शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप मूव आउट कर सकते हैं, इट्स योर राइट टू वर्क मैन. और ऐसे में अगर फरहान और उनकी कंपनी ये कह रही है कि उन्होंने 45 करोड़ का खर्चा कर दिया, तो भाई ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना. अपने प्राइम में कोई एक्टर इतना टाइम कौन लेता है, 2 साल, और फिर देन यू हैव टू प्रूव ऑल द खर्चा दैट यू डन एंड स्टफ लाइक दैट. बट मुझे ऐसा लगता है, रणवीर डोंट यू वरी, मेरा भी सपोर्ट आपको है, मिका का भी आपको सपोर्ट है. और मिका का सपोर्ट होने से मैं ही कहना चाहता हूँ कि मिका खुद बैन हो गए थे और हफ्ते बाद वो बैन हटा लिया गया था. बट द थिंग इज दैट यू नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपको कोई काम नहीं देता डोंट वरी, हम मिलकर काम कर सकते हैं. यू मेड सो मच ऑफ मनी, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलो, बिंदास फिल्में बनाओ, नए लोगों को चांस दो. अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं मिका बहुत दिलदार है, मेरी मुलाकात हुई थी मिका से कुछ साल पहले, तो उनकी तरफ मैं जाता, वो मेरी तरफ आए, उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि मैं आपका फैन हूं. आई एम नॉट किडिंग. अब तुर्रा बात यह है कि साथ में उनका 7 फुट लंबा जो बॉडी गार्ड है वो मुझे ऊपर से ऐसे देख रहा था कि भाई ये रोल रिवर्सल कैसे हो गया. मिका यू आर सच अ डार्लिंग, यूं ही जुड़े रहे इंडस्ट्री के साथ और रणवीर के संग, सुनते रहे बॉलीवुड ट्रेल्स.

जी हाँ, वो समय आ गया जब हम रिपीट करेंगे बॉलीवुड सरताज का सवाल। तो हमारा आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल है, ऐसा मोहम्मद फुरकान ने हमें रिपीट करने के लिए बोला है। हाँ सर, हमें पता है हर एक चीज एक तरीके से चलती है और ये समय आ गया तो हम बताते हैं। श्रद्धा कपूर का जो पेट डॉग है उनका आप नाम बताइएगा। अब देखिए, हम जानवरों की बात भी क्यों करते हैं अपने कार्यक्रम में, बिकॉज गर्मी बहुत पड़ रही है। चाहे परिंदे हों, जानवर हों, बिल्ली हो, डॉग्स हों, आपके घर के आसपास वैसे बहुत से लोग केयर करते हैं क्योंकि गर्मी का समय है। तो थोड़ा पानी का अगर आप अरेंजमेंट उनके लिए कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, अपने लिए भी करिए, मैं जानता हूँ दिल्ली में बहुत से इलाकों में कुछ एक शॉर्टेज लोग फेस कर रहे हैं, बट दैट्स द वे इट हैज टू बी। सो अपना भी ध्यान रखिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं, आप जुड़े रहें, यूं ही सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो बॉलीवुड ट्रेल्स, 90 वर्षों से ज्यादा का सफर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: Durante de Rivenze habe ich gerne so ein Dreh mehr, war du? शाश्वत और जैस्मीन एंड अदर्स की आवाज में हमारे साथ हमारे बॉलीवुड सरताज जुड़ गए हैं. होपफुली मैंने उनसे बात की है ऑफ एयर. लेट्स सी वो लाइन पे है कि नहीं है. कुछ कुछ मुझे लग रहा है टेक्निकल इशू ना हो. हेलो
1: हेलो
0: आ गई थैंकफुली आपकी आवाज आ गई. मुझे ना आपकी वो लाइन की लाइव जो स्थिति है वो नहीं दिख रही थी. डजंट मैटर हरप्रीत, आप आज बनते हैं बॉलीवुड सरताज. हमारा सवाल था कि श्रद्धा कपूर के पेट डॉग का नाम क्या है, तो बता दीजिए हमें.
1: शिलो सर.
0: शिलो पूरा नाम दसो यार. मजा आ गया. मतलब देखो मैं भी खुद थोड़ा सा चकरा गया था क्योंकि आजकल क्या है, लोग ना जो डॉग्स होते हैं या कैट्स उनको बच्चों की तरह प्यार करते हैं और अपना सरनेम भी देते हैं. तुसी रख दे हो कुत्ते बिल्ली का शौक रख दे हो घरे आएगा कोई
1: नहीं ऐसी कुत्ते रखने पर प्यार रखते हैं कुत्ते ना जी. गली दे विच कुत्ते होंदे जिहड़े उन्हां रोटी वगैरह पा दिंदे, पंछी नूं दाणा वगैरह पा दिंदे जी.
0: चंगा चंगा. कुत्ते नूं सुखी रोटी पांदे हो या दुध भी पिलांदे हो कदी?
1: नहीं सुखी रोटी नहीं. कई बार जिवें पहला साडे ब्लैक डॉग सीगा इत्थे गली च होंदे सी, उन्हां सब्जी बना के चूरी कुट के भी पा दिंदे सी, दुध वगैरह लस्सी पांदे सीगे जी.
0: चलो तुसी पटिंडा, मैनूं कॉल कीता पटिंडे तों. रेनबो साडा चैनल सुनदे रहिंदे हो कि नहीं?
1: हाँ जी सुनते रहने जी.
0: चलो बहुत चंगा लगे.
1: हाँ जी मेरा पिंड है पुच्चो कला जी.
0: हाँ जी पुच्चो कला
1: बठिंडा जी.
0: बहुत चंगा लगे जी थोड़े गल करके. इसी तरह साडे नाल जुड़े रहना. थैंक यू सो मच.
1: ठीक है सर. थैंक यू.
0: तुहानू शुभकामनाएं. आज तुसी बंदे हो बॉलीवुड सरताज.
1: थैंक यू सर.
0: थैंक यू जी. दिन शुभ होए. और बस इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ यूं जुड़े रहें. तो देखिए आप बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कुछ नाम मैं लूंगा बट थोड़ी देर में. अगला गाना साहू फिल्म से, श्रद्धा की ही फिल्म से. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज़.

There was not really nice to say somebody that you are psycho. Kaiko, because it's not a good word, man. But look, creative liberty is for the artist. It looks good, so it just goes. There is a pakhsh hai. Black and white, both have to be shown. Now I am going to tell you what box office ki report rahi. Kuch film jo piche haali mein release hui hai, usme se ek pati patni aur wo do. Uska jo jo karobar hai, lagbhag 40 crore kama liya hai. Aur 50 crore ki taraf badh raha hai. Unver, main hairan hu, 75 crore mein to film bani hai. So, ye to faide ka sauda nahi hua, bedo. खैर कुछ फिल्में अच्छा कर रही हैं कुछ नहीं कर रही हैं. भूत बंगला ने 120 करोड़ के बजट में बनी लगभग 160 करोड़ का बिजनेस कर लिया है अब तक. चांद मेरा दिल 40 करोड़ के बजट में बनी लगभग 17 करोड़. कैटरीना कैफ और विकी की एक खबर बताएंगे बट आफ्टर दिस सॉन्ग. वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज अजब प्रेम की गजब कहानी प्रेम की नैया.

देखिए मैं आपको बताने जा रहा था कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का ब्याह हुआ कुछ एक साल पहले. तुम सब जानते हैं दे आर हैप्पीली मैरिड और उनका एक पुत्र हुआ विहान नाम से. अब हाल ही में वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे जहां पर देखिए पहले कहते थे कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और अब कहते हैं कि जब ये जो स्टार लोग हैं एयरपोर्ट या कहीं भी जाते हैं देन रियली अफ्रेड ऑफ पापाराजी. ये वो वाले पापा नहीं है जिन्हें आपने राजी करना है, दिस इज पापाराजी. वो फोटोग्राफर जो आपकी प्राइवेसी के अंदर आके होड़दंग मचा सकते हैं, आपके बिना बताए छुपे कहीं से आपकी फोटो ले सकते हैं बिकॉज वो उनका रोजगार है. तो ऐसे में कैटरीना और विकी ने कहा कि ये हमारा बेटा है, इससे मिलिए लेकिन इसकी फोटोज मत लीजिए, हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखिए और हम इन सॉलिडेरिटी आप दोनों के साथ ही खड़े हैं. विकी एंड कैटरीना, वी लव यू बोथ एज वेल एज विहान, लेकिन उसकी शक्ल तो हमने देखी नहीं. तो फिर ये चाचा आपको मुबारकबाद कैसे दे, वो सगन का लिफाफा कैसे दे हमें बताइएगा. फिलहाल मैं चलता हूं, 1 बजे फिर से मिलूंगा और अगला कार्यक्रम रहेगा अदिति के साथ प्ले इट कूल. सो टिल द टाइम हम फिर से मिले, रंजन कहता है मिस मी एंड आई विल बी बैक.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्प

0: नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2000

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स

और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और कार्यक्रम का जो समय है वो बिल्कुल दुरुस्त है। 1:05 हो चुके हैं, दोपहर का समय है, थोड़ा आप अलसा रहे हैं और आज त्योहार की मुबारक मौके पर आप सेलिब्रेशन में भी हैं, कहीं बाहर निकले हुए हैं और आप पहले से ज्यादा खुश मिजाज हैं, तो सभी को ईद की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। इसमें आप अपनी पसंद के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमें ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे आप खाना ऑर्डर करते हैं उसी तरह से गाना ऑर्डर कीजिए। ऐसे गाने जिनसे आपकी यादें जुड़ी हैं, जो आपको पसंद हैं, कोई बहाना है या फिर नहीं भी है तो भी चलेगा। 9868107070 पर आप व्हाट्सएप कीजिए, फिल्म का नाम, गाने के बोल, अपना नाम भेज दीजिए। मेरे लिए आसान हो जाता है उस गाने को अपने कंप्यूटर जी से ढूंढ पाना। तो फिर एंजॉय कीजिए ये नेक्स्ट सॉन्ग और जुड़ जाइए आकाशवाणी रेनबो के संग इन द प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ रंजन।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग, और जो लोग पहली दफा जुड़े हैं उनका ज्यादा इस्तकबाल है। हम आपका और ज्यादा स्वागत करते हैं क्योंकि आप सही जगह पहुंच गए हैं। गलती से पहुंचे हैं या आपको किसी ने कहा था कि भाई आप ना गाना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, वो डेटा चार्ज लगेगा जो आप व्हाट्सएप से हमें मैसेज भेजेंगे 9868106 9868 1070 7060 के बोलने लगा था, आई डोंट नो, एक डिजिट कम करने लगा था, ऐसा कुछ नहीं। आप ध्यान से सुनिए नंबर 9868107070। आहा, क्या बढ़िया नाम है, मतलब क्या बढ़िया नंबर है। वो अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें उनके नाम थे ना 70 72 71, वो ये वहां याद आने लगता है मुझे ये नाम पढ़ने के बाद, ये नंबर बोलने के बाद। ओ माई गॉड, मिस्टर रंजन, आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई हर्ड यू। कौन है भैया, कौन चौंक गया? आकांक्षा मिश्रा, आप थोड़ा बताइए आप कौन आकांक्षा हैं, कि हमारे जो आरजे पैनल पे थी वही तो नहीं है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज। खैर, आपने एक गाना मांगा है, केके की आवाज में कोई भी गाना बजा दीजिएगा, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट हम कैसे मना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, देखिए आज आपकी रिक्वेस्ट मैं प्ले कर पाऊं, मुझे ऊपर वाला इतनी शक्ति दे, बिकॉज आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज देखिए एक 55 मिनट के कार्यक्रम के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा गाने बजाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन जब रिक्वेस्ट 100 150 200 पार हो जाएं तो यू अंडरस्टैंड ना, सबके गाने तो नहीं बज पाएंगे, बट स्टिल कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, सच्चे मन से मांगो, सच्चे मन से तो मिलेगा, ना जाने वो पल, वो एक पल आपके गाने की रिक्वेस्ट का आज ही हो। खैर, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के संग, 90 साल का स्वर्णिम सफर।

0: So, फिर आकांक्षा हैव जस्ट मैसेज अस और आपने लिखा है कि आप वही आकांक्षा हैं, तो आकांक्षा आप कहाँ चली गई हैं? आई थिंक आप दिल्ली से कहीं बाहर हैं, बट बहुत अच्छा लगता है जब अपना कोई साथी इस तरह से हमारे कार्यक्रम को सुनता है और उसमें फिर गाना भी रिक्वेस्ट करता है. थैंक यू सो वेरी मच. और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और देखिए ऐसी एक चीज़ लिख के हमें भेजी है कि अगर आप गाना ना बजा पाएं तो सर क्या है ना, मेरा नाम ले लीजिएगा. लेट मी सी आपका नाम कहाँ गया, कहाँ चले गए. ओके जी. और हमारे पास बड़ा प्यारा एक शेर लिख के भेजा है, दो लाइनें अर्ज की हैं कि तेरे आने की जब खबर महके, गौर फरमाइएगा, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके. हाँ. और ये मुझे रंजन की जगह रांझना सर लिख के भेजती हैं या भेजते हैं, जो भी, ये थोड़ा अपना नाम नहीं बताते. खैर, आपने कहा है जगजीत सिंह साहब की कोई भी गजल हम आपके लिए पेश करें, तो लीजिए, आपकी पेशे नजर है, पेशे खिदमत है. 1:17 पर दिल्ली की 28 मई की गर्म दोपहरी में गर्मा गर्म खाने के साथ आपको पेशे नजर है, इसका नौश फरमाइए, खाने का और साथ साथ गजल का आनंद लीजिए. आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर.
1: मैं वक्त के साथ साथ चल रहा हूं, जैसे जैसे काम मिलता गया और गजलें मकबूल होती गई, वैसे वैसे आपको सुना रहा हूं.

0: छुपा।
1: जी हाँ, बताओ बताओ क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। भैया अक्सर जब आप यू च्यू अ गम यानी जब आप च्यूइंग गम चबाते हैं तो वो तो इंसान सामने दिखा देता है और वो एक खुशी के माहौल में आप टाइम पास करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन गम को जो है ना उसे छुपाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नासूर बन जाता है। और ऐसे में खुश रहना चाहिए। हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं आपकी रिक्वेस्ट बजाने के लिए। हम यहाँ है ना, अपना सारा टेंशन हमको दे दो और हमसे प्यारा प्यारा एंटरटेनमेंट ले लो, क्योंकि जब भी आप हमारे बारे में सोचें तो हम चाहते हैं आपके लबों पे एक हंसी आ जाए और दिमाग में या जहन में से टेंशन पुर हो जाए और फिर आपको लगे कि आपके साथ कोई है, कोई आपकी बात सुन रहा है। जैसे हमारे को सोनी गुप्ता ने नांगलोई से लिख के भेजा है कि फिल्म तेरे नाम से लगन लगी गाना सुना दीजिएगा। तो सोनी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगला गाना मैंने क्यों कर दिया आपका, अब बाकी लोग पूछेंगे क्यों कर दिया है, तो भाई किसी का गाना तो बजाना किसी का गाना तो बजाना था, और क्यों करने का मतलब होता है वो लाइन में आगे हमने उसको पहुंचा दिया है। और कुछ एक यहाँ मैसेज और लेना चाहता हूँ, जैसे हमें इन्होंने लिखा है कि मैं तीसरी बार मैसेज भेज रहा हूँ, शामिल कर लेना। मनोज कुमार यूपी हरदोई से हैं, बड़े सारे इन्होंने नाम लिखे हैं कि दिल्ली में सिलाई का काम कर रहा हूँ। हमारे कई साथी हैं जिनके नाम हैं रामू राठौर, श्याम राठौर, मनमोहन राठौर, दुर्गेश राठौर, सुमित राठौर। इस प्रोग्राम में जो भी गाने चलते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए हमें आप जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं मनोज जी, पता क्यों? देखिए आप मेरा मन रखने के लिए, मेरा दिल रखने के लिए आप कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी कंप्यूटर में से गाना निकाल पाना समयबद्ध तरीके से। भाई लाइव आ रहा हूँ मैं आप तक, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आई एम जस्ट सिटिंग इन द स्टूडियो, सजीव बातें हो रही हैं, गाने रिकॉर्डेड होते हैं, बट कंप्यूटर के भी नखरे हो सकते हैं ना भाई। और ऐसे लोग मिले जो कहें कि भाई कोई भी गाना बजाइए, हमें आपकी पसंद, हमारी पसंद। तो सोनी के लिए गाना जा रहा है सुखविंदर सिंह की आवाज में, फ्रॉम द मूवी तेरे नाम लगन लगी।

देखिए लगन कई तरह के होते हैं, एक जो ये लगन की बात कर रहे हैं तो लग गई, दूसरा जो खाना है वो लगन में बनता है तो वो तल्ला लग जाए उसे कहते हैं लगन में खाना लग गया, और तीसरा होता है कि आपका लगन हो गया कि नहीं। हाँ नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा, मतलब अगर आपका मन करे पर्सनल डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे साहब लिख रहे हैं कि 1 बजे से मैसेज किया, और सर मैं तो 1:05 पे आया हूँ स्टूडियो में, आप 1 बजे से पहले से मैसेज क्यों कर रहे हो? बिफोर टाइम आना भी हमारे ऑफिस में चलता नहीं है, ऐसे में आप पे जुर्माना लगेगा, क्योंकि आप आगे लिख रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट पूरी करो वरना आज आपसे लड़ाई कर लेंगे। आ जाओ लड़ लो मेरे से, मैं तो डर गया। नहीं सीरियसली आई एम सेइंग, मेरे से क्या लड़ोगे सर, मैं तो एक आवाज़ हूँ, मैं ध्वनि तरंगे पूरे विश्व में इस समय आ रहा हूँ, और न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से अमेरिका, एंटार्क्टिका, अब कनाडा, आप कहीं का भी नाम लीजिए, चांद तक हम पहुँच जाते हैं। हाँ क्या करो, कहाँ पकड़ोगे मुझे? लेकिन सीरियसली आपकी पसंद जो है वो मैंने क्यों कर दी, आप तो खुश हो, अब लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम मैं आपका बता देता हूँ, कहाँ गए, नाम ही नहीं लिखते हो, बाकी सारी बातें लिख देते हो। कुलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय और मनीषा मालवीय। अच्छा दो लोग थे, फिर तो जल्दी से गाना बजाओ भाई, 1 पे 2 भारी। कुछ लोगों के अब तो खुश हो ना सर एंड मैडम, आप दोनों ओके। बहुत से लोगों के नाम यहां मैं जरूर साथ साथ लेना चाहूंगा जब तक ये गाना आगे बढ़ता है। अनुराधा पौडवाल की प्यारी सी आवाज में दिल है कि मानता नहीं से टाइटल सॉन्ग। अलीपुर से मोनू पराशर की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, इसके अलावा और भी बहुत से लोग लिख रहे हैं, धीरे धीरे देखेंगे आगे किसकी रिक्वेस्ट पूरी होती है, उसके लिए आपको करना होगा वेट।

जी हम जानते हैं, आकाशवाणी रेनबो के बिना आपका भी दिल नहीं मानता, तभी तो आप 2400 घंटे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आखिरकार हमारा ये सफर है भी तो 90 वर्षों का, छोटा मोटा तो नहीं है, इसमें तो जनरेशंस बीत गए है ना, दादा का, पोते का, पापा का, सबका रिश्ता अनोखा, एक ही चैनल आकाशवाणी रेनबो। हमारे पास शायरी लिख के भेजिए। देखिए मैं कन्फ्यूज हो गया, मैं एडमिट करता हूँ, आपका गाना आपने कहा बजरंगी भाईजान फिल्म मूवी से, कोई भी गाना सुना दीजिए, ये मैंने लाइन तो बाद में पढ़ी, पहले आपकी शायरी के जो बोल थे मैं समझा ये बोल हैं गाने के। आई एम सॉरी, ये मेरा मिस्टेक है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, बट सुनिए आपने जो लिखा है मैं पढ़ देता हूं। रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक ना हुए, रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक ना हुए, अजीब हैं कुछ ख्वाब भी बुझकर राख ना हुए। मोहम्मद रागीब रेजा दानिश खान, आजाद नगर अररिया से। अब तो खुश हैं जनाब आप सब, और ईद की ढेरों मुबारकबाद। बहुत से ऐसे मैसेज आ रहे हैं, सभी को हम आज ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके अलावा रंजन सर, माफ कीजिएगा मजाक कर रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सॉन्ग बजाने। अरे मैं हूं ही ऐसा, मुझसे नाराज आप ज्यादा देर रह थोड़ ना सकते हैं, जाइए हमने आपको माफ किया। ये अमरीश साहब की अंदाज में मुआ

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दिल्ली की दोपहरी में आपके लिए लेके आए हैं ठंडे ठंडे कूल कूल गाने और आप ही की पसंद के जनाब। और अगर आप इस समय लंच कर रहे हैं तो फिर मजे को दोगुना तीन गुना कर सकते हैं। क्या होता है ना, देखिए पसंद का खाना मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बट क्या करूँ, अच्छी बात है तो बार बार बतानी चाहिए कि पसंद का खाना ऊपर से अपनी पसंद का गाना, डबल द ट्रबल, मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको दोगुना मिले, चार गुना मिले, तो फिर मज़ा ही उसका कुछ अलग होता है। जैसे बड़ी देर से आपने मैसेज लिखा है और बार बार लिख रहे हैं, तो मैं आपका नाम पहले पढ़ देता हूँ। कृष्ण कुमार मिश्र दिल्ली में रहते हैं, आपको सुनकर अच्छा लगता है, मन करता है कि आपको 24 घंटे सुने, लेकिन आप आते ही नहीं हो। ओहो,

अच्छा ये मेरे लिए नहीं है ये तो पुराना मैसेज मैंने पढ़ दिया, कोई बात नहीं, आपने जो रिक्वेस्ट किया गाना ओ मेरी मुन्नी आपने लिख के भेजा है और कहा चला दीजिएगा, तो इससे तो मुझे जो गाना मिला एक और मिला मेरी मुन्नी, बट वो हिंदी फिल्म का पुराना गाना था, ये रेमो फर्नांडिस साहब की आवाज़ में ये गाना है। तो जिस तरह से आपने लिखा है, आप ना फिल्म का नाम लिखें या गायक का तो हमारे लिए थोड़ा और ईजी हो जाता है, बट मुझे 99% तो ये श्योर है कि यही गाना आपने मांगा है और हम आपके लिए गाना प्ले कर रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए। और कुछ और रिक्वेस्ट हम ढूंढने जा रहे हैं, देखते हैं अगला गाना हम किसका बजाएंगे, कौन है जिनकी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर पूरी दुनिया में चलेगी। फॉर दैट यू हैव टू वेट, और हमें मैसेज करने के लिए नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए 9868107070, दैट्स 9868107070। व्हाट्सएप कीजिए और मांगिए अपना मेरे वाला सॉन्ग।

थैंक यू कृष्ण मिश्रा जी, आपने इस बात का हमें श्योरिटी दी है कि आपने यही गाना रिक्वेस्ट किया था। ये आई थिंक इनकी एल्बम से गाना है, ओ मेरी मुन्नी, रेमो फर्नांडिस साहब का, वन ऑफ मोस्ट ब्लॉकबस्टर। तो रेमो साहब की जब याद आती है उनका ये गाना जरूर होठों पे आता है। और काफी दिनों बाद आज मुझे भी ये बजाने का मौका मिला और सबको सुनने का मौका मिला, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है और प्रोग्राम भी तो आपका अपना है। मेरा वाला सॉन्ग, आप देखिए कितना अपनापन है इसमें। आप कहते हैं ना, मेरा बच्चा, मेरा लाडला, मेरा मुन्ना या फिर मेरी थाली, मेरी पकौड़े, मेरी मतलब मेरी ईद की सवैया, या फिर क्या बोलते हैं, पूड़ी, आलू, छोले। और ऐसे में हमें ये भी ध्यान रखना है कि गर्मी का समय है, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आप लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, ठंडा कोई पेय पीजिए, मैंगो शेक पीजिए, और ज़्यादा आसपास लोगों को शेक मत कीजिए। और हाँ, पंछियों के लिए भी कुछ दाना, चोखा, पानी का इंतजाम कीजिए, अगर आपका मन करे तो डू दैट एज वेल। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, जो हमसे कभी नहीं रहते दुखी क्योंकि ये हैं सदैव सुखी। अरे क्या क्या आज क्या कविता वाला, शेर वाला इंसान बन गया हूं मैं। सड़क फिल्म से आपने गाना पसंद किया है, अनुराधा पौडवाल, और कहाँ गया ये तुम्हें, हाँ दिस इज द सॉन्ग राइट। दो आपने चॉइस दी थी, एक गाना मुझे मिल गया आपकी चॉइस का, विच इज

ए अपना बनाने की कसम खाई है फ्रॉम द मूवी सड़क। तो आप सभी की पसंद का गाना आकाशवाणी रेनबो पर, जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, पसंदीदा चैनल है। वैसे मैंने लास्ट आई थिंक फ्राइडे, जो थर्ड फ्राइडे होता है, उसमें बिंदास बोल में आपकी शिकायत भी पड़ी थी। अब मुझे याद आ रहा है, आप टाइम तक नोट करते हो कि गाना कब भेजा था और क्यों नहीं बजाया। लेकिन आज सारी की सारी शिकायतें दूर, गाना आपका ये लीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये वो कार्यक्रम है जिसे हम प्यार से कहते हैं, दुलार से कहते हैं, मेरा वाला सॉन्ग। जैसे मेरा वाला पिंक होता है ना, जैसे कलर चॉइस में खासकर महिलाओं का, लड़कियों का। ये मैंने एक्चुअली नोट किया है, कुदरती है कि जो उनकी आंखों में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना कलर के, ज्यादा होते हैं। और लड़कों से नाराज मत हुआ कीजिए, अपने हस्बैंड से, वो आपके वाला पिंक ना समझ पाए। खैर, आपकी पसंद और आपके बेटर हाफ की पसंद एक जैसी हो, हाफ हाफ ना हो, डिवाइडेड ना हो, बट एक जैसी हो तो उसमें मजा ही अलग है। छोटा सा ब्रेक लूंगा, निक्का जया, नोना जया, छोटा जया, बस यूं गए, थोड़ी देर में आए और आपकी पसंद के गाने तो हमने प्ले करने हैं। अगर आप देर से जुड़े हैं तो 98 68 10 70 70 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लगे हाथ आप भी रिक्वेस्ट डाल दीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।

0: कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक. आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग. और अब जैसे जैसे समय की जो रफ्तार है उसको हम तो नहीं रोक सकते, तो समय प्रोग्राम का ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, लेकिन जितने मैं मैसेज ले पाऊंगा जरूर लूंगा. जैसे नरेंद्र कुमार लिख रहे हैं भी, बड़ी देर से कम गाना नहीं बजा रहे, हमारा मैसेज ही पढ़ दीजिए. नरेंद्र, आप मानेंगे आपके गाने को ढूंढने के लिए मैंने लगभग एक मिनट खराब किया. ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कंप्यूटर ने नहीं दिखाया, तो ऐसे में क्या किया करो, आप एक सेकंड चॉइस भी दे दिया करो जस्ट फॉर रेफरेंस. मैं आपके लिए दूसरा गाना बजा देता बट अब क्योंकि समय नहीं है. बट हाँ, आपने आप कह रहे हैं कि गाड़ी में चलते हुए हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, हमारी आवाज़ दिल छू लेती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच. ऐसे ही हमारे पास बड़े सारे और भी मैसेजेस आए हैं. एक गाना हमने क्यों करके रखा है उनका नाम अभी लेता हूँ क्योंकि उनका गाना तो ऑलमोस्ट तैयार है ही. होली चौक

उत्तम नगर दिल्ली से जयराम कोरबाल और सचिन कोरबाल ने, अमन और दीपांशु, चार लोगों ने एक गाने की रिक्वेस्ट की है, बरसात की रात। मैं देखता हूं अगर ये मैं प्ले कर पाया। और नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट मैंने इस समय शॉर्टलिस्ट की है वो है फिल्म बागबां से गाना है। पहले मैं आपका नाम बता दूं, हरकिरण सिंह फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस, नहीं बहुत सारे नहीं, दो ही मैसेज किए हैं, दो ही बात लिखी है। मैं पुराने मैसेज की तरफ मेरी नजर चली गई थी। आपकी पसंद गाना हमें मिल गया है, ये गाना बहुत प्यारा है, हमें भी अच्छा लगा। उदित नारायण की आवाज में पहले कभी न मेरा हाल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर।

स्टूडियो में गीतिका आ गई हैं और हमारे एस्टीम गेस्ट भी आ चुके हैं, तो बस अब ये मुझे इशारा है भाई अब मैं स्टूडियो से निकल जाऊं, लेकिन जाते जाते आपके कुछ नाम जरूर पढ़ना चाहूंगा। दिग्दर्शन और कविता मेरठ कैंट से लिख रहे हैं कि आपने हमारा गाना बजाया, आज इंटरनेट बहुत परेशान कर रहा है। सच बताऊं मैंने भी आपको परेशान किया, मैंने आपका मैसेज अभी देखा है, तो मैं उसे गाना बजाने का तो सवाल ही नहीं उठता, बट आपका नाम मैंने जरूर ले लिया है। रंजीत मस्ताना का भी मैसेज हमारे पास आया है, ऐसे और भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, लेकिन अगला कार्यक्रम जो है मैं उसके बारे में आपको बताते हुए चलूं। अगला कार्यक्रम रहेगा आशियाना में और आज हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो हैं श्री उमेश चतुर्वेदी जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज का विषय है हिंदी पत्रकारिता दो शतक की गौरव यात्रा। हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली 200 वर्ष पूरे होने पर यह विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल रंजन को दीजिए इजाजत, मैं आपसे यूं ही मिलूंगा इन्हीं एयरवेव्स पर। टिल द टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, गुड बाय। मेरे वाले सॉन्ग से अब बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम आशियाना में। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय बहुत अहम है, आप सभी से साझा करना चाहते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पत्रकारिता 2 शतक की गौरव यात्रा। हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं श्री उमेश चतुर्वेदी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर्वप्रथम हम अभिनंदन करना चाहते हैं हमारे आज के अतिथि श्री उमेश चतुर्वेदी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के इस कार्यक्रम आशियाना में, जहां हम हिंदी पत्रकारिता को कह सकते हैं मना रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता और खास तौर पर अगर हिंदी पत्रकारिता की बात की जाए तो बहुत ही आत्मीय है। जन जन तक, घर घर पत्रकारिता के माध्यम से हम देश दुनिया की बातें पहुंचाते हैं, और घर बैठे हमें ये महसूस होता है कि कोई है हमारे लिए जो नित्य प्रति कार्यरत है और दुनिया जहान की खबरें हम तक पहुंचा रहा है। तो इस यात्रा वृत्तांत का जिक्र तो हम जरूर करेंगे यहाँ पर, लेकिन आपके जबानी हम जानना चाहते हैं कि किस तरह आम जनमानस, जिन 200 सालों की बात हम कर रहे हैं, किस प्रकार जुड़ा है, किस प्रकार आत्मिक हुआ है।
2: सबसे पहले गीतिका आपका धन्यवाद और स्वागत हमारे साथ जुड़े श्रोताओं का, जो इस महती आयोजन में श्रोता की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हिंदी पत्रकारिता की इतिहास यात्रा का हमारा सहयोगी बनेंगे, सहभागी बनेंगे। देखिए, पत्रकारिता तो दैनंदिन रोजाना का व्यवसाय है, रोजाना का कामकाज है, और निश्चित तौर पर अभी पत्रकारिता खासतौर पर मीडिया के जो मंच बदले हैं तो उसमें उसकी भूमिका और उसका तरीका, उसका स्वभाव थोड़ा बदला है। लेकिन आप याद कीजिए, हम लोग जिस पीढ़ी के हैं अभी हैं और अभी भी हमारे साथ ये है कि सुबह हमें चाय की तलब के साथ साथ अखबार की भी तलब होती है। हमें अखबार नहीं मिले तो लगता है कि हमारा दिन कुछ अधूरा हो गया। हालांकि जो जैन जी है, मुझे लगता है कि वो उस तरह से अखबार से, जो मैं प्रिंट के अखबार की बात कर रहा हूँ, छापे वाले अखबार की बात कर रहा हूँ, जो कागज पर छपता है उसकी, हाँ, वो लोग पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं। तो उस पीढ़ी को अभी उतना ज्यादा तलब महसूस नहीं होती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो कोरोना का जो एक दुर्भिक्ष काल रहा है, एक बुरा समय रहा है, तो उसमें आप याद कीजिए कि अखबारों पर भी आरोप लगा था कि उनके जरिए भी हमारे घरों में कोरोना का वायरस आ सकता है। तो उन दिनों अखबारों को भी लोगों ने थोड़ा किनारे करना शुरू किया, और इंटरनेट की ताकत तो हमने देखा है, समझा है, लेकिन कोरोना ने हमें इंटरनेट की ताकत भी बताई। और फिर इंटरनेट के जरिए, जो इंटरनेट माध्यमों पर अखबार है, मीडिया के दूसरे मंच हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, उससे जो जुड़ना शुरू हुआ, या काम भी करना जो शुरू हुआ, किसी ने सोचा था क्या कि हम अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, मतलब उसको छुट्टी लेना पड़ता था, आजकल भारत में भी रह करके काम करता है।
1: जी।
2: तो हालांकि इस पर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कॉलमिस्ट हैं, बड़े नामी कॉलमिस्ट हैं, पॉल एस फ्रीडमैन, उन्होंने बहुत पहले वर्ल्ड इज फ्लैट करके किताब लिखी थी। तो उसमें उन्होंने इस बात की एक तरह से उम्मीद जताई थी, और यहाँ आकर के, भारत में आकर के, बंगलुरु शहर में जो हमारा सॉफ्टवेयर का बड़ा सेंटर है। तो खैर, पत्रकारिता बहुत बदल चुकी है, और निश्चित तौर पर आज भी पत्रकारिता हमारे रोजाना की जिंदगी में सार्थक हस्तक्षेप करती है। और एक चीज और भी है कि जब हर तरफ से कोई व्यक्ति निराश होता है तो पत्रकारिता के पास जाता है, कई बार राजनीति भी निराश करती है तो पत्रकारिता ही सहारा बनती है। तो पत्रकारिता का तो महत्व बहुत है, और हम लोग चूंकि बात करने बैठे हैं हिंदी पत्रकारिता की 2 शतक की गौरवशाली यात्रा, उस पर बात करने के लिए, आज तो अभी 28 मई है
1: जी,
2: आज से ठीक

0: एक दो दिन बाद वो 200 साल पूरे होंगे जब आज के कोलकाता और उस समय के कलकत्ता शहर में कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी पत्रकारिता का बिरवा रोपा था। और ये इतिहास ऐसे बना था दीपिका जी की, हम सब जानते हैं कि 1780 में 1780 में पहली बार भारत में कोई अखबार निकला, और वो निकालने वाले सज्जन थे, अखबार निकालने वाले सज्जन जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उन्होंने बंगाल गजट नाम से अखबार निकाला। और इसके ठीक 46 साल बाद आप देखिए कि उसी कलकत्ता की भूमि से, जिसे हम आज कोलकाता के नाम से जानते हैं, हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड निकला। और उसी के निकलने की जो मैं कह सकता हूँ कि एक जन्म लेने की जो 200वीं साल गिरह आ रही है, उसके उपलक्ष्य में, उसके संदर्भ में हम लोग बैठे हैं। और यह एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हम और आप अगर यहाँ बैठे हैं तो ये भी पत्रकारिता का धर्म ही निभा रहे हैं, पत्रकारिता का काम भी कर रहे हैं। तो हम इस पत्रकारिता के धर्म और कर्म के चलते ही यहाँ बैठे हैं, हमारी रोजी रोटी भी है, आपकी भी, हमारी है। तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए तो है ही, जो सबके जीवन में हस्तक्षेप करती है, सार्थक करती है हस्तक्षेप, हमारे आपके लिए तो कुछ और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है
1: जी,
0: यह बातचीत, यह समय, यह आयोजन।
1: जी बिल्कुल, आपने एकदम सटीक बात यहाँ पर की है कि हमारे लिए और भी ज़्यादा आत्मीय हो जाती है, चाहे प्रिंट की बात हो या वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं, या फिर आज इंटरनेट का युग है, तो सभी के लिए जिनके लिए रोजगार लेकर आई पत्रकारिता, और साथ ही साथ उनके लिए जो हर पैनी नज़र पर, अपनी हर खबर पर नजर रखते हैं हमारे वो श्रोतागण या वो पाठक, स्मृति के पन्ने आपने पलट दिए हैं जब आपने बंगाल गैजेट की बात की, और कहीं ना कहीं जब आपने कहा कि सुबह की चाय बिना अखबार के पन्ने पलटे ऐसा लगता था कि जैसे आज दिन पूर्ण नहीं होगा, और उन अखबार के पन्नों की खुशबू ना इस वक्त आपकी बातें सुनते हुए मुझे खुशबू आने लगी, कहीं ना कहीं वो एक एक अक्षर, वो एक एक शब्द, और साथ ही साथ वो जो खुशबू है अखबार की, आज यहाँ महसूस होगी, क्योंकि हमने कहा कि स्मृति के पन्नों से आपको आज तक की युग की यात्रा हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री उमेश चतुर्वेदी, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके माध्यम से इस गौरवशाली यात्रा का हम स्मरण करेंगे।

0: एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आशियाना में, जहां आज हम हिंदी पत्रकारिता इसके दो शतक की गौरव यात्रा करवा रहे हैं। हम यही कहेंगे कि आप हमारे साथ एक नाव में विराजमान हैं और इस दूरी को आप हमारे साथ तय करेंगे। इस पूरे एक घंटे में 15 मिनट लगभग पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपसे मेरा वादा है कि आप कहीं ना कहीं अतीत के पन्नों से अपने लिए कुछ ऐसा अर्जित करेंगे जो आपने शायद किताबों में पढ़ा हो, और कुछ बातें आप तक ऐसी पहुंची होंगी जिन्हें आपने भले ही ना सुना हो, लेकिन आप निश्चित रूप से कहेंगे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के अतिथि श्री उमेश चतुर्वेदी जी का, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमेश जी, पत्रकारिता जैसा कि मैंने कहा, स्वयं से ही और सदैव से ही हमारे दिलों में एक छाप छोड़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे पत्रकार हो या फिर पत्रकारिता हो, उसका स्वरूप भले ही बदला हो वक्त के साथ साथ, लेकिन एक जो सामान्य बात है वो ये कि हमारे पाठक गण या हमारे श्रोता गण या हमें देखने वाले जो टीवी के माध्यम से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं सच जानना चाहते हैं, और पत्रकार का भी हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि सच आम लोगों तक पहुंचाया जाए। अब सच्चाई के पहलुओं को हम आगे चलकर जिसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम मन में बात उठती है कि पत्रकारिता की शुरुआत, खासतौर पर हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई कहां से। इसके विकास के बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन उद्भव की अगर बात की जाए, ओरिजिनेशन की बात की जाए,
1: आपके पहले सवाल के जवाब के रूप में मैंने कुछ बताया आपको। देखिए, 1690 में आज का जो कलकत्ता शहर है वो शहर नहीं था, वहाँ श्रीरामपुर एक कॉलोनी है, आज भी रेलवे स्टेशन है वहाँ। तो श्रीरामपुर की कॉलोनियों में जब रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले जो फ्रेंच थे, उन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने बाद में जो पश्चिम बंगाल पर कब्जा किया सिराजुद्दौला को हरा करके, तो उन्होंने राजधानी बनाई, लेकिन उसके पहले ही ईसाई मिशनरियां श्रीरामपुर आ चुकी थीं, छापेखाने ला चुकी थीं, और चूंकि एक बड़ा बंदरगाह था कलकत्ता का जो हुबली बंदरगाह है, तो उस बंदरगाह के चलते तब साधन भी बहुत ज़्यादा तो थे नहीं आज की तरह, न रेल थी, न बस थे, न ट्रक थे, न मतलब हवाई जहाज थे, तो पानी के जरिए, पानी में बहुत बड़ी यात्राएं होती थी, बहुत बड़ा

0: साधन था पानी का, जल मार्ग। तो
1: जी
0: इसलिए उन्होंने बंदरगाह के उस क्षेत्र को अपना एक सेंटर बनाया और वहाँ उन्होंने 1690 में एक तरह से कलकत्ता को बसाया और जो बाद में राजधानी बनी। तो जाहिर है कि जब राजधानी बनती है कोई तो वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, प्रशासनिक काम सेंट्रलाइज हो जाते हैं, राजकाज वहीं से चलता है, तो गतिविधियां भी ज़्यादा होती हैं। तो जाहिर है कि पत्रकारिता को वहीं निगाह रखनी थी। और जो जुगल किशोर शुक्ल थे कानपुर के, मैंने पहले भी बताया, फिर से दोहरा दूं कि 1780 में हिक्की ने गजट शुरू कर दिया था, बंगाल गजट शुरू कर दिया था, उसके बाद बंगला का अखबार भी शुरू हुआ, समाचार सुधा वर्षण शुरू हुआ, तो बहुत सारे बंगला का अखबार भी शुरू हो चुके थे, लेकिन हिंदी में उनको लगा, देखिए कहाँ, वो कानपुर के हैं, लगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता है, तो वहाँ अगर वो हिंदी में अखबार शुरू करेंगे, एक बड़ा, मतलब एक कहिए कि क्रांतिकारी कदम था, एक तरह पहला कदम हमेशा क्रांतिकारी होता
1: जी।
0: है। तो उन्होंने सोचा कि अगर वहाँ करेंगे तो राजकाज से, अधिकारियों से, व्यवसायियों से, और जो राज दरबार के लोग हैं, मतलब बड़े अधिकारी, उनसे सहयोग मिलेगा तो उनको आर्थिक सहूलियत होगी और वो अखबार निकालने में आसानी होगी। एक चीज़ और भी है कि ईसाई मिशनरियाँ श्रीरामपुर में छापाखाना लेकर के आई थी, प्रिंटिंग मशीनें, तो इसके चलते कलकत्ता में छापेखाने की बड़ी सुविधा थी, तो वहाँ छापना भी आसान होगा। लेकिन उन्होंने शुरू तो कर दिया, सफलता उन्हें नहीं मिली, खासतौर पर कारोबारी सफलता, और सिर्फ 79 अंक निकल कर ही उदंत मारतंड बंद हो गया। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि हिंदी उस तरह की भाषा नहीं है आज भले दिखती हो, जिस तरह से कि मराठी है, बंगला है, गुजराती है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है। आप देखेंगी कि हिंदी, जिसे हम खड़ी बोली, जिस पर भी मैं और आप बात भी कर रहे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर मेरठ के आसपास की खड़ी बोली जिसको बोलते हैं, उससे वो विकसित हुई है। तो जो हिंदी का जो भाषा, मतलब केंद्र है भाषा का, जो एक पूरा, जिसे आज हिंदी हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, ये आप देखेंगे कि बहुत सारी स्थानीय भाषाओं का सेट है, अंग्रेजी के शब्द सेट की बात कर रहा हूँ, समुच्चय, मतलब बहुत सारी, उसमें से आज की हिंदी का विकास करना, तो आप देखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा बाकी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता से इसलिए अलग है कि वहाँ भाषाएं कहीं ना कहीं स्थापित थी, विकसित अवस्था में थी। हिंदी का विकास भी हो रहा है, हिंदी पत्रकारिता का भी विकास हो रहा है, और ये वही दौर है। उसके पहले आप देखेंगी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत काम किया है हिंदी को बनाने में, लेकिन वो मूलतः शुरुआत उन्होंने क्या की थी, उन्होंने ब्रज की में कविताएं लिखी थी। हमारे यहाँ जो हिंदी की मुख्य धारा की कविता रही है उस दौर से पहले, जिस दौर की हम चर्चा कर रहे हैं, तो या तो ब्रज रही है या अवधि रही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर उस दौर के बड़े कवि हैं, उद्धव शतक आज भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, तो वो आप देखिए ब्रज में है। भारतेंदु ने उसको खड़ी बोली बनाने की शुरुआत की, भारतेंदु ने एक अखबार भी निकाला, बनारस अखबार, और बहुत दिनों तक यह विवाद रहा कि हिंदी का पहला अखबार बनारस अखबार है। लेकिन पश्चिम बंगाल, देखिए आज भाषा के लेकर के बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन हिंदी के विकास में सिर्फ हिंदी वालों का योगदान नहीं है, कलकत्ता के एक बड़े विद्वान ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने विशाल भारत के मई, या संजोग से हम लोग मई में ही बैठे हैं, मई 1931 के अंक में हिंदी पत्र की आरंभ, हिंदी पत्रों की आरंभ कथा करके शीर्षक एक लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने उदंत मारतंड की जो मुख्य वो था, मतलब मास्टहेड जिसे कहते हैं, उसको मुख्य पत्र को जो फ्रंट पेज था उसको छापा, और ये साबित किया, स्थापित किया कि हिंदी का पहला अखबार कलकत्ता से 30 मई 1826 को निकला उदंत मारतंड है, बनारस अखबार नहीं है। तो देखिए एक बंगला भाषी व्यक्ति, एक बंगला के बड़े विद्वान ने इसको स्थापित किया। तो हिंदी की पत्रकारिता, उसकी विकास यात्रा, हिंदी भाषा की भी विकास यात्रा है, हिंदी साहित्य की भी विकास यात्रा है। और ठीक है कि उदंत मारतंड बहुत दिन नहीं चला, लेकिन बाद के दिनों में 1903 आते आते इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका सरस्वती के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक बनते हैं, और वो हिंदी को आज की हिंदी के रूप में गढ़ते हैं। आप

0: श्रोताओं को बताना ज़्यादा उचित होगा। हिंदी साहित्य के तो विद्यार्थी जानते हैं कि उस दौर के एक और बड़े संपादक थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। तो उन दोनों के बीच में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके बीच में एक शब्द, देखिए क्या शास्त्रार्थ की हमारे यहाँ परंपरा रही है, स्थिर शब्द है हिंदी का, उसका विलोम अस्थिर होगा कि अनस्थिर होगा, इसको लेकर के महीनों तक बहस चली दोनों के बीच में। तो हिंदी पत्रकारिता की जो विकास यात्रा है वो तो हम अभी तो हम लोग लंबी चर्चा करना है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा के विकास की भी यात्रा है, हिंदी साहित्य के भी विकास की यात्रा है, हिंदी को गढ़ने की यात्रा है, हिंदी को बनाने की यात्रा है, और बाद में आते हैं हिंदी नवजागरण की भी यात्रा हिंदी पत्रकारिता के जरिए ही शुरू होती है।
1: वाह क्या बात है। अब जब आपने कहा कि हिंदी भाषा को स्थापित किया है कहीं ना कहीं हिंदी पत्रकारिता ने, एक सवाल मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है क्योंकि हिस्ट्री इतिहास की मैं स्टूडेंट रही हूं, और ये कहा गया कि 1857 की जो क्रांति थी उसको जन आंदोलन बनाने के लिए हमारे नेताओं ने अग्रणी भूमिका निभाई थी और वो जन आंदोलन बना भी, तो क्या हिंदी पत्रकारिता की उसमें अहम भूमिका रही?
0: देखिए ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा सवाल है आपका और अच्छी जिज्ञासा होनी चाहिए। उस समय पत्रकारिता थी ही कहाँ भाई, 1826 में अखबार निकला, फिर 27 में बंद हो गया, 79 अंक निकले थे, ऐसे ही छिटपुट प्रयास हुए, समाचार सुधा वर्षण बाद में निकलता है, दर्शन दिग्दर्शन निकलता है जो राजा राम मोहन राय निकालते हैं, तीन तीन भाषाओं में, हिंदी बंगला और अंग्रेजी में, उर्दू के भी अखबार निकलते हैं। तो उन दिनों अखबारों की प्रसार संख्या हजार नहीं सैकड़े में होती थी। आज अभी हाल ही में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम एक सार्वजनिक मंच पर ही हैं
1: जी,
0: लेकिन एक हिंदी के बड़े अखबार ने अभी दो ही दिन पहले भारत के बड़े अंग्रेजी अखबार के फ्रंट पेज पर, मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन देकर बताया है कि वो दुनिया का तीसरे नंबर का अखबार है, मतलब उसकी करोड़ों में पाठक संख्या है। उस दौर में तो सैकड़ों में थी। अब आपने अच्छा सवाल पूछा था, एक और चीज बताते हैं कि हिंदी के आदि संपादकों में से एक बड़े संपादक हुए हैं पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी, जो बाद के दिनों में कलकत्ता से ही भारत मित्र नाम का एक अखबार निकला तो उसके संपादक रहे। उन्होंने अपने एक संपादकीय में लिखा है कि हिंदी, चूंकि अब जैसा कि हमने बताया कि हिंदी गढ़ी जा रही थी, तो उस संपादकीय में उन्होंने बताया है कि हिंदी के प्रेम में हिंदी के व्यवसायी ले सकते थे अखबार, सामान्य जन तो आप जानती हैं आर्थिक स्थिति क्या रही थी अंग्रेजी राज में, अखबार के ग्राहक तो बन जाते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। तो संपादक का एक दायित्व तो क्या होता था, अपने ही अखबार में छपी हुई सामग्री को अपने ग्राहकों को पढ़कर सुनाना।
1: वाह।
0: और ये काम जुगल किशोर शुक्ल ने भी किया है, दुर्गा प्रसाद मिश्र जी ने भी बाद के दौर में, वो भी एक बड़े संपादक रहे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। तो हिंदी चूंकि बन रही थी तो पढ़ के सुनाते थे। तो हिंदी जो है, आपका सवाल था कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में नहीं, उसमें उस तरह से तो भूमिका नहीं थी, लेकिन आप जानती हैं कि भारतीय जो स्वाधीनता संग्राम, वो पहला स्वाधीनता संग्राम है, उसमें दो प्रतीक चिन्ह थे, आज नाम लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, एक भारतीय जनता पार्टी का वो चुनाव निशान है, कमल और रोटी, कमल और चपाती के जरिए गांव-गांव तक, क्रांतिकारियों तक संदेश पहुंचाया गया कि हमें 30 मई को, देखिए ये भी क्या संयोग है कि 30 मई को एक साथ विद्रोह करना है, वो तो मंगल पांडे जी को थोड़ा ज़्यादा उत्साह है, कुछ पहले ही उनका गुस्सा जाग उठा और उन्होंने मार्च में ही विद्रोह कर दिया, नहीं तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जो भूमिका थी वो पारंपरिक संचार माध्यम या प्रतीकों के जरिए, जो रोटी और कमल के फूल के जरिए संदेश दिए गए थे। एक चीज ये देखिए कि आज लाखों की संख्या में छपने वाले अखबार हैं, हम रेडियो पर बैठे हैं, रेडियो है, इंटरनेट आ गया है, इसके जरिए इससे ज़्यादा तो त्वरा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता, और टेलीविज़न है, लेकिन फिर भी देखिए कि पूरा भारत, और वह भारत सिर्फ आज वाला भारत नहीं, पाकिस्तान का जो ईरान से सीमा से लगा हुआ भारत और इधर बांग्लादेश तक, बर्मा भी उस समय हिस्सा था, जाग उठा था। तो निश्चित तौर पर तब पत्रकारिता ने बहुत बड़ी भूमिका नहीं, क्योंकि पत्रकारिता तो खुद ही शैशवावस्था में थी, लेकिन उस आज़ादी के आंदोलन की आँच से हमारे यहाँ जो जागरूकता फैलती है।

0: है, उसने पत्रकारिता को, नवजागरण को, अपने स्व को, हम क्या हैं, इसकी ओर झांकने का एक बहुत बड़ा मुद्दा देती है। एक तरह से कह सकते हैं कि इन सब चीजों के विकास का प्रस्थान बिंदु है 1857 का स्वाधीनता संग्राम।
1: वाह, क्या बात है। कहीं ना कहीं हर, जो कहते हैं, छोर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसमें हिंदी पत्रकारिता की एक अहम भूमिका रही है। अब हम ये क्या मान के चलते हैं, और हम जानते भी हैं, इस बात को कहते भी हैं कि कहीं ना कहीं एकीकरण में, एकबद्ध करने में हिंदी पत्रकारिता ने अहम भूमिका निभाई है। तो उस युग से जब पत्रकारिता की, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई और आज के युग तक, क्या पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रता का सुर, उसको हम अनुभव कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, हिंदी पत्रकारिता का तो इसमें और बांग्ला पत्रकारिता का सबसे बड़ा योगदान है। भारतीय जो आज के संदर्भ में, हालांकि अब राष्ट्रवाद शब्द कुछ दूसरे अर्थ में भी लिया जा रहा है, आज़ादी के पहले राष्ट्रवाद का मतलब होता था भारत की बात करना सिर्फ, और भारतीय आज़ादी की उसमें एक संकल्पना थी। तो उस विचारधारा को, उस वैचारिकी को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान हिंदी का है। और अगर हिंदी पत्रकारिता ने ये योगदान, हिंदी पत्रकारिता की ये ताकत नहीं होती और योगदान नहीं निभाया होता, कहाँ गांधी जी, गुजराती भाषी और अंग्रेजी के बड़े निष्णांत जानकार थे, उन्होंने लंदन में जाके बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और 1916 आते आते वो क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इस सब में वो दिलचस्पी लेने लगते हैं। अपने पाठकों को, श्रोताओं को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, आप तो शायद जानती ही होंगी दीपिका जी, कि गुजराती में गांधी जी ने, भरूच में एक सम्मेलन हुआ था 1916 में, और वहाँ के शिक्षक संघ का सम्मेलन था, उस सम्मेलन में पहली बार उन्होंने कहा था कि भारत स्वाधीन होगा तो उसकी भाषा हिंदी होगी। तो निश्चित तौर पर, चूंकि हिंदी क्या थी, देखिए मुझे अभी इस बात, मतलब आपने सब सवाल पूछा तो कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। भारत के एक बड़े ही चर्चित प्रभावी नौकरशाह थे, बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, टीएन सेशन साहब। टीएन सेशन साहब ने एक बार कहा था कि मेरी दादी, वो कहाँ, तमिलनाडु के सुदूर इलाके से, जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित उनका गांव है, बोले मेरी दादी, मतलब उनकी दादी 90s के बाद की, तुरंत मतलब 20वीं सदी के शुरुआत के वर्षों में वो चार धाम यात्रा करने आई, और उन्होंने कहा था अंग्रेजी में कि उनकी दादी तमिल के अलावा एक शब्द नहीं जानती थी, और वो चार धाम यात्रा करके, तब न रेल थी उस तरह से, न आज की तरह हवाई जहाज था, और वापस चली गई थी। काम कैसे चलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपसी संपर्क के लिए इन्हीं भाषाओं का, चाहे वो जिस रूप में हिंदी रही हो। मैं एक गुजारिश करूंगा अपने श्रोताओं से, भारत के एक बड़े जानकार हुए हैं, बड़े विद्वान हुए हैं, गांधीवादी थे, धर्मपाल जी। धर्मपाल जी की एक छोटी सी किताब है भारत का स्वधर्म, उसको पढ़ें। और वो कोई मतलब कपोल कल्पना पर आधारित किताब नहीं है। धर्मपाल जी लंदन गए और वहाँ जब उनसे वक्त नहीं कट रहा था तो लंदन के जो म्यूजियम है और लाइब्रेरी में जाने लगे, जो ब्रिटिश सरकार की लाइब्रेरी है, और वहाँ जो भारत से अंग्रेज सरकार ने दस्तावेज भेजे थे, उन दस्तावेजों में दिए आंकड़ों के आधार पर वो किताब लिखी है। उनकी एक बड़ी मशहूर और किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, भारत का रमणीय वृक्ष, एक तरह से शिक्षा को गांधी जी ने कहा था, तो गांधीवादी थे तो उन्होंने वो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर लिखा द ब्यूटीफुल ट्री। उसमें आंकड़े बताते हैं कि आज के जो तमिलनाडु राज्य में भी हिंदी माध्यम के, वो निश्चित तौर पर आज वाली हिंदी नहीं थी, स्कूल चल रहे थे, और ये 1823 का जो ब्रिटिश सरकार का सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट है। मैं उसकी तैयारी करके नहीं आ रहा था, आया था, लेकिन बात पर बात निकलती जा रही है। तो हिंदी पत्रकारिता में ताकत, और हिंदी में खासतौर पर ताकत नहीं होती तो महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी, आप जानती हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पहले निदेशक सी राजगोपालाचारी, उस जमाने में हजारों की उनकी प्रैक्टिस चलती थी, 1918-19 में उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। हमारा जो, हम जिस रेडियो स्टेशन बैठे हैं, इस रेडियो स्टेशन का एक पार्ट, जब मद्रास रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई तो उस समय वो मद्रास प्रांत के प्रीमियर थे, तब मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था, तो उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया। जरा कभी मौका लगे तो मैं

0: श्रोताओं से भी गुजारिश करूंगा, आकाशवाणी के और प्रसार भारती के आर्काइव पर वो भाषण है, आप भी कभी दीपिका जी सुनिएगा क्या लोग थे। तो हिंदी पत्रकारिता का विकास, हिंदी का विकास है, हिंदी नवजागरण का विकास है। और अभी तो हम लोग के पास टाइम है, चर्चा करते रहेंगे।
1: जी, चर्चा करते रहेंगे। और आपने यहाँ पर एक अहम पहलू जोड़ दिया, और उसमें आपने आकाशवाणी का नाम ले लिया। किस तरह से आकाशवाणी ने अपने अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है आकाशवाणी 8 जून को, तो इन 200 वर्षों में आकाशवाणी का भी एक अहम योगदान है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे चलकर अपने श्रोताओं के साथ। और बहुत कुछ है अर्जित करने के लिए। आज मैं यही महसूस कर रही हूँ कि मेरे पास क्यों केवल सिर्फ आधे घंटे का समय और बाकी है, क्योंकि उमेश जी के पास इतनी सारी जानकारी है, जितनी अर्जित की जाए उतनी कम है। तो ज्ञान पिपासुओं के लिए हम यही कहेंगे कि एक एक शब्द को सुनिए, चुनिए और आप यथावत उसे लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें आपको कहीं नहीं प्राप्त होती है। साक्षात आज हम हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं, तो हमारी ओर से ना हम चाहते हैं कि आप एक गाने की फरमाइश हमसे कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो आपका और हमारा नाता बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही प्यारा है, अटूट है, लेकिन आज हम चाहेंगे कि आप बताएं वो एक कौन सा नगमा है जो आपको पसंद।
0: टिप्पणी करके मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी फिल्मों में बहुत सारे गाने ऐसे भी हैं जो दार्शनिक अभिरुचि के हैं, जिनके अर्थ जो सामने दिखते हैं उससे कहीं अलग होते हैं। ऐसा ही एक गीत है फिल्म सरस्वती चंद्र का, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। इसमें व्यवहारिकता भी है, दर्शन भी है, और जीवन की रपटीली राह पर कैसे चलना है उसका संदेश भी है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, अगर आप
1: जी
0: सुना सके तो बड़ा अच्छा रहेगा।
1: जी बिल्कुल। और आपकी इस बात पे एक बात जोड़ना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि आकाशवाणी से हम सभी का संबंध बहुत गहरा है, और हम नित्य प्रति, खासतौर पर मैं यही कहती हूँ कि भाषा संस्कार सर्वप्रथम माता पिता ने और उसके बाद आकाशवाणी ने हमें दिया है। तो हिंदी पत्रकारिता की जब बात हो रही है, आकाशवाणी का भी इसमें अहम योगदान है, तो हमें भाषा संस्कार देने के लिए हम आकाशवाणी का धन्यवाद देना चाहते हैं।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के आकाशवाणी के आशियाना प्रोग्राम के इस अंक में, जहां हम हिंदी पत्रकारिता पर विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। 200 वर्ष पूरे होने वाले हैं, हम हिंदी पत्रकारिता को मना रहे हैं, जी रहे हैं उसके साथ। और हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री उमेश चतुर्वेदी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके माध्यम से हमने अतीत के पन्ने इसलिए कहेंगे कि उनकी हर एक पन्ना कुछ कहता है और हर एक पन्ना आगे के पन्नों से जुड़ा होता है। तो जब हम स्मृति के पन्ने पलट रहे हैं तो ना जाने कितनी ही स्मृति के वो पल हमें याद आ रहे हैं, और उमेश जी एक एक कर हर पल को दूसरे पल के साथ जोड़ रहे हैं। उमेश जी, अगर नवजागरण की बात की जाए तो उस दौर में हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से किस प्रकार नवजागरण ने काम किया, किस प्रकार नवजागृत हुए?
2: देखिए, आधुनिक नवजागरण की जो शुरुआत है, आप तो बताएं कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो आप देखेंगे कि वो भी पश्चिम बंगाल से ही शुरू होता है। और नवजागरण के सबसे बड़े जो पैरोकार के रूप में लोग उभरते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। अच्छा, देखिए, केशव चंद्र सेन जी का नाम याद आया तो एक और चीज़ याद आ गई हिंदी से जुड़ी हुई
1: जी।
2: 1875 में पहली बार केशव चंद्र सेन जी ने ही कहा था कि सिर्फ हिंदी में ही वो ताकत है जो पूरे भारत की राजभाषा बन सकती है, जोड़ सकती है, राष्ट्रभाषा बन सकती है, 1875 में। और केशव चंद्र सेन जी ऐसे अंग्रेजी के विद्वान थे कि उनके व्याख्यान को सुनने के लिए लंदन में हॉल भर जाते थे। तो ऐसा व्यक्ति बोलता है, तो खैर वहाँ से नवजागरण की जो शुरुआत होती है। और एक चीज़ मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा, दीपिका जी आपको भी याद दिलाना चाहूँगा कि हिंदी ही नहीं, मैं सिर्फ हिंदी से इसको नहीं जोड़ना चाहूँगा, आज़ादी के पहले तक भारत के जितने बड़े राजनेता हुए हैं, तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी, नेहरू जी को भी रख सकते हैं इसमें
1: जी,
2: और अभी दीनदयाल उपाध्याय को भी, मैं आज की जो सरकार है उसके जो प्रेरणा पुरुष हैं दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे लोग, राम मनोहर लोहिया अच्छे पत्रकार भी थे, खुद लिखते थे। हिंदी पत्रकारिता के सबसे बेहतरीन इतिहासकार माने जाते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि राजा राम मोहन राय से लेकर राम मनोहर लोहिया तक सब बेहतरीन पत्रकार भी थे, और सब ने कहीं ना कहीं हिंदी में काम किया है। गांधी जी देखिए हरिजन निकालते थे, यंग इंडियन निकालते थे। तो हिंदी का जो हिंदी पर जो छाप दिखती है वो इन व्यक्तित्वों की भी दिखती है। और हिंदी ही नहीं, भारतीय नवजागरण में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तिलक, जिसे लाल बाल पाल की जो टिकड़ी कहते हैं, इन लोगों ने तो शुरुआत की एक तरह से राजनीति को बदलने की, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के जो धारा है उसको बदलने की। अरविंद घोष, ये भी इन सब लोगों ने, तो ये सब लोग भी अच्छे लेखक भी थे, अच्छे पत्रकार भी थे। तो इन्होंने हिंदी नवजागरण को, भारतीय नवजागरण को, मैं इसको हिंदी नवजागरण में बांधना नहीं चाहता, मैं पूरे उत्तर भारत का नवजागरण को कहूँगा कि पूरे उत्तर भारत का नवजागरण को बढ़ावा देने में हिंदी पत्रकारिता का

का योगदान है। ब्रिटेन की एक विद्वान ने 1920 से 1940 तक की हिंदी पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन के आधार पर एक रिसर्च बुक लिखी है, पब्लिक स्फीयर ऑफ हिंदी, हिंदी का लोकवृत्त में नाम से ये हिंदी में अनुवादित हो चुकी है। और ये जो मैं थोड़ा स्फीयर की बात कर दूं कि स्फीयर की जो अवधारणा है, स्फीयर का जो कंसेप्ट है, एक जर्मन समाजशास्त्री हेबरमास ने दिया है। जैसे इसको समझने के लिए ये कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग अपने निजी जीवन में कुछ और होते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो कुछ अनुशासन, कुछ चीज़ों को हमको बांधना होता है, तो उसमें हमें कुछ मूल्यों से हम अनुशासित होते हैं, प्रेरित होते हैं। ये मूल्य ही पब्लिक स्फीयर के मूल्य कहे जाते हैं। महिला शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, छुआछूत का विरोध, स्वच्छता, आप ये देखिए, ये सारे कदम और इनके संदेश और इसको एडॉप्ट करना, इन मूल्यों को, ये हिंदी पत्रकारिता के जरिए हुआ है। और उस ब्रिटिश विद्वान ने अपने रिसर्च में सिर्फ 1920 से लेकर 1940 तक का अध्ययन किया है, और वो किताब है, बड़ी मार्वेलस किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ें तो पता चलेगा कि हिंदी पत्रकारिता। और देखिए कौन अध्ययन कर रहा है, ब्रिटेन, इंडोलॉजिस्ट, ब्रिटेन में रहने वाला इंडोलॉजिस्ट अध्ययन करता, बड़ी मोटी किताब है, कि किस तरह से हस्तक्षेप करती है और मूल्य बढ़ती है। तो हिंदी नवजागरण, हिंदी में जो जागरूकता बढ़ती है, हिंदी के पब्लिक स्फीयर के जो वैल्यूज हैं, आज उन्हीं वैल्यूज पर पूरी पॉलिटिक्स, पूरा जीवन चल रहा है। थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो सवाल उठते हैं, अरे देखो ये वैल्यूज को उन्होंने ध्यान नहीं रखा, अभी किसी महिला के साथ कुछ ना फरमानी हो जाए तो ये कहाँ से आया है, क्यों सवाल उठता है? क्योंकि ये मूल्य पत्रकारिता ने स्थापित किए, वो हिंदी पत्रकारिता थी। आप उस दौर की पत्रिकाओं में के पन्नों से गुजरेंगी, प्रभा, मर्यादा, माधुरी, हंस, आज का हंस नहीं, प्रेमचंद ने निकाला था, विशाल भारत, तो इन सब पत्र पत्रिकाओं में, प्रवासी, तो आपको ये सारे मूल्य दिखेंगे। और ये मूल्य आप देखेंगे कि आज़ादी के आंदोलन के बाद, और जब आज़ादी मिल जाती है तो स्थापित तो हो जाते हैं, पत्रकारिता का उद्देश्य थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के पहले तक हिंदी पत्रकारिता या अंग्रेजी की कुछ पत्रकारिता को छोड़ दो तो लगभग पूरी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का एक उद्देश्य ये था कि आज़ादी पाना है, इसलिए वो टूल भी थी। इसीलिए स्वराज पत्रिका, अखबार जो था, स्वराज अखबार के 7 संपादकों को काला पानी या ऐसे कठोर सजाएं हुई, और उसने अपने संपादक का जब विज्ञापन निकाला तो वो बोला कि एक पैर जेल में रखना होगा आपको, ये मान के चलिए, खाने के लिए दो कुछ सूखी रोटियां मिलेंगी, एक गिलास ठंडा पानी, और इनाम में आपको जेल की यात्रा। क्या लोग थे, कैसे उन्होंने पत्रकारिता की, पंडित रामदहीन ओझा पत्रकारिता करते हुए शहीद हो गए, मतलब क्रांति, जो सशस्त्र क्रांति है, उसके पहले शहीद मंगल पांडे हैं, और संजोग से वो बलिया के थे निवासी। और ये देखिए कि जो शांतिपूर्ण क्रांति अखबार के जरिए कर रहा है कोई व्यक्ति, पंडित रामदहीन ओझा, वो भी बलिया के थे, वो जेल में उनको अंग्रेजों ने मार दिया पिछली सदी के 30 के दशक में। तो हिंदी पत्रकारिता ने इन मूल्यों को गढ़ने के लिए अपना खून पसीना सींचा है। और पता नहीं मुझे, क्योंकि उनका तो कोई अनुभव है नहीं, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जिनकी याद में हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनके मन में ये सब बातें थी कि नहीं थी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं दीपिका जी कि उनके मन में भारत को बनाने का, हिंदी को गढ़ने का, हिंदी क्षेत्र में नवजागरण को फैलाने का एक सपना जरूर था, क्योंकि हमारे ही परंपरा में कहा जाता है शब्द ब्रह्म है, तो शब्दों की ताकत, और हिंदी पत्रकारिता ने अपनी पूरी यात्रा में ये दिखाया है, चाहे वो आपातकाल तक आते आते देखिए, अब भी देखिए, आज भी पत्रकारिता के साथ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि चूंकि भारतीय पत्रकारिता का, विशेषकर हिंदी पत्रकारिता का जन्म स्वाधीनता आंदोलन की कोख से हुआ है, तो उसने स्वाधीनता के मूल्यों को अपने आप आत्मसात कर लिया है, इसलिए तमाम विचलन के बावजूद जब पत्रकारिता को जरूरत पड़ती है तो उसको अपने मूल धारा पर लौटना होता है, और नहीं लौटेगी तो जनता उसको नकार देगी, तो इसलिए उसको बार बार लौटना होता है मूल धारा से। जहां वो विचलित होने की कोशिश करती है तो जो कोख से मिले हुए संस्कार है, अभिमन्यु को मिला था ना, कुछ कुछ वैसा ही है, तो कोख से मिले हुए संस्कार उसको बार बार

0: ट्रैक पर लाते हैं। दीपिका जी
1: जी, आपकी बातें सुनने के बाद मैं पूर्ण रूप से आपकी बातों में ना कहीं मैंने आपकी बातों को इतना आत्मसात कर लिया कि मैं हर छोर को ढूंढने लगी हूं कि हम ये कह सकते हैं कि एक शिक्षित समाज की जो ढांचा है, जो स्थापना है, वो उस वक्त हो चुकी थी हिंदी पत्रकारिता की वजह से, और आज हम उसी शिक्षित समाज में जी रहे हैं जिसकी हमने कल्पना की। हम कहते हैं हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना से तो हम बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि जब फाउंडेशन यानी कि जब हमारी जड़ें स्ट्रांग हो जाती हैं तो फिर हम उन्हें जीने लगते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं रीचिंग टू द मासेस, आज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात की जाए, या फिर आज हमारे पास कितने ही आयाम ऐसे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति का ये उद्देश्य रहता है कि हम कंटेंट बनाएंगे रीचिंग टू द मासेस। रीचिंग टू द मासेस का जो आधारभूत स्तंभ है ना, वो तो हिंदी पत्रकारिता ने पहले ही स्थापित कर दिया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरवशाली बात है कि हमारी जड़ें हिंदी पत्रकारिता में रची बसी हैं, और हमें उसकी खुशबू को ना सदैव हम किसी भी मीडियम में
0: बनाए रखना है,
1: उसकी गरिमा को बनाए रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी जिस पर हम गर्व करते हैं, हिंदी जिसकी वजह से हम ना केवल अपने देश में लेकिन विश्व भर में जाने जाते हैं, जिसे पूरा विश्व आज आत्मसात करना चाहता है, हमें उन जड़ों को मजबूत रखना होगा, उसे सींचते रहना होगा, तभी हम अपनी हिंदी पत्रकारिता या अन्य पत्रकारिता, कहीं ना कहीं सोर्स भी सर देखिए ना, कि अगर हम सोर्स देखें, आज विभिन्न भाषाओं में काम हो रहा है पर मूल फिर भी हिंदी है, और हिंदी पत्रकार कितनी बार हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन होता है खबरों का, तो कहीं ना कहीं हिंदी पत्रकारिता ने ना केवल हिंदी को स्वावलंबी बनाया और एक ढांचा स्थापित किया पत्रकारों के लिए भी, जो एक समय होता था जब कलम से
0: हिंदी खबरें लिखी जाती थी, सबसे ज्यादा हिंदी पत्रकारिता ने ही गढ़ा है। इसीलिए जब हिंदी पत्रकारिता में जब कोई भाषाई विचलन दिखता है तो हमारे मनों में, क्योंकि हम लोग भी तो हम हर मनुष्य अपने पिछली पीढ़ी से जो जीन है ना उसको लेता है, उसके गुण लेता है, तो इसका ही असर है कि हमारे मन में एक झटका सा लगता है, विरोध में उतरते हैं। कई बार वो विरोध बहुत खुला भी ना हो तो नाराजगी के भाव से ही जाहिर किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो हिंदी भाषा को गढ़ने में पत्रकारिता का भी बड़ा योगदान है
1: जी। अब पत्रकारिता और साहित्यकारों की बात की जाए तो उस दौर में, इस दौर में, अगर हम हर दौर को कवर करते हुए यहाँ चलें, हर दौर को पूरा करें, तो साहित्य और पत्रकारिता किस तरह से पैरेलल चली है?
0: देखिए, साहित्य और पत्रकारिता विशेषकर हिंदी में तो साथ ही चली है, और आप देखेंगे कि उस दौर में जैसे माधुरी और मर्यादा जिसकी का जिक्र किया मैंने, तो उनके जो संपादक रहे हैं प्रेमचंद जी ने हंस निकाला, वो संपादक रहे, ये सब लोग साहित्यकार थे और बड़े पत्रकार भी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का उल्लेख किया बिना हिंदी पत्रकारिता के बात पूरी नहीं होती है। माधवराव सप्रे के उल्लेख किए हुए बिना, ये दो माधवराव सप्रे देखिए हिंदी के बड़े कहानीकार भी थे और हिंदी के बड़े पत्रकार भी थे। तो उनके नाम पर भोपाल में एक वो म्यूजियम ही है, संग्रहालय ही है। तो माधवराव सप्रे, और आधुनिक दौर में आप देखेंगे तो इलाचंद्र जोशी, इंद्र विद्या वाचस्पति, ये रघुवीर सहाय, सच्चिदानंद वात्सायन, हीरा लाल आज्ञे, और मनोहर श्याम जोशी, विद्यानिवास मिश्र नवभारत टाइम्स के संपादक रहे। तो ये हिंदी पत्रकारिता और साहित्यकारिता दोनों पैरेलल चली है, लेकिन उदारीकरण के बाद आप देखेंगे तो हिंदी पत्रकारिता अपने को साहित्य से इतर करने की, अलग करने की कोशिश करती दिखती है। और इस कोशिश में एक चीज है क्या कि साहित्य जो है ना संस्कार देता है, तो जब पत्रकारिता इस साहित्यिक संस्कार से अलग होने की कोशिश करती है तो वो थोड़ा सा उसमें विचलन भी दिखता है। जो आज की पत्रकारिता में शोर दिखता है, कहीं ना कहीं साहित्य से उसकी दूरी की वजह से ये हुआ है। ऐसा जो भी पत्रकारिता के जानकार हैं, विद्वान हैं, वो मानते हैं, पत्रकारिता के जिज्ञासु भी मानते हैं कि पत्रकारिता में जो शोर बढ़ा है, मतलब शुक्र है कि रेडियो में वो शोर नहीं है जहाँ
1: जी,
0: हम बैठे
1: जी,
0: हैं।
1: इसके लिए हम जाने भी जाते हैं
0: जी, बिल्कुल। तो पत्रकारिता का काम क्या है? संस्कारित करना। पत्रकारिता का काम शोर करना नहीं है, अपनी बात संस्कारित ढंग से भी मजबूती से कही जा सकती है। और क्या गांधी जी के जमाने में या इवन आपातकाल के दौरान भी जो पत्रकारिता ने काम की है तो वो शोर करने वाली नहीं थी। भाई एक अखबार ने, नई दुनिया अखबार ने अपने को आपातकाल में अपने एडिटोरियल के जगह को खाली छोड़ दिया था, एक दिन किसी

0: ने काले से रंग दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया था, तो उन्होंने तो शोर नहीं मचाया। और इसका असर दिखा कि जब 1977 में चुनाव हुए तो जो आपातकाल लगाने वाली सरकार थी वो चुनाव हार गई थी। तो पत्रकारिता बिना शोर किए हुए भी बहुत कुछ कर सकती है, और ये हिंदी के जो मूर्धन्य पत्रकार रहे हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मैं उनका नाम छूट रहा था लेना जरूरी, रामन दोषी, पंडित कृष्णदत्त पालीवाल, ये बनारसी दास चतुर्वेदी, मैं एक और मतलब चूंकि रेडियो में बैठे हैं तो मैं रेडियो का ही एक इंटरव्यू लोगों को सुझाना चाहूंगा जिनकी दिलचस्पी हिंदी और हिंदी पत्रकारिता में है। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का हमारे जिस आकाशवाणी के लिए एक इंटरव्यू किया था, उस जमाने के नवभारत टाइम्स के संपादक अक्षय कुमार जैन ने, वो कुछ किताब के फॉर्मेट में भी है, बनारसी दास चतुर्वेदी समय के दर्पण में, उसमें वो जो बताते हैं चीज़ों को और किस तरह से रेडियो ने हस्तक्षेप किया पत्रकारिता में, ये उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि बात बड़ी अंतहीन हो जाएगी, हमें थोड़ा
1: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल विराम हम लेते हैं और आप बताएं हमें कि कौन सा एक ऐसा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं।
0: ये
1: वैसे
0: एक और मुझे गीत बड़ा पसंद है और बीच बीच में मैं गुनगुनाता हूँ अगर मौका लगता है तो, वो जहरीले इंसान फिल्म का गीत है,
1: किशोर कुमार की
0: किशोर
1: आवाज में।
0: कुमार जी की आवाज़ में, और वो क्या मखमली आवाज़ है, और क्या ये इस गीत का भी एक दार्शनिक अंदाज है, ओ हंसनी।
1: वाह क्या बात है, तो आप में एक पत्रकार के साथ साथ एक साहित्यकार भी है और दार्शनिक तो आप बन ही जाते हैं जब हिंदी और पत्रकारिता कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व निर्माण करती है, इस बात में कोई संदेह नहीं।
0: ओ हंसिनी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जहां हमने आज हिंदी पत्रकारिता पर विस्तृत रूप से चर्चा की। 200 साल पूरे होने वाले हैं हिंदी पत्रकारिता के और उमेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, आपसे जानना चाहते हैं हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप आजादी के बाद किस तरह बदला, किस तरह निखरा?
2: आजादी के बाद आप देखेंगे कि आर्थिक जो सुधार होता है, आर्थिक विकास होता है, तकनीकी विकास भी होता है, तो जो ट्रेडिशनल छापे की मशीनें थी उसकी बजाय ऑफसेट प्रिंटिंग या आधुनिक एकदम से फोटोटाइप सेटिंग वाली डेस्कटॉप पब्लिशिंग आता है, तो इससे पत्रकारिता में त्वरा आती है, तेजी आती है। लेकिन जो कंटेंट की जहां तक बात है, तो आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में वो थोड़ा नेहरूवादी समाजवाद का सपना जो था उस पर वो पत्रकारिता पर हावी रहता है। लेकिन 1962 में चीन के हाथों अपनी जो लड़ाई में हमें शिकस्त मिली, उसके बाद सपना वो चूर होता है और पत्रकारिता उसको रूपायित करना शुरू करती है। 1975 में, चूंकि टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी बोलना चाहूँगा, लोगों को बताना चाहूँगा, 1975 में जब आपातकाल लगता है तो वो सारे सपने टूट जाते हैं और वहाँ पत्रकारिता एक नए रूप में फिर उभरती है। वो उस टाइप की पत्रकारिता है जो अंग्रेजी राज के जमाने में एक क्रांति करती हुई दिखती है और बहुत ज्यादा बदलाव आता है। और चूंकि हम लोग रेडियो के स्टूडियो में बैठे हैं, आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठे हैं, जो भूमिका अखबारों ने हिंदी को गढ़ने में निभाई है, आकाशवाणी ने ना सिर्फ हिंदी, हर भारतीय भाषा को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। बीबी केसकर का नाम लिए बिना ये बात पूरी नहीं होगी, जो भारत के सूचना प्रसारण मंत्री रहे, 10 साल रहे
1: जी,
2: लगातार वो अकेले सूचना प्रसारण मंत्री हैं जो 10 साल रहे। और जगदीश चंद्र माथुर जो आकाशवाणी के महानिदेशक थे, भले ICS अफसर थे लेकिन एक जाने माने नाटककार और लेखक भी थे, तो उन्होंने मिल करके जो हिंदी ही नहीं पूरी भारतीय भाषाओं को गढ़ा और एक तरह से रेडियो पत्रकारिता, ठीक है कि वो पत्रकारिता अखबारी पत्रकारिता की तरह नहीं थी, आज भी 1955 के कैबिनेट के आदेश के तहत रेडियो में, रेडियो मतलब आकाशवाणी के अलावा किसी और को न्यूज़ चलाने की अनुमति नहीं है, वो आकाशवाणी से ही, प्रसार भारती से ही लेकर चलाएंगे जो प्राइवेट चैनल हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं को गढ़ने में आकाशवाणी का भी बड़ा योगदान है, पत्रकारिता को एक नए शेप में सहयोग देने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में रेडियो, खासतौर पर भारतीय आकाशवाणी का, जो कभी ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता था, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी
1: जी, तो आकाशवाणी से हम सभी को सीखना चाहिए कि पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखें, साथ ही साथ हिंदी की गरिमा, हिंदीकरण, जो हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, कृपया करके वो ना करें, क्योंकि हमें गरिमा बनाए रखनी है। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमारे मित्रों के साथ हिंदी पत्रकारिता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ए भाई दर देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी।
4: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है।

0: ओरल डिजीजेस यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें, और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू जी। थैंक यू।
0: श्रोताओ, ओरल हेल्थ हमारे पूर्ण स्वास्थ्य का आईना होती है। अगर मौखिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र पर। डॉक्टर साहब, अगर हम दांतों और मौखिक स्वच्छता की बात करें तो ये कितना जरूरी है हमारी सेहत के लिए? दांत और मुंह में परेशानी आने के कारण क्या है, क्यों ये खराब होते हैं दांत?
1: देखिए, ओरल कैविटी जो मुख है, इसको पहले इट इज अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द बॉडी, मींस पूरे जनरल हेल्थ का स्टेटस जो है ओरल कैविटी से पता चल जाता है। ठीक है, अगर उसके जनरल कंडीशन पेशेंट की डेंटल कंडीशन की पुअर है, कि उसमें दांतों में कैविटीज हो रही हैं, उसके मसूड़े खराब हैं, उसमें पायरिया लग रहा है, और यहाँ उसके मुंह के अंदर सफेद निशान या कैंडिडाइसिस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, या उसके कोई इम्पैक्टेड टीथ हैं उसकी वजह से स्वेलिंग है, या पेशेंट कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स पहनते हैं
0: जी,
1: तो उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब हम आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। इसके अलावा टीएमजे की प्रॉब्लम्स हैं, जो जो जॉ का ज्वाइंट होता है, जबड़ा जो हिलता है ज्वाइंट, तो उससे रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल पब्लिक में, और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मुंह में काफी अल्सर्स हो जाते हैं कई बार, वो सिस्टेमिक डिसीजेस जो बॉडी की जनरल डिसीजेस हैं उससे रिलेटेड हैं, कई बार फीवर के साथ अल्सर्स आ जाते हैं और कैंसर तक का रूप ले लेते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस शो में।
0: जी, तो सुना श्रोताओं आपने, आज हम डिस्कस करेंगे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और मुंह में होने वाली परेशानियों की। डॉक्टर साहब, इस खास विषय पर बहुत सी जानकारी आपसे लेंगे, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैविटी की। अगर बात कैविटी की करें तो कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से दांतों में कैविटी की समस्या हो जाती है?
1: देखो, डेंटल कैविटीज जो है बहुत ज्यादा सभी दांतों में, ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं सब में कैविटीज होती हैं। और जो इसका प्रमुख कारण है वो है कि हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करना। जैसे कि हम हमेशा पब्लिक में और पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि ब्रश जो है ट्वाइस डेली करना चाहिए, 2 मिनट के लिए करना चाहिए, और कौन सी टूथपेस्ट के साथ करना चाहिए ये भी बताते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रिकमेंडेड है, जो कि एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है, उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं फ्लोराइड होना चाहिए, बिकॉज फ्लोराइड है वो कैविटीज को प्रिवेंट करता है, कि कैविटी को रोकता है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट एनेमल। ओके, बट एनेमल में भी केरीज हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लोराइड है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सो हमें हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए। उसकी क्या कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, किस एज ग्रुप में, वो सब मैं आपको साथ साथ इस प्रोग्राम में बताते रहूंगा।
0: जी जी जी डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, ले लेते हैं उनका कॉल।
1: जरूर।
0: हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपको भी
1: नमस्कार।
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही अर्ज कर रहा हूँ।
0: जी।
2: तो मेरे 4 छोटे-छोटे सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि कई शख्स कहते हैं हमारे मुंह में 32 दांत है, कई कहते हैं 28 है, क्योंकि मेरे मुंह में स्वयं 28 दांत है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये मतलब मदर फादर की वजह से ही ऐसा होता है, या फिर हमारा कोई कुदरतन मतलब ऐसी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अक्कल दांत होती है, जो अक्कल दांत जिसे कहते हैं, अगर अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसका हमें घरेलू स्तर पर क्या करना चाहिए उपाय। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते, और ऐसा ही अगर हम जो है दांत साफ करते वक्त ऐसा करें तो कोई हर्ज तो नहीं। और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि हम कुछ भी खा ले, कुछ ही पी ले, किसी भी पेस्ट को इस्तेमाल कर ले, किसी ब्रश को, न जाने होता क्योंकि 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद मुझे तो सेमल आनी फिर शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले चिगम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे 4 सवाल है, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल आपने सुने,
1: 3-4 सवाल है इनके। तो सबसे पहला सवाल तो इनका ये था कि इनके 28 दांत है और इनके 32 क्यों नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि पहले जो इंसान था, मतलब सेंचुरीज काफी सालों से पहले, तो उस टाइम जो है रॉ फूड खाता था, फ्रूट तोड़ा और वो खा लिया, पका के या सॉफ्ट फूड नहीं खाता। तो उस टाइम पे 32 दांतों की इंसान को जरूरत होती थी। तो जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई, सॉफ्ट फूड पे आया, तो ऐसे ऐसे 32 जॉ का साइज जो है श्रिंक होता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो 32 दांत होते थे, जो लास्ट के मोलर है, विजडम टीथ जिसको कहा जाता है, वो अब यहाँ तो इरप्ट ही नहीं होते हैं, या इरप्ट होते हैं तो टेढ़ी मेढ़े डायरेक्शन में होते हैं, तो वो फिर फर्दर प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, अगर आपके 28 दांत हैं तो वो भी नॉर्मल ही है, तो आपको कोई आर्टिफिशियल लगवाने की जरूरत नहीं है। सेकंड ये है कि अगर इम्पैक्टेड टीथ हैं, जो कि विजडम टीथ जिसे कहते हैं, अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर आप उसका चेकअप कराइए आपके नियरेस्ट डेंटल सेंटर पे। अगर वो कोई पैथोलॉजी उसके साथ एसोसिएटेड है, या वो अगर टेढ़ा है और वो साथ वाले दांत को डैमेज कर रहा है, तो फिर उसका एक्सरे करा करके उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। या कई बार क्या होता है, जो इम्पैक्टेड टूथ है, जो अभी निकला ही नहीं है, उसके ऊपर गम की कवरेज होती है, तो वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन करती रहती है, उसको सोर थ्रोट भी होता है, कई बार उनको फीवर भी हो जाता है रिकरेंट उसकी वजह से। तो आपका चेकअप होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए। अगर उसके साथ टूथ बार बार प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। अगर कोई टूथ में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके साथ कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड है, कई बार इम्पैक्टेड टीथ के साथ रसोली या कोई ट्यूमर भी एसोसिएट हो जाता है, तो इसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, एवरी 3 ईयर और 5 ईयर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक एक्सरे जरूर होना चाहिए, कहीं उसके

0: साथ कोई पैथोलॉजी तो एसोसिएटेड नहीं है, तो इस तरह से हम इम्पैक्टेड टीथ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि जो दांत है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपना जो हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है वो इन्हीं से चबाते हैं और हमारे पेट तक जाता है, और इनकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस की। इससे अगर आपको भी है कोई आपके मन में सवाल या जानना चाहते हैं कोई बात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ना। डॉक्टर हरमीत सिंह है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम कैविटी की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कैविटी की समस्या क्यों होती है, इसका कैसे पता चले कि किसी को कि उसको कैविटी हो गई है और इसका निदान क्या है?
0: देखिए, कैविटीज की जो नॉर्मली समझा जाता है कि कैविटीज जो है ब्लैक कलर की जिसमें होल हो जाता है कि वो कैविटीज हो गई है, ठीक है, बट ये स्टार्ट होता है एज अ डेंटल केरीज जो कि एक व्हाइट स्पॉट लीजन की तरह स्टार्ट होता है। ये लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है इस चीज के बारे में कि व्हाइट स्पॉट लीजन्स जो होते हैं डेटर एक्चुअली डेंटल केरीज जो इनिशियल स्टेज में है, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं उसको कैविटीज में प्रोग्रेस होने में, तो वो बहुत अच्छी स्टेज है उसको प्रिवेंट करने की। हम उसको फ्लोराइड टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं और उसको फ्लोराइड जेल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए देते हैं और फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करते हैं क्लिनिक में, तो उससे जो है हम डेंटल कैविटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना होगा और देखा होगा, अपने साथ भी होता है कि जब हमें दांत में दर्द होता है तो हमें लगता है कि इसकी क्या वजह है, कि कोई कैविटी हो गई है या ये जो दर्द है वो नॉर्मल है, तो कैसे पता करें कि ये दांत का जो दर्द है वो नॉर्मल है या कैविटी है उसमें?
0: नहीं, देखिए, उसके लिए आपको एक दंत चिकित्सक के पास, डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। वो क्लिनिकली चेक करेंगे कि दांत के में कैविटी है या कोई उसके साथ गम्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या कई बार कुछ लोगों को न्यूरेल्जिया जैसी पेन होती है, करंट की तरह लगता है, तो उसमें दांत की कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी दांत में पेन होती है। कई बार टूथ जो है क्रैक हो जाता है जो कि विजिबल नहीं होता क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली भी, एक्सरे में भी नहीं दिखता है, तो उसको जो है क्रैक टूथ सिंड्रोम जैसे कि हम कहते हैं, तो वो डेंटिस्ट के पास जाकर ही आप अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम आगे बात करेंगे। एक श्रोता जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरी एज 48 है।
0: हाँ जी। और
1: आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम कुंवर सिंह है
1: जी।
2: तो मेरे ये टीथ में गैप आ रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है? नीचे वाले दो जो फ्रंट के टीथ में ज्यादा गैप आ रहा है
1: जी,
2: तो उसका सोल्यूशन क्या है? इस एज में क्या किया जा सकता है, ये और धीरे धीरे वाइडन होते जा रहे हैं?
0: देखिए, जैसे कि आपने एज अपना 48 बताया है, तो जनरली इस एज में गैप होना का कारण ये हो सकता है कि आपके टीथ जो हैं वो वीक हो रहे हैं, मीन्स उसके गम्स जो हैं जो इसको होल्ड करके रख रहे हैं वो गम्स वीक हो गए हैं, तो हो सकता है कि उसमें बोन रिजॉर्प्शन हो गया हो, बोन जो है दांतों को छोड़ के नीचे चले जाने की वजह से टीथ का फ्लेयरिंग हो जाता है, तो गैप हो सकता है उसकी वजह, तो आपको एक डेंटल सर्जन से चेकअप कराना चाहिए, तो जो भी उसका कारण है उस कारण को दूर करके उसका सोल्यूशन किया जा सकता है।
1: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कैविटी की, अब हम बात करते हैं पायरिया की। ये किस तरह की बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और बचाव कैसे करें इससे?
0: देखिए, पायरिया एक जनरल टर्म है जो कि साइंटिफिकली हम उसको जिंजिवाइटिस या पेरिडोनटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से होता है कि जब कोई पर्सन जो है ठीक से ब्रश नहीं करता है और उसका प्लाक जो है डिपॉजिट रह जाता है दांतों के ऊपर, तो उसकी वजह से जो प्लाक है वो इरिटेट करता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं तो वो इरिटेट करते हैं गम्स को, मसूड़ों को, तो उसकी वजह से तो बॉडी का रिएक्शन होता है, तो गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जैसे ही पेशेंट ब्रश करता है तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और होता यह है कि पेशेंट ये समझता है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्रश करना छोड़ देता है, वो उंगली से क्लीन करना शुरू कर देता है, तो होना ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपका प्लाक डिपॉजिट है मसूड़ों के आसपास तो ब्रश रेगुलर करते रहना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, और इसके अलावा अगर फिर भी अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो जिंजिवाइटिस फर्दर प्रोग्रेस हो जाती है पेरियोडोनटाइटिस में। उसमें क्या होता है, गम्स के साथ साथ बोन भी जो है डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं, रिजॉर्प्शन होना शुरू कर जाते हैं, तो उससे जो है पॉकेट्स बन जाती हैं गम्स में, पेरियोडोनटल पॉकेट्स।

0: जिसको हम कहते हैं, और साथ साथ टीथ की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो इन सबको टुगेदर हम बोलते हैं पायरिया हो गया है। तो उसके लिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करनी चाहिए और डेंटल फ्लॉस करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हम सबको बोलते हैं ब्रश एंड फ्लॉस योर इफ यू वांट टू क्लीन द टीथ।
1: जी श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेज, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें, इस विषय पर। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: सिंह जो हमें बता रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस जैसे खास विषय पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल।
1: हाँ जी जरूर।
0: हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं सपना बात कर रही हूँ।
0: जी
2: सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, हम सबको इतना बेनिफिट मिलता है इससे।
0: जी धन्यवाद।
2: और दूसरा ये है कि मेरे दो पेशेंट हैं।
0: जी
2: एक तो ये है कि मेरे पीछे वाले मोलार्स ऊपर और नीचे दोनों में ही कीड़ा लगा है।
0: जी
2: काला काला।
0: जी
2: जो बहुत ही क्लियरली ऑब्वियसली विजिबल है सभी को, मगर फिर भी डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि जब तक वो आपको ट्रबल ना करें तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मुझे पूछा था कि क्या उसको ऐसे छोड़ना सेफ है, कहीं वो इधर उधर और तो नहीं हो जाएगा
0: जी
2: इन्फेक्शन। नंबर टू, मेरी आरसीटी, एक डेंटिस्ट ने बोला कि मुझे आरसीटी कराना चाहिए, एक और मोलार है मेरा।
0: ओके।
2: उसमें बहुत ज्यादा मुझे पेन था और वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने भी लगा है। एक ने बोला कि आप उसको निकलवा लीजिए और दूसरे ने बोला आप आरसीटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आरसीटी करवा लिया है उसका, मगर अभी भी खाने में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्दो पहले के जितना पेन तो उसमें नहीं है, मगर फिर भी वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं है खाने में।
0: जी
2: डॉक्टर साहब, कि उसका मतलब क्या हमने ठीक किया उसमें आरसीटी कराकर?
0: जी
1: देखिए, आपका पहला सवाल था कि आपके दांतों में काला काला कीड़ा लग गया है पीछे वाले दांतों में। देखिए काला काला कीड़ा जो है वो कैविटीज ही है कि नहीं है वो, या वो सिर्फ एक स्टेन्स ही है जो ब्लैक दिखता है, वो जरूरी नहीं कि कैविटीज ही है। अगर उसमें होल है तो उसको हम कैविटीज बोलते हैं। हो सकता है वो कुछ स्टेन्स हो, एक्सटेंसिव स्टेन्स हो, जो आप ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे उसकी वजह से वो ब्लैक हो गए हैं। तो जरूरी नहीं कि वो कैविटीज ही है, तो आप एक चेकअप करा सकते हैं कि वो है कि नहीं है। तो और दूसरी चीज आपने बोला कि वो स्प्रेड ना हो जाए, कैविटीज जो है दूसरे दांतों में ना लगे। देखिए इन कैविटीज जो है डेंटल कैविटीज वो इन्फेक्शियस नहीं होती कि एक दांत से दूसरे दांत को लग गई, या एक साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में कैविटी लग गई, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कैविटीज का इन्फेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डेंटल कैविटीज जो है प्लाक की वजह से होती है, जो प्लाक दांतों के आसपास डिपॉजिट हो जाता है, और जब आप मीठा साथ में खाते हैं तो जो बैक्टीरिया है प्लाक में वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, और वो एसिड जो है टूथ को डिसॉल्व करता है, एनेमल को डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से उसमें कैविटीज हो जाते हैं। तो मेन है आपको प्लाक को कंट्रोल करना है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से और डेंटल फ्लॉस करके, तो इस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है डेंटल कैविटीज का। और दूसरा क्वेश्चन बताया कि आपका टूथ में पेन था, उसका रूट कैनाल हो गया है, तो आप जो है अपना चेकअप करवा करके आरसीटी के बाद का एक्सरे करा करके देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके कैपिंग उसमें फुल कवरेज क्राउन उसके ऊपर लगवा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, कैविटी काफी लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी क्या वजह है और कैसे बचाव कर सकते हैं इससे?
1: देखिए डेंटल कैविटीज जो है काफी टाइम से है लोगों में। ठीक है, तो हमारे जो है दो मॉडल होते हैं डेंटिस्ट्री में। एक होता है ऑपरेटिव मॉडल, जो कि मॉडर्न डेंटिस्ट्री जो डॉक्टर जीवी ब्लैक ने सेंचुरीज एगो दिया था कि दिस इज ऑपरेटिव मॉडल, कि कैविटीज हैं उसमें कैविटीज को क्लीन किया और उसमें फिल कर दिया, मीन्स ड्रिल एंड फिल, जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री डेट इज बेस्ड ऑन द। तो कैविटीज तो कम नहीं होंगी, जो जिसको कैविटी हो गई है उसको हमने ड्रिल करके फिल कर दिया, तो हमने प्रिवेंशन के लिए तो कुछ किया नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रिवेंटिव मॉडल अपनाया, नॉन ऑपरेटिव केयर दिया उन्होंने पब्लिक में, तो उससे जो है कैविटीज होने से उन्होंने रोका का, तो उन वो डेवलप कंट्रीज ने काफी हद तक कैविटीज को कंट्रोल कर लिया है। तो उन्होंने क्या क्या अपनाया तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वो जो है ब्रश जो है आपको एक तो दिन में दो बार ही करना चाहिए, सुबह और रात को 2 मिनट तक करना चाहिए, और पेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए ब्रश करना। जैसे जो बेबी है न्यू बॉर्न, उसका फर्स्ट टूथ अपीयर होता है 8 to 10 मंथ ऑफ एज में, तो जैसे ही फर्स्ट टूथ अपीयर हो तो उसको जो है सॉफ्ट बेबी ब्रश से उसको क्लीन करना स्टार्ट करना चाहिए, बिना शक आप बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं। ठीक है, और उस बच्चे का फर्स्ट विजिट टू द डेंटिस्ट शुड बी एट हिज फर्स्ट बर्थडे, मीन्स 1 ईयर की अराउंड उसको फर्स्ट विजिट आना चाहिए। सेकेंड, जो न्यू बॉर्न टू less than 18 ईयर जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उसमें जो ब्रश है बिना पेस्ट के आप कर सकते हैं, बट 18 मंथ टू 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं, 6 ईयर तक के बच्चे, उनको जो है किड्स टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा 500 ppm होना चाहिए, और जो 6 ईयर से अबव हैं उनको 1000 ppm एडल्ट टूथपेस्ट फ्लोराइड

0: वाला यूज कर सकते हैं, तो उससे जो है प्रिवेंशन होगा डेंटल कैविटीज का। और सेकंड, ब्रश करना कैसे है, ब्रश करने के अलग अलग टेक्निक होती हैं, जैसे कि हम मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं, तो उसमें ये होता है ब्रश के ब्रिसल्स को 45 डिग्री एंगल पे रख करके गम लाइन पर, और उसको वाइब्रेटरी मोशन देना है और उसको फिर डाउन मूव करना है टुवर्ड्स द च्यूइंग सरफेस। तो मॉडिफाइड बास टेक्निक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको उसका वीडियो मिल जाएगा कैसे करना चाहिए ब्रश। और इसके अलावा आपको जो 18 मंथ से ऊपर, मैंने आपको बताया कि 500 ppm टूथपेस्ट यूज करना है, 6 ईयर ऑनवर्ड्स जो है एडल्ट टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, और ब्रशिंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस डेली करना है, और इसके साथ साथ डेंटल फ्लॉस जरूर करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस है इंटर डेंटल एरिया जो है वो क्लीन करने के लिए होता है, और वो एक थ्रेड की तरह है, वो फिंगर्स पे लगा के सभी दांतों को बीच में से क्लीन करना चाहिए। आजकल जो है एंगुलेटेड फ्लॉस भी आते हैं, हैंडल वाले फ्लॉस जिसको बोलते हैं राइट एंगल्ड फ्लॉस, तो उसमें ये है कि हैंडल लगा होता है उसको होल्ड करके आप इंटर डेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हैं, उससे कैविटीज की और गम्स की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर भी आपको रेगुलर एवरी 6 मंथ डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए डेंटल चेकअप के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इसी बीच में हमारे पास सवाल आ रहे हैं, सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब छोटे बच्चे ठीक से ब्रश नहीं करते, क्या करें, अभी आपने जो बताया, और उसके बाद क्या नीम से दांत की नीम का दातुन करने से बीमारियों से बचाव हो सकता है, और क्या फिटकरी से गार्गल करते रहना ठीक है।
0: देखिए, अगर बच्चे ब्रश नहीं कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को उनको सिखाना है कि कैसे ब्रश करना है, पेरेंट्स मिरर के सामने खड़े होकर पेरेंट्स उनको सिखाएं कि कैसे ब्रश करना है, वो खुद करें और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करें, खुद भी करें बच्चों को भी करवाएं। और दूसरा सवाल था उनका
1: कि फिटकरी से के पानी से क्या गार्गल करनी चाहिए।
0: जो बेस्ट माउथ वॉश जो है ना हमारे माउथ के लिए, वो है गुनगुना पानी में हल्का सा नमक डालिए, जो सादा नमक होता है ना बस वही नमक डालिए, और उसको सलाइन बना के, मतलब 0.9% जो होता है, तो जितना आंसुओं में नमक होता है ना उतना नमक आपको पानी कोसे पानी में डालना है, तो उससे जो है रिंस कर सकते हैं आप ब्रश करने के बाद।
1: और एक सवाल था कि नीम का दातुन क्या दांतों के लिए फायदेमंद है।
0: देखिए, हम यहाँ पर साइंटिफिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड, ठीक है, तो हम जो है एज अ डेंटिस्ट, मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं तो टूथब्रश एडवाइस करूंगा, सॉफ्ट टूथब्रश करना चाहिए दांतों को क्लीन करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए कॉल लाइन पर, उनका कॉल ले लेते हैं।
0: हाँ जी, जरूर।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं हेमलता बात कर रही हूँ दिल्ली से। मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर सर से।
1: जी,
2: सबसे पहला सवाल मेरा है कि जैसे टेढ़े मेढ़े दांतों को अगर मुझे ब्रेसेस करवाना है तो उसकी कोई पर्टिकुलर एज होती है, या हम कभी भी करवा सकते हैं किसी भी एज में? और अगर हम बड़ी एज में करवाते हैं तो क्या उससे फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मैंने दांत में ना अपना कैपिंग करवाया था, तो वो 2 साल पहले करवाया था, तो अभी उससे जहाँ पे कैपिंग करवाया था जिस दांत में, वो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी होता है और समटाइम बहुत तेज भी होता है, तो क्या मुझे वो कैपिंग चेंज करवानी चाहिए? और एक तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम लोग दांतों की क्लीनिंग के लिए या उनकी वाइटनिंग के, हमें साल में हम कितनी बार उसे करा सकते हैं?
1: जी,
2: यही मेरे 3 सवाल है। थैंक यू।
0: देखिए, आपका जो सवाल था कि कैपिंग करी हुई है दांत के ऊपर और कैपिंग की वजह से आपको पेन हो रहा है, देखो कैप जो होता है वो तो आर्टिफिशियल मटेरियल है टूथ के ऊपर, तो उसकी वजह से तो पेन नहीं है। पेन तो है कि क्या आपने उस दांत में आरसीटी कराया था कि नहीं कराया था, जनरली आरसीटी के बाद ही हम कैप एडवाइस करते हैं दांत के ऊपर। और अगर अभी भी आपको पेन हो रहा है तो हो सकता है आपने आरसीटी ना कराया, उसमें कैविटी हो जो नीचे नर्व को टच कर रही है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप ठीक से इंटरडेंटल कैप के साथ इंटरडेंटल एरिया में क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं डेंटल फ्लॉस से या इंटरडेंटल ब्रश से, तो वहां पर गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी माइल्ड पेन हो जाता है। तो आप अपने घर के पास जो भी डेंटिस्ट हैं, आप उनको उनके पास चेकअप कराइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए।
1: सर, इनका सवाल था कि क्या टेढ़े मेढ़े दांत को ठीक कराने की कोई उम्र है या किसी भी उम्र में कराए जा सकते हैं?
0: देखिए, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो जितना जल्दी कराएंगे उतना इजिली हो जाएंगे, और जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा और प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो जल्दी से जल्दी आपको कराना चाहिए इसका।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और सवाल आया है व्हाट्सएप पे, सुनील कुमार विश्वकर्मा लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या टूथपेस्ट के स्थान पर दंत मंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी उम्र 52 वर्ष है और ज्यादातर

0: दांत इनके घिस चुके हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने।
1: देखिए जो मंजन जिसको हम टूथ पाउडर कहते हैं वो जो है एब्रेसिव होता है, वो दांत को घिस देता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि दांत घिस गए हैं, वो दांत घिस ही इसलिए गए हैं कि आप पाउडर यूज कर रहे हैं। तो हम पाउडर नहीं एडवाइस करते हैं यूज करने के लिए, टूथ पेस्ट यूज करना चाहिए, फ्लोराइड वाला टूथ पेस्ट जिसमें कि एडल्ट में एटलीस्ट 1000 mg ppm 1000 ppm का फ्लोराइड होना चाहिए, तो पेस्ट यूज करना चाहिए।
0: जी। दिनेश कुमार भंडारी हमें नेपाल से लिख रहे हैं कि उनकी उम्र 37 साल है और जो उनके दांत हैं गम से खून निकलता है, क्या समस्या है ये इन्हें बताएं प्लीज।
1: अगर आपको कोई जनरल बीमारी या सिस्टेमिक बीमारी नहीं है तो उसका जो मेन रीजन जो होता है गम्स में से ब्लीडिंग का, वो लोकल फैक्टर जो कि प्लाक जो गम्स के आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसकी वजह से जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस हो जाता है, तो ब्लीडिंग होती है ब्रश करते टाइम, कई बार अपने आप भी होना शुरू हो जाता है ब्लीडिंग। तो उसका मैंने पहले भी बताया कि आपको ओरल हाइजीन जो है ठीक रखना है, ब्रशिंग ट्वाइस करना है, जिस टेक्निक से बताया वैसे करना है, और सॉफ्ट ब्रश यूज करें और इंटरडेंटल ब्रश या फिर डेंटल फ्लॉस करके प्लाक को कंट्रोल करें। अगर आपके दांतों के आसपास टार्टर डिपॉजिट हो गया है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, तो उसका आपको प्रोफेशनल स्केलिंग एंड क्लीनिंग करा करके एक बार कराना होगा, उसके बाद उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं दांतों को।
0: जी डॉक्टर साहब, अंगद यादव आजमगढ़ यूपी से हमें लिख रहे हैं कि इनका 5 साल का बच्चा है जिसके ऊपर के दांत काले दिखाई दे रहे हैं और सामने के दांत जो है आधे आधे गल गए हैं। बच्चा रात में रोता है और उसको दर्द की शिकायत रहती है। डॉक्टर के पास ये गए थे और उन्होंने बोला है कि बच्चा छोटा है, दांत का दर्द नहीं, उसे किसी तरह की और वजह से दर्द हो रहा है। बच्चे के का दांत जो है वो भी दूध का दांत है, क्या करें।
1: देखिए 5 साल की उम्र है तो वो दांत तो उसके दूध के ही हैं, डेसिड्यूस टीथ जिसको हम कहते हैं। तो अगर उसके दांत काले हो गए हैं या तो उसमें कैविटीज हो गई हैं या फिर उसको कभी चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो डेड हो गए हैं दांत, उसकी वजह से भी काले हो जाते हैं। तो अगर उसको उसमें दर्द हो रहा है तो आपको चेकअप ही कराना पड़ेगा, तो क्या दांतों की वजह से है या नहीं है, अगर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराना होगा, यही है इसका।
0: सर हम अभी बात कर रहे थे दांतों की, अब मैं बात आपसे करूंगी मुंह से जुड़े स्वास्थ्य की। एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है मुंह से दुर्गंध आना, ये समस्या कई बार उन लोगों को भी परेशान करती है जो अच्छे से ब्रश करने के साथ साथ टंग क्लीनिंग पर भी ध्यान देते हैं, बट इसका कारण क्या है।
1: देखिए मुंह से स्मेल आना जैसे हेलिटोसिस हम कहते हैं, वो मोस्ट कॉमनली तो गम्स की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से होती है। जैसे आपने बोला कि ब्रश करते हैं तो ये नहीं बताया आपने कि फ्लॉस भी करते हैं। मैं बार बार एडवोकेट कर रहा हूँ कि ब्रश भी करना है, फ्लॉस भी करना है, डेंटल फ्लॉस जो एक धागे की तरह होता है वो सभी को डेली करना चाहिए फ्लॉस। तो फ्लॉस आप साथ में करिए, इंटरडेंटल एरिया क्लीन रहेगा तो उसकी वजह से स्मेल नहीं आएगी। अगर ये तो है लोकल फैक्टर जो गम्स की वजह से हो जाता है, यहाँ कुछ कैविटीज हैं आपके दांतों में बहुत बड़ी बड़ी जिसके अंदर के फूड डेब्रिज रह जाते हैं, क्लीन नहीं हो पाते, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो फाउल ऑडर प्रोड्यूस करते हैं, तो कैविटीज की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपके ओरल हाइजीन पहले चेकअप कराइए, अगर सब ठीक है तो उसका कुछ सिस्टेमिक कारण भी हो सकता है। अगर कुछ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हेलिटोसिस हो जाती है, या ENT की जैसे पैरानेजल साइनसिस में कोई साइनोसाइटिस है उसकी स्मेल भी इसी तरह माउथ के करीब आती है, तो इस तरह से हो सकती है।
0: जी मुंह के अंदर दुर्गंध आने का कारण हमारा पाचन तंत्र भी हो सकता है पेट से जुड़ी परेशानियां। डॉक्टर साहब टंग क्लीनिंग जो है वो एक ओरल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ सर ये भी बताइए कि मुंह में छाले हो जाना जो कई बार एक बड़ी समस्या बन जाता है, खासकर गर्मी के सीजन में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है, क्या ये छाले ही अल्सर है या कुछ और कैसे इनका निदान किया जा सकता है।
1: देखिए टंग क्लीनिंग तो जरूर करना चाहिए, जब हम ब्रश करते हैं तो उसी ब्रश से आप टंग को भी क्लीन कर सकते हैं। तो टंग जो है नॉर्मली पिंक कलर का होता है, तो ऐसे उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए ब्लैक या व्हाइट कलर का, तो अगर कुछ है तो उसका चेकअप होना चाहिए। तो सेकंड सवाल था आपका कि मुंह में छाले हो जाते हैं। देखिए छाले तो बहुत तरह के मुंह में हो जाते हैं, बहुत कॉमन जो है वो तो है एप्थस अल्सर होते हैं, वो जनरली होते हैं स्ट्रेस की वजह से या नींद ना पूरी हो उसकी वजह से, या कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे फीवर हुआ तो उसकी वजह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मुंह के अंदर या लिप्स के पर, तो ब्लिस्टर जब रप्चर होते हैं तो वो जो है वायरल हर्पिस

0: इन्फेक्शन की वजह
1: जी
0: से भी जो है अछाले हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई दांत कहीं शार्प है या कोई कैक आर्टिफिशियल क्राउन लगा हुआ है वो शार्प है, उसके ट्रोमा रेगुलर ट्रोमा की वजह से भी मुंह में अल्सर हो जाते हैं। और कुछ लोगों को जो है हैबिट होती है टोबैको खाने की या स्मोकिंग की, तो उनमें भी अल्सर हो जाता है। तो अगर कोई भी अल्सर किसी भी तरह का अल्सर है, 2 से 3 हफ्ते की अगर उसकी हिस्ट्री है तो उसका बायोप्सी इज मस्ट, वो मैंडेटरी है कि उसका बायोप्सी होना चाहिए। अब सेल्फ मेडिकेशन या एक खाली मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं होगा, बायोप्सी से रूल आउट करना है कि कहीं इसके अंदर कोई कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो गई है। तो इसलिए जो है
1: क्या ये ओरल कैंसर से भी सर रिलेट करता है?
0: हाँ जी बिल्कुल, कोई कुछ रेड फ्लैग फीचर्स होते हैं अल्सर अल्सर के अंदर, वही मैंने फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था कि अगर 2 to 3 weeks से ज्यादा कोई भी अल्सर है तो उसकी बायोप्सी होना चाहिए। अगर कोई अल्सर जो है अगर हम उसको फील करें और रफ फील हो रहा है, फर्म फील हो रहा है, थिक फील हो रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग फीचर है कि वो कन्वर्ट हो सकता है कैंसर की तरफ, उसमें हो सकता है। इसके अलावा अल्सर के साथ साथ अगर जॉ बोन के नीचे या मुंह के आसपास कोई स्वेलिंग हो रही है, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो उस वो भी एक फीचर है, रेड फ्लैग फीचर जिसको कि हम बोलते हैं। अगर पेशेंट को जीरोस्टोमिया है, ड्राइनेस है बहुत ज्यादा मुंह के अंदर और साथ में अल्सर है, तो वो भी एक रेड फ्लैग फीचर है, उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अल्सर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट को दिखा करके आप चेकअप कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होता तो उसका बायोप्सी करा करके उसका डायग्नोसिस होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
2: हेलो
1: जी
2: साहब नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार,
2: कैसे हैं मैम?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम से प्रोग्राम का दिल सचाता हूँ।
1: जी जी,
2: और डॉक्टर साहब का भी शुक्र अपने दिल से करना चाहता हूँ।
1: जी जी, आप सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मेरा सवाल ये है जी, मेरा जाड़ दांत, एक जाड़ मेरी फूट रही है और वो कभी खींच जाती है कभी बंद हो जाती है, और मेरा जाड़ दांत कभी खींच जाता है कभी बंद हो जाता है, ठंडा गर्म लगता है
1: जी,
2: कौन सा बरतना चाहिए जी?
1: जी जी,
2: सवाल है जी,
1: जी आपने सवाल इनका सुन लिया डॉक्टर साहब, इनकी दाढ़ की शायद प्रॉब्लम है।
0: हाँ ये बोल रहे हैं कि सेंसिटिविटी होती है, तो हमने नॉर्मली देखा है कई पेशेंट्स या जनरल पब्लिक जो है कभी भी सेंसिटिविटी होती है तो वो टेलीविजन पे या रेडियो पे एक एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि सेंसिटिव पेस्ट लगा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें जो है ऐसे टीवी पर या कहीं एडवर्टाइजमेंट देख करके सेंसिटिव पेस्ट अप्लाई करना नहीं शुरू कर देना चाहिए। तो आपको अगर सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि दांत घिस गए हैं या दांत कहीं से क्रैक हो गया है, दांतों में कैविटीज हो गई हैं, गम्स नीचे चले गए हैं दांतों को छोड़ करके, रूट्स एक्सपोज हो गई हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो कई कारण है, टूथ क्रैक हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। तो पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए कि सेंसिटिविटी हो क्यों रहा है। अपने आप जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर जाके सेंसिटिव पेस्ट नहीं लगाना चाहिए, और जो है आप डेंटल चेकअप कराइए और जो भी उसका डायग्नोसिस है फॉर उसका फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए।
1: जी, प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस पर आज हमें बहुत बेहद खास जानकारियां मिल रही हैं और ये जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं डॉक्टर हरमीत सिंह। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं दांतों और मौखिक स्वच्छता से जुड़े खास विषय पर। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं TMJ की, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसके होने के कारण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है?
1: TMJ उसको जैसे कि टेम्परोमैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं, वो एक जॉ बोन का ज्वाइंट है। जैसे नी ज्वाइंट होता है, एल्बो ज्वाइंट होता है, ऐसे जॉ का भी एक ज्वाइंट है, इसको TMJ बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उसको हम टेम्परोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो जनरली ये इस पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि उनको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जॉ मूवमेंट में। सुबह उठते हैं तो उनको जॉ मूवमेंट करते टाइम पेन स्टार्ट होता है। पेन जो है माइल्ड टू मॉडरेट होता है और वो कान के आसपास या जॉ में या कान के ऊपर या कान के बैक साइड में कई बार नेक तक पेन हो जाता है। तो वो TMJ की वजह से हो सकता है, तो उसका चेकअप कराना चाहिए। तो जनरली उसका हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस लेवल, और स्ट्रेस की वजह से वो सारा दिन जो है अपने जॉ को क्लिंच करते रहते हैं और कई बार तो अनकॉन्शियसली सोने के बाद भी वो जॉ को क्लिक करते रहते हैं, जॉ को ग्राइंड करते रहते हैं, टीथ को ग्राइंड करते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं जॉ की वो जो है स्ट्रेस में आ जाती हैं, स्पाजम में चली जाती हैं, तो उसकी वजह से जॉ में स्टिफनेस हो जाता है, तो फिर मॉर्निंग में पेन करता है। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस रिलीव करना है कि स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए। चाहे आप योगा करके करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, तो स्ट्रेस को रिलीव करना है। इसके साथ साथ स्ट्रेस के अलावा सेकंड रीजन जो नॉर्मली टेम्परोमेंटलर ज्वाइंट डिसऑर्डर्स का होता है वो स्लीप अगर प्रॉपर ना ली जाए, नींद पूरी नहीं हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो जैसे हम एडवाइस करते हैं 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह TMJ के लिए भी 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो मैं एक एडवाइस करूंगा, स्लीप हाइजीन फॉलो करना चाहिए, स्लीप हाइजीन। तो उसमें यह है कि कोई भी इंसान उसको जो है एक कांस्टेंट टाइम पर सोना चाहिए और कांस्टेंट टाइम पर उठना चाहिए, सेम टाइम पर। जैसे रात को अगर 9 बजे 10 बजे सो रहे हैं तो रोज उसी टाइम ही सोएं, और उसे सुबह 5-6 बजे उठ रहे हैं तो उसी टाइम ही उठना चाहिए, और दोपहर का या दिन में अगर सोने का टाइम है तो वो उसको लिमिटेड रखें कम से कम, और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन टेलीविजन जो है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और जहां आपको सोना है वहां पर आपको नॉइज कम कर देनी चाहिए, नॉइज नहीं आना चाहिए, लाइट डिम कर देनी चाहिए, और कैफीन को दोपहर के बाद नहीं लेना चाहिए। कैफीन मीन चाय कॉफी जैसे ड्रिंक्स लेते हैं वो शाम को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो उसका क्योंकि इफेक्ट रहता है कि नींद नहीं आएगी फिर आपको। और रात के टाइम खाना जो है लाइट खाना चाहिए, और जनरली 2 to 3 hours बिफोर बेड डिनर हो जाना चाहिए, और डेली आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर आएगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपका टेम्परोमैंडिबुलर ज्वाइंट के डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यही है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, वो आपको डेंटल चेकअप कराएंगे तो फिर पता चलेगा।
0: डॉक्टर साहब, आपने स्लीप हाइजीन पर इतनी गहरी हमें अच्छी जानकारी दी, तो इसका मतलब तो ये है कि जो हम अपनी दिनचर्या है अगर उसको अच्छा रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा,
1: आपके हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए भी ये सब अच्छा रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, आपने TMJ की बात करी। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखती है, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर TMJ डिसफंक्शन एंड व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर दिस?
1: द रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्ब।

0: happens. Sometimes there is a malocclusion or a defective restoration, or if there is artificial teeth, occlusion is not there proper. So that all can cause TMJ disorder. So treatment I already explained, stress should be relieved and proper sleep should be taken.
1: Dr. Saab, ek aur important question hai ki ab baat unki kar lete hain jo डेंचर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी ओरल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और डेंचर्स के टाइप क्या हैं, क्या इसको लगाने के बाद मुंह की सफाई यानी हाइजीन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं?
0: बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने. जैसे कि अभी हमने स्लीप हाइजीन की बात की, ऐसे ही हम अब डेंचर हाइजीन की बात करना बहुत जरूरी है फॉर द डेंटिस्ट. बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिफिशियल डेंचर पहनते हैं, जैसे कि कम्प्लीट डेंचर अपर लोअर है, या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, या फिक्स पार्शियल डेंचर है. कुछ लोग इम्प्लांट्स लगाते हैं, उसके ऊपर क्राउन लगा होता है, तो इनका हाइजीन मेंटेन कर, जो तो फिक्स्ड है उसको तो आपको डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश करके आपको जो है उसको क्लीन रखना है. और जो रिमूवेबल डेंचर है उसको जो है आपको रेगुलर क्लीन करना है, और रात को सोते टाइम तो उसको उतार करके एक डेजिग्नेटेड जो कंटेनर है रखने के लिए आपने रखा हुआ हो उसके अंदर रखना चाहिए, ताकि गम्स जो है दांतों के नीचे गम्स हैं उनको जो है रेस्ट मिले. और डेंचर हाइजीन के लिए मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनली जो था वो ये है कि वेट स्टोरेज, डेंचर को जो है पानी में रखा जाता है ताकि वो जो है उसका जो मटेरियल है वो डैमेज ना हो, या मीन उसमें कुछ चेंजेस ना आए. तो उसको क्लीन जो है कि वो कैसे करना है, जैसे ही आपने डेंचर उतारा उसको सबसे पहले तो उसको वाटर से क्लीन करना है. एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, उसके साथ जो भी फूड डेब्रीज हैं उसके ऊपर उसको क्लीन करना है. तो डेंचर को टूथपेस्ट के साथ नहीं, क्योंकि उसके अंदर एब्रेसिव होता है, तो उसके साथ नहीं करना चाहिए. अब नॉर्मल सा एक सोप सोल्यूशन बना करके तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं डेंचर को. बट अगर उसमें कोई स्टेन्स हो रहे हैं दांतों के ऊपर, या कोई स्मेल आ रही है या किसी तरह से, तो उसके लिए डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स आते हैं, ठीक है. तो वो उसमें बॉक्स में डाल करके उसको कुछ घंटे के लिए उसके अंदर छोड़ सकते हैं, क्योंकि टैबलेट्स के अंदर वाटर में डालने से एफर्वेसेंट्स आते हैं, उसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट होते हैं, और बफर होता है जो कि उसको डिजोल्व करता है उसके अंदर जो भी डेब्रीज हैं उसको क्लीन करने के लिए. इसके अलावा अगर टैबलेट्स नहीं है तो विनेगर जो होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, उसको डाइल्यूट करके 1:4 वाटर से डाइल्यूट करके तो उसके अंदर हम कुछ घंटे के लिए या ओवरनाइट रख सकते हैं. बट उसको थॉरली रिंस कर लेना चाहिए सुबह उठ करके अच्छे से बिफोर यू पुट इन द माउथ, तो उसको क्लीन करना है. और इसके अलावा जो आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, तो आजकल जो डेंचर बन रहे हैं वो बहुत अच्छे मटेरियल से बन रहे हैं, एक्रेलिक जो है अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें डिस्टोर्शन नहीं होता. तो अभी जो एडवोकेट करते हैं कि डेंचर को जो है अब उतारने के बाद वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके आप ड्राई कंटेनर में रखिए, क्योंकि वो उसमें श्रिंकेज के चांसेस नहीं है, वो डैमेज नहीं होगा. तो अगर गुड मटेरियल का है तो उसको आप ड्राई स्टोरेज भी कर सकते हैं. तो ड्राई स्टोरेज का फायदा यह है कि उसके अंदर जो ह्यूमिड एटमोसफेयर नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं करेंगे, तो उसमें चांसेस ऑफ कैंडिडाइसिस नहीं होंगे पेशेंट को. तो ड्राई स्टोरेज कर सकते हैं. बट जैसे कि आपको डेंटिस्ट ने या मैन्युफैक्चरर ने आपको रेकमेंड किया है, आपका मटेरियल कैसा है उसको फॉलो करें, ठीक है. और डेंचर से एसोसिएटेड पेशेंट को जो है कैंडिडाइसिस, मुंह के अंदर सफेद निशान हो जाते हैं, मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो डेंचर जो है क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली. और एंगुलर केलाइटिस जिसको बोलते हैं कि माउथ के कॉर्नर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहां पर बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसका मेन कारण तो होता है कि आपका जो डेंचर है अगर वो लूज हो गया है, या फिर उसकी हाइट कम बनी है, तो उसके माउथ कॉर्नर पे जो है फोल्ड होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर एंगुलर केलाइटिस हो जाता है. तो डेंचर की हाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. अगर डेंचर स्टेबल है और वो उसमें हिलता नहीं है, लूज नहीं है, तो फिर वो डेंचर एंगुलर केलाइटिस और कैंडिडाइसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ब्रेसिस जो इस्तेमाल करते हैं उनकी, और जिनके दांतों में ब्रेसिस लगे हैं उनको दांतों की सफाई उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है. ऐसे में कैसे दांतों की सफाई के साथ ओरल हेल्थ को भी बेहतर रखा जा सकता है?
0: देखिए ब्रेसेस जो है दो तरह के आते हैं, एक तो रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं और फिक्स्ड ब्रेसेस होते हैं। रिमूवेबल को तो आपको रोज निकाल करके उसको वैसे ही क्लीन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है, रिमूवेबल ब्रेसेस को ब्रश से सोप सॉल्यूशन से क्लीन

0: करना है।
1: जी
0: इसके अलावा जो फिक्स्ड ब्रेसेस हैं जिसको कि हम नहीं पेशेंट अपने आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए उसके लिए स्पेशल ब्रश आते हैं, ऑर्थो ब्रश नाम से ब्रश आते हैं, तो उससे जो है क्लीन हाइजीन क्लीन रखना है। इंटरडेंटल ब्रश यूज करके आप उसको एरियाज को क्लीन रख सकते हैं। तो कहीं भी फूड डेब्रिज या प्लाक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो अगर प्लाक रहेगा तो उससे टीथ में लूज होने के और ऑर्थो ट्रीटमेंट फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो हाइजीन इम्प्रूव करके रखना बहुत जरूरी है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर भी।
1: जी जी डॉक्टर साहब, सागर हमें विजयपुरा कर्नाटका से लिख रहे हैं कि व्हाट ओरल रूटीन वी कैन फॉलो टू कीप आवर टीथ एंड ओवरऑल ओरल हेल्थ इन गुड कंडीशन। और हमारा भी आपसे यही सवाल है कि अब कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है, तो कैसे अपने दांतों और अपने जो मुंह के स्वास्थ्य को हम अच्छे से रख सकते हैं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं?
0: देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कॉर्पोरेशन से सप्लाई आते हैं उसमें 1% फ्लोराइड होता है, 1 ppm फ्लोराइड होना चाहिए। तो कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन एक वन मेथड है जिससे कि कैविटीज को, दांतों की कैविटीज सड़न को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे करना चाहिए, फ्लॉस कैसे करना चाहिए। आजकल तो बुक्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में भी अवेलेबल है कि ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए। और इसके अलावा डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रश मैंने आपको बता ही दिया। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी टूथपेस्ट उठा करके या पाउडर से या ऐसे, जो एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, एडल्ट में एटलीस्ट 1000 ppm, चाइल्ड में बिलो 6 ईयर 500 ppm टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। और टूथपेस्ट जब ब्रश किया टूथपेस्ट के साथ, तो आपको स्पिट करना है 10 मिनट तक, पानी से रिंस नहीं करना, ताकि जो पेस्ट का इफेक्ट है दांतों के ऊपर वो रहना चाहिए। तो स्पिट करें ब्रश करने के बाद 10 मिनट तक, पानी से रिंस नहीं करें, 10 मिनट के बाद आप रिंस करें। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन होती हैं कि आप जो है शुगर का कंजम्पशन मींस मीठे का जो है कम से कम रखें, स्टिकी और एसिडिक फूड,
1: खासकर रात में,
0: खासकर रात में बिल्कुल, और स्टिकी फूड जो है जो दांतों पे चिपके रह जाते हैं उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। एसिडिक फूड जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोलास पीते हैं तो उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। और
1: सर अगर कभी स्टिकी फूड लेते भी हैं तो उसके बाद हमें एकदम ब्रश करना,
0: हाँ, इसके
1: या
0: बाद बिल्कुल उसके बाद तुरंत बाद ब्रश कर लेना चाहिए। और जैसे कुछ बच्चों को जो है टॉफीज या चॉकलेट्स रेगुलर नहीं देना चाहिए, उनको ओकेजनली कभी बर्थडे पे या दे सकते हैं, तो उस टाइम आप उसी टाइम जो है साथ में ब्रश जो है वो कर लेना चाहिए। और एवरी 6 मंथ जो है डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और बच्चों में जो है पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं, तो वो हम एडवाइस करते हैं कि अगर वो अगर पिट एंड फिशर्स हैं, उनको प्रोन है कैविटीज के, तो सीलेंट्स लगा करके कैविटीज को होने से रोक सकते हैं, डेट इज प्रिवेंटिव मेजर। इसके अलावा हम जो जैसे कि व्हाइट स्पॉट लीजन्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैविटीज जो स्टार्ट होती है व्हाइट स्पॉट लीजन से स्टार्ट होते हैं, अगर वहीं पर हम कैविटी फ्लोराइड वार्निश या फ्लोराइड जेल अप्लाई करते हैं तो वो केरीज जो है कैविटीज में कन्वर्ट होने से रुक जाती है। और अगर फिर भी आपको शुगर लेना ही है तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, नेचुरल स्वीटनर आते हैं, जैसे स्टीविया है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो मीठा है बट उसके अंदर शुगर नहीं है, तो आप चाय में या दूध में।
1: और इसके अलावा सर हम फ्रूट्स भी तो ले सकते हैं जिनसे हमें नेचुरल स्वीटनेस मिलती है, जो
0: हाँ
1: नेचुरल
0: नेचुरल फ्रूट, नेचुरल फ्रूट आप खा सकते हैं, बट उसमें भी कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, तो फिर भी आपको उसके बाद भी ब्रश तो करना ही करना चाहिए।
1: हाँ जी, तो साथियों ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो था प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीज से जुड़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे रखें अपने मुंह के स्वास्थ्य को और दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर। और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी डॉक्टर हरमीत सिंह जी ने, जो है डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खास जानकारी हमें दी। और इसके साथ आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।

0: की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है। इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूं। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं। लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है। अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है
0: जी। होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड

0: एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
1: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
0: मैं बहुत भाग्यशाली था। मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे। वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है। और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
1: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती है। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू, आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है।
1: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ?
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, सीआरपीएफ ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट वो सारे केवल वीआईपी सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स ऑल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें एनएसजी और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और इन सब की सिलेक्शन उस यूपीएससी के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: मैं एमबीए करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयां आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने, आज से 22 साल पहले, ये बहुत बड़ी बात। तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे, और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में, सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो

0: कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह बहुत खुशी के भाव थे। मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ, देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों, उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
0: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, इसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब अपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहां भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: अपने, हाँ,
1: बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहां पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथ ही अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है, आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी,
0: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके, कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची

लगन है, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियार, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल, और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे

0: 1949 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यूई थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन, रिलीजन के लोग मिल जाएंगे और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती हैं।
1: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेजों के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना।
0: वाह,
1: क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: टू सोल्जर्स में, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था, और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी, तो ऑफकोर्स बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की

0: मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह क्या बात।
0: तो एक काफी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा और दो मौकों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअली और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है, सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके? तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है। चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ की ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका सर

0: शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और सीआरपीएफ भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के। सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है। आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है। तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: वाह क्या बात है। जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
0: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है, जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर। आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है। आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन करता, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा
1: शायद समझना
0: जी।
1: मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत।
0: जी
1: बिल्कुल, वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: आप मुझे टाइम ट्रैवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है।

0: परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
1: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
0: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और मैं थैंकफुल हूँ।
1: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
0: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, कोई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
1: हाँ जी
0: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीतमाला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या हाँ। गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए।
1: बिल्कुल। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
1: बिल्कुल,
0: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है।
0: निसंदेह
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता

गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल आपकी वाणी आकाशवाणी, और ये जो वाणी आप सुन रहे हैं वो है मस्त पलंग आरजे श्वेता की वाणी, और मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ 102.6 एफएम रेनबो पर। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना सिर्फ इस फ्रिक्वेंसी के साथ बल्कि न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू भी, कई अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में भी। प्रोग्राम शुरू हो चुका है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में आज मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ वो जानना है तो बस मेरी इस गली के आसपास घूमते रहिए। कौन सी गली? आकाशवाणी की गली।

बिल्कुल, उनकी माँ ने तो तीखे से बोल बोले हैं, आपकी मदर भी बोल देंगी अगर आप इतनी गर्मी में बाहर जाएंगे बिना छाते के, बिना कैप के, या बिना ऐसी सुरक्षा के जिसकी वजह से आपको धूप लगे, लू लगे, और फिर घर में आकर आप बीमार पड़ जाएं। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ ही हम हर रोज की जो जितना भी काम होता है वो गर्मी में करना तो है, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है और अपनों का भी ख्याल रखना है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी देशवासियों के लिए उनको एक आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें और अवश्य जब भी कोई काम हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक काम हो, तभी आप बाहर निकलें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें और ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। तो अगर संभव हो, अगर बहुत अच्छे से आप कर सकें, तो किसी भी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी ज़रूर दें। जब हमारे घर में कोई आता है, कोई सामान देने आता है, तो डिलीवरी बॉयज आते हैं या फिर घर में सफाई करने वाली आती हैं या बाहर कूड़ा उठाने वाले आते हैं, तो आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिए कि क्या एक गिलास पानी पीना चाहेंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मस्त मलंगार जी श्वेता के साथ, और फिलहाल एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

0: वैसे आपने चुना हुआ है आकाशवाणी को और आकाशवाणी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 90वां जो हमारा चल रहा है साल। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आकाशवाणी एट 90 है और उसी से रिलेटेड एक प्यारा सा एपिसोड है आप सबके लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। वर्ष 1974 में रेडियो प्रसारण की गुणवत्ता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की गई। इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य रेडियो नाटकों, फीचर्स, संगीत, डॉक्यूमेंट्री और नवाचारपूर्ण कार्यक्रमों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों व कर्मियों को सम्मानित करना था। परिवार कल्याण, कृषि और फार्म एंड होम जैसे जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों को भी सम्मानित किया जाने लगा। इसी वर्ष भारत की प्राचीन भाषाई विरासत को सहेजने के लिए आकाशवाणी से संस्कृत भाषा में भी समाचार बुलेटिन की ऐतिहासिक शुरुआत की गई। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो के साथ, मैं हूं मलंग आरजी श्वेता आपके साथ। और फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स में आपके लिए और बेहतरीन सी बातें लेकर आई हूँ। हाँ जी, जानती हूँ कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में हम कहाँ जाएं घूमने के लिए, सोचना बड़ा पड़ता है ना। आप सबके लिए स्पेशली सोचना पड़ता है मुझे, क्यों? क्योंकि आप मेरे अपने हैं। क्यों ना ऐसी किसी जगह जाया जाए जहाँ पर आपको अपने हिस्ट्री के बारे में भी मालूमात हो और उसके साथ साथ आप अपना आराम से एसी में भी रह सके, यानी गर्मी भी ना लगे और आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाए, ना सिर्फ आप बड़ों को बल्कि बच्चों को भी। हाँ, देखिए देखिए कैसे पेरेंट्स एकदम खुश हो गए ना, अरे कुछ तो मिला बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे जाना चाहते हैं बाहर। अब घर में रह रह के वो भी हो चुके हैं बोर, कितना मोबाइल देखे, कितना टीवी देखे, है ना। तो चलिए बाहर लिए चलते हैं उन्हें कुछ ऐसी जगह पर जहाँ उन्हें पता चलेगा कि आखिर हमारी दिल्ली की मेट्रो जो है वो कब से शुरू हुई है, और अगर वो ड्राइवर बन जाए मेट्रो के तो बात ही क्या है। दिल्ली मेट्रो ड्राइवर बनना है तो सिर्फ 10 रुपए में पॉसिबल है। हाँ जी, सोचो जरा दिल्ली मेट्रो का ड्राइवर बनना, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। ओहो, बहुत ही आसान सा लग रहा है ना। ब्लू लाइन के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के अंदर ही बना हुआ है दिल्ली मेट्रो म्यूजियम, जहां आप दिल्ली मेट्रो का पूरा सफर समझ सकते हैं, फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या जान सकते हैं, तो वो भी बता देती हूँ ना जल्दी से। दिल्ली मेट्रो कैसे शुरू हुई, अंडरग्राउंड टनल्स कैसे बनी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब इतनी बड़ी बड़ी टनल्स बनी है, इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं बनी है, ओ हो, कैसे बनी होगी, उसके लिए कौन सी मशीन थी जिसके यूज किया जाता है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई एम श्योर आप देखिएगा कैसे बच्चे दौड़ दौड़ के भाग भाग करना यहाँ पर अपनी जानकारी, अपना जो ज्ञान है वो बढ़ाने वाले हैं। और क्या क्या देख सकते हैं या जान सकते हैं वो बताऊंगी इस गाने के उस पार। Stay tuned। मेरी बात सुनके एकदम लगा ना मन भागने के लिए कि हाय अभी चल देते हैं, बस अभी जाते हैं। टाइमिंग्स भी तो सुन लीजिएगा और डेज भी। हाँ, जरा रुकिए, जरा थमिए, इस गाने को एंजॉय कीजिए पहले।

तो भागते भागते जो मन है ना, इसे ले चलिए जरा मेट्रो के म्यूजियम में। हाँ जी, आपको बहुत सारी बातें तो बताई थी कि दिल्ली मेट्रो के म्यूजियम में आप जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और क्या जान सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये जान सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो कैसे शुरू हुई, दूसरा ये जान सकते हैं कि अंडरग्राउंड टनल्स कैसे बनी, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज कि मेट्रो ट्रेन्स कैसे ऑपरेट होती है। अब हम सब जानते हैं कि इतनी सारी मेट्रोज हैं, है ना, इतनी सारी मेट्रो लाइंस हैं, येलो, ब्लू, पिंक, पर्पल, मजेंटा लाइन, ऑरेंज लाइन और बहुत सारी लाइंस, है ना। तो उसमें भी बहुत सारी मेट्रो चलती हैं, सुबह से लेकर रात तक मेट्रो चलती हैं। तो कैसे इनका तालमेल बैठता है ये जानना बहुत बहुत मज़ेदार होता है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। मैं बड़ी होके भी, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि वहाँ जाके देखो और देख के ऐसे हैरान रह जाते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे देखते हैं ना, ऐसे आंखें खुली फटी की फटी रह जाती हैं और बस देखते रहते हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है। तो वही हाल होने वाला है बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी।

और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज, आप खुद ड्राइवर जो है ना सिमुलेटर पर मेट्रो चला सकते हैं, बिल्कुल हाँ जी, और प्रॉपर ड्राइवर सीट, रियल कंट्रोल्स और फुल ऑन रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पर। ये म्यूजियम पहले जो है पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर था, लेकिन अब इसे शिफ्ट करके और ज़्यादा मॉडर्न और इंटरेक्टिव बना दिया गया है, और अब ये कहाँ पर है, ये है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइमिंग्स और डेज बता दूं जल्दी से, है ना, ये देखे कैसे इंतजार में बैठे हैं, तो बता देती हूँ, ट्यूसडे से लेके संडे तक आप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक वहां पर जा सकते हैं मेट्रो म्यूजियम जो सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा मंडे छुट्टी होती है और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ही आप जा सकते हैं। तो बस अब क्या बात है, अब आराम से आपका मन लगेगा, आपके बच्चों का मन लगने वाला है, एसी रहेगा आराम से, गर्मी भी नहीं लगेगी, ठंडी ठंडी में आराम से पूरा दिन एक एक चीज को समझिए, देखिए, मेट्रो की हर एक बात को जानिए। अभी तो और भी बहुत सारी बातें जाननी बाकी हैं सिटी लाइट्स में, बहुत इंटरेस्टिंग वाली बातें।

और हम भी ना तकते रहते हैं भाई, आसपास की अपनी लाइट्स को देखते हैं जब हम रास्ते में चलते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स को देखते हैं। और अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता था कि जब हम छोटे थे या आप भी छोटे हैं, चांद को अपने साथ साथ चलते देखते हैं तो ऐसा लगता है वो हमारा पीछा कर रहा है ना, ऐसा लगता है ना? ऐसा लगता था मुझे तो बहुत बार लगता था कि देखो देखो जहाँ हम जाते हैं ना वहीं चंदा मामा भी ना हमारे साथ साथ आ जाते हैं। और ऐसा ही लगता है जब हम रास्ते से जाते हैं और स्ट्रीट लाइट्स को देखते हैं, कभी कभी वो स्ट्रीट लाइट्स को देखते देखते बड़ा ही अच्छा सा लगता है। स्पेशली जब सर्दियाँ होती हैं तो आप देखेंगे अब उसकी फॉग की जो होती है ना वो ऐसे मतलब बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट बन जाता है, उसको शब्दों में बयान करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अब देखिए ज़रा गुड़गांव की सड़कों को देखने के लिए बड़ा ही मज़ा सा आ रहा है, उनकी स्ट्रीट लाइट्स को देखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा क्यों है बताऊँ आपको जल्दी से? ठीक है भाई, गुड़गांव में जो रोड्स की लाइट्स के पोल है ना

उन पर लगे हैं डस्ट कलेक्टर्स जी, जो लोगों की मतलब लोगों को ना अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं एकदम ऐसा कैचिंग पीपल्स अटेंशन ना, मतलब इतना अटेंशन ले रहे हैं कि इतनी अटेंशन तो कोई और लेता ही नहीं होगा। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये जितने भी डिवाइसेस हैं ना वो डिजाइंड है एक हेल्प करने के लिए, जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में और इन सबको रिड्यूस करना, पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करना, उसके अराउंड जितने भी बिजी रोड्स हैं, एक तरह से आप उस रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या डस्ट हुआ हुआ है, लेकिन आपने देखा कि एक लाइट पोल पर डस्ट कलेक्टर लगा हुआ है। अब वो क्या कलेक्ट कर रहा है? डस्ट कलेक्ट कर रहा है। भाई वाह, क्या मतलब क्या सोच है, जिसने भी सोचा ना सलाम है उसको। और बहुत सारे लोग ना इसे स्मार्ट अर्बन इनिशिएटिव कह रहे हैं और क्लीनर सराउंडिंग और बेटर एयर क्वालिटी के लिए भी बताया जा रहा है। ऑनेस्टली दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन को देखते हुए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आपका क्या कहना है मुझे बता सकते हैं 9868107070। भाई क्या ऐसे इनिशिएटिव दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन पर सच में रियल इम्पैक्ट डाल सकते हैं या डाल रहे हैं? आपका क्या मानना है मुझे मैसेज करके जरूर बताइए। फिलहाल जो है आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ और हम सब साथ हैं अपने एनवायरनमेंट के भी, क्योंकि अगर ये एनवायरनमेंट हम अपना साफ सुथरा रखेंगे, अपने आसपास पेड़ पौधे लगा के रखेंगे, तो देखिए ये जितनी गर्मी इतनी बढ़ रही है ना, उसे कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के हाथ में ही है और वो हम लगा सकते हैं, हम इंसान लगा सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं हम इंसान, ना सिर्फ पेड़ों के लिए जानवरों के लिए भी, बताऊंगी इस गाने के उस पार।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वैसे तारीफ तो ना दिल्ली वालों की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हद है। और मतलब वो सच में इतना इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद दिल्ली वालों की हीट टॉलरेंस अलग ही लेवल की हो रही है। हाँ जी, इंडिया गेट पे ऐसे जा जा के फोटोज खिंचवा रहे हैं और अपना आराम से घूम रहे हैं, टूरिस्ट बन के घूम रहे हैं बड़े आराम से। या जो उनके घरों में आए हुए ना, अभी मामा मामी के बच्चे आए हुए हैं, मौसी के बच्चे आए हुए हैं, सब अपना घूमने आए हुए हैं ना दिल्ली। भाई छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, तो घरों में आए हुए हैं, उनको लेके जा रहे हैं इंडिया गेट पर। ध्यान रखिए जरा, हीट वेव्स चल रही हैं। और आज का टेम्परेचर भी आपको बता देती हूँ, फिलहाल जो है 36 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और वैसे तो बोला जा रहा है कि आज बारिश होगी, वो भी बहुत ज़्यादा वाली बारिश होने वाली है 5 बजे के बाद से, लेकिन अभी यहाँ आसपास तो नहीं हो रही है। आपके एरिया में हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा जाते जाते बस इतना कहूँगी कि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। तो हो सके तो उनके लिए भी अपने घरों के बाहर या अपनी बिल्डिंग्स के बाहर, सोसाइटीज़ के बाहर पानी भर कर मिट्टी के पात्र में उनके लिए ज़रूर रखें। और जहाँ तक हो सके, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं आते जाते या जानवर दिख रहे हैं, उन्हें आप अपनी बोतल से कहीं किसी छोटी सी जगह पर पानी भी पिला सकते हैं, पुण्य का काम है। फिलहाल आप सबको छोड़े जा रही हूँ अगले प्रोग्राम के लिए, जो है मैसेज मसाला मिक्स। और वो कौन लेकर आएंगी? वो लेकर आएंगी रमा यादव। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो। फिलहाल मस्त बनेगा श्वेता को यहीं पे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और चेहरे पे रखिए मुस्कुराहट। न जाने उसे देखकर कौन मुस्कुराना सीख जाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है

भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 460 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर मैसेज मसाला मिक्स, मैसेज मसाला मिक्स लेकर आई हूँ मैं रमा यादव आपके लिए। और शुरुआत करते हैं गाने से। अचानक ही जब मैं आ गई ना यहाँ पे, जब मैं पहुँच गई तो मैंने देखा मौसम बदल गया, लेकिन जब मैं आ रही थी तब तो भरपूर गर्मी थी। भरपूर गर्मी की बातें अभी अभी श्वेता कर रही थी, अब मैं बातें करूंगी 9868107070 पर। मैसेज मसाला मिक्स है, मैसेज मसाला मिक्स में आपको क्या मैसेजेस भेजने ये मैं बताती हूँ इस गाने के बाद। सबसे पहले मेरा नमस्कार।

9868107070 नंबर है जहां पर आपको मैसेज करना और बताना है कि इन गर्मियों में आप क्या कर रहे हैं, गर्मियों में कैसे अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, गर्मियों में वो कौन सी खास चीज़ें हैं जिनको आप करके अपना जो दिन है वो बिता रहे हैं। 9868107070 वो नंबर है जहां पर आप ये बातें शेयर कर सकते हैं हमसे। हम सब यहीं पे हैं, रेनबो के जो लिसनर्स हैं।

बिल्कुल सुन लीजिए ज़रा, और हम भी बिल्कुल अब आपको सुनेंगे, क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं ना वो पढ़ने मुझे इतने अच्छे लगते हैं, उन्हीं का तो इंतज़ार रहता है, उन्हीं के लिए तो यहाँ पर आते हैं। और ये जो मैं मैसेज है पढ़ने जा रही हूँ, ये किसका है और क्या कह रहे हैं कि इतनी गर्मियों में ये क्या करें। गुड आफ्टरनून मेरे वाला सॉन्ग, आप अपने वाले सॉन्ग की बस बात मत कीजिए। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैसेज मसाला मिक्स। आज के टॉपिक पर हम यही कहना है कि हम घर में बैठे बैठे हैं, बस पानी पी रहे हैं और शाम तक कहीं बाहर नहीं निकलते। नाइस प्रेजेंटेशन, ये नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार। और रेलवे कॉलोनी जब भी सुनती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रमा यादव, मैं बुज़ुर्ग गर्मियों घर में बंद व्यस्त रहने, काव्य लेखन, लेख कहानी, शायरी, शेयर, कविताएं व्हाट्सएप फेसबुक से भेजता हूँ। क्या बात है, जब लेखन में प्रशंसा पत्र मिलता है तो लेखन का जज्बा बढ़ जाता है। अनिल शर्मा लिख रहे हैं सरिता विहार से, और इन्होंने सर्टिफिकेट भी भेजा है, क्या बात है। मैसेज मसाला मिक्स में रमा यादव साहिबा जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्ज हो, आदाब है आपको भी। ईद उल अज़हा की दिली मुबारक बाद कबूल करें, आप भी कबूल करें। गुनौर से आदिल कुमार तस्दीक, अली मुजफ्फर अली और लिख रहे हैं शुक्रिया और धन्यवाद। साथ में ये भी लिख रहे थे, मत पूछो कि गर्मी का दिन कैसा लग रहा है, सर से लेकर बुढ़ापे में पैर तक पसीना है। हाँ क्या बात है, इतना इस भयंकर गर्मी में थोड़ा हमने अपने अंदर बदलाव किया है। सुबह के नाश्ते में चाय कॉफ़ी बंद, और पराठा और गुड़ नाश्ते में ये चलता है, और अच्छा गुड़ ले रहे हैं, और दोपहर में थोड़ी रोटी थोड़े चावल दही के साथ, और शाम को 9 बजे खाना, 11 बजे हम जब सोते हैं तो 9 बजे खाना खाकर हम 2 घंटे अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं, जो कि 5-6 घंटे हम सोते हैं तो उसमें कमी ना हो सुबह तक। ओहो सोनू बिजनौर से आप बहुत ध्यान रख रहे हैं, ये मैसेज है। हम तो इस गर्मी के मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं, जब भी बाहर निकलते हैं तो चश्मा, कैप, पानी की बॉटल साथ में घर लेकर रूह अफजा और सत्तू पीते हैं जी। ये फारूक अली खान, फैजी, फरहान, फरहीन और ये सब लिख रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेस हैं। मुझे लग रहा है कि गर्मी के मौसम में आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आप ध्यान रख रहे हैं ना, मैं भी थोड़ा सा ध्यान रख लूँ। आज मैंने सोचा है गाने ज़्यादा बजाऊँ।

मैसेज तो लूंगी, क्यों नहीं लूंगी भाई, ज़रूर ज़रूरी है ना मैसेज। फिर भी आगे भी लिखिए कि गर्मी के मौसम में आप गर्मी के दिन कैसे बिता रहे हैं, और मैं मुझे दिखाई दे रहे हैं मैसेजेस, मैं लेती हूँ इस गाने के बाद।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: FM रेनबो पर सुन रहे मैसेज मसाला मिक्स। मैसेज मसाला मिक्स में मैं आपके साथ हूँ रमा, और मैसेजेस को मसाले में लपेट कर आप तक भेजने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपके जो मैसेज है ना, वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो इतने अच्छे लगते हैं कि उनसे ऐसा लगता है कि शाम जो है बन गई। और आज की जो बात है वो ये है कि आप अपने गर्मियों के जो दिनों को हैं कैसे बिता रहे हैं। तो मैं बस बहुत सारे जो के मैसेजेस हैं कि आप किस तरह से अपने इन दिनों को खूबसूरत बना रहे हैं, या मैं कह दूं कि इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं, आपने मुझे लिखकर भेजा है। और मैंने कहा था कि इस गाने के बाद मैं आपको बयान करूंगी आप ही के मैसेजेस, तो करना भी चाह रही हूँ। अभी आप मुझे ये बताएं कि अपने लिए ही कुछ कर रहे हैं या दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं? कि गर्मी में घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ जी मैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं गर्मी में घर से बाहर ये तो बताइए। कोई कह रहा है कि वाटर बॉटल लेके निकल रहे हैं, छाता लेके निकल रहे हैं और अपना ध्यान रख के निकल रहे हैं, वो तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात ये है कि इस चिलचिलाती हुई जो धूप है जिसमें मैं भी आई हूँ आपसे मिलने के लिए, उसमें ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे दूसरों का भी थोड़ा सा बचाव हो सके? ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैं अभी श्वेता को सुन रही थी ना, तो श्वेता ने मुझे कुछ ऐसा हिंट दिया कि आप जैसे इस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो कुछ बता के गई थी। और क्या बता के गई थी? कि आसपास बहुत छोटे छोटे जीव जंतु दिख रहे हैं, आप अपना ही नहीं उनका भी ख्याल रखिए। और जब मैं आ रही थी ना, तो मुझे भी एक बहुत ही ओल्ड डॉग जो है वो नज़र आया, और वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो पानी भी नहीं पीना चाह रहा है। मैसेज मसाला मिक्स है ये, और 9868107070 पर आपको मुझे भेजना है कि इस गर्मियों में, ये जो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इसमें ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि आप तो खुश रहे ही, जो आपके साथ है ना वो भी खुश रहे। तो देख रही हूँ मैं आपके लिए कोई एक खूबसूरत सा गाना चलाने की कोशिश।

कोशिश में हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ये लगेगा कि भाई गाने ही गाने चला रहे हैं, और गाने चलाने के अलावा तो हम आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मैसेज पढ़ेंगे ना आपके, बोला है, वादा किया है।

मिसेज मसाला मैक्स है ये मेरे साथ, मैं हूँ रमा और मुझे मालूम है कि आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। मैं भी मैसेजेस लेने को तैयार बैठी हूँ। बहुत चिलचिलाती हुई धूप है, उस चिलचिलाती हुई धूप का सामना करने करके आपके पास आई हूँ। और कोशिश तो रहती है जनाब कि जो पानी है वो भरपूर हम ही ना लें, पेड़ों को, पौधों को, पक्षियों

ओके, मेरे पास आपके मैसेजेस किसी ना किसी तरह तो किसी की मदद से आ गए हैं। सुशांत स्टूडियो में एंट्री कर चुके हैं, अगला प्रोग्राम उन्हीं का है ना, और उन्हीं की मदद से शुक्र है कि मैसेजेस भी आ गए हैं। सभी दोस्तों के लिए मेरा एक मुक्तक, कश्ती की किनारे पे तुम काट लेना पत्थर से हीरों को, तुम छांट लेना, मैं गम का समंदर समेटे हुए हूँ, खुशियों को मेरी तुम बांट लेना, तुम बांट लेना। प्रेमचंद प्रेमी जैतपुरा धामपुर बिजनौर से, मतलब अच्छा भी है लेकिन थोड़ा सा सेंटी मैसेज है। मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। कैसी हैं आप? रमा जी आपका स्वागत है। मेरा स्वागत तो हो गया लेकिन आप गर्मी का स्वागत कैसे पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, ये मैंने पूछा था। ईद मुबारक कह रहे हैं आप, आपको भी ईद मुबारक। मैडम रमा जी नमस्कार, क्या हुआ आप इतने गुस्से में क्यों हैं, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। मैं गर्मियों के मौसम में नमकीन लस्सी मुझे बहुत पसंद है। अब मैं कहीं पढ़ लेती हूँ कि नमकीन लस्सी मत लो, कहीं पढ़ लेती हूँ कि मीठी लस्सी मत लो, तो मैंने लस्सी लेना ही छोड़ दिया। रवि जोशी लिख रहे हैं मेरठ से, और मैंने साथ में अपना मसाला ऐड कर दिया है। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ा वन गाँव से, हम दुकान पर काम करते हैं जी, आम का पना इमली का पना ये बना कर लेते रहते हैं, घर की बनी छाछ और घर का भोजन, और साथ में एक प्याऊ लगा रखा है लोगों के लिए और अपने लिए। वाह, आपने तो कमाल ही कर रखा है, उज्जैन जिले में तो मतलब आनंद ही आनंद है। गुड इवनिंग मैम, गंज डुंडवारा से शमसुल कुमार राही, मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, सुकून दो ही जगह है, पहला किसी के दिल में रहो या किसी की दुआ में रहो। क्या बात है, सही बात कही, गर्मी सर्दी तो आएंगी और गर्मी सर्दी को ही अगर हम देखते रहे तो फिर दिल की बात तो रह जाएगी ना। खैर, मैसेजेस मैं और भी ले लेती हूँ बजाय बात करने के। गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील व जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना ने लिखा है, धूप कहें 45 पर हम कहें एसी यार, मटके का पानी खरबूजे की बहार, दोपहर में कहो घर रहो सरकार, शाम को सब मिल छत पर करें इजहार, पसीना पोंछो ग्लूकोज घोलो शिकन नहीं प्यार बांटो यार, गर्मी भले तन जलाए पर रिश्ते ठंडे मीठे रखो यार। क्या बात है, आदाब, हम सभी आपको सुन रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखिए, पानी खूब पीना है। फालतू में घर से, अरे फालतू में थोड़ी ना निकली हूँ, आप लोगों के लिए प्रोग्राम करने निकली हूँ। मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार ये मुझे कह रहे हैं मैं अपना ध्यान रखूँ, रख रही हूँ मैं ध्यान। जिला मुरादाबाद ग्रामपुर दूल्हापुर से मुकेश, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर, वो कह रहे हैं कि हम आपको सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रही हूँ ये वाला गाना। और मैसेजेस आपको करने 9868107070 पर।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: FM रेनबो है और FM रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स है, और मैसेज मसाला मिक्स की खास बात ये होती है कि मैसेज आप करते हैं, मसाला हम लगाते हैं। हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली। हाउ आर यू ऑन टुडेज टॉपिक? आई वुड लाइक टू से दैट इन दिस समर सीजन मैंगोज एंड आइसक्रीम्स आर माय फेवरेट एंड आई विल एन्जॉय देम। आई विल ऑल्सो एन्जॉय माय हॉबीज ऑफ प्लेइंग द पियानो एंड सिंगिंग सॉन्ग। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि भाई आइसक्रीम वगैरह जो खा रहे हो तो सोच समझ के खाना, बहुत बहुत बहुत ज़्यादा आइसक्रीम भी नहीं हो जानी चाहिए ना, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा आइसक्रीम हो जाती है तो फिर वो नुकसान भी करती है। एक और मैसेज आ रहा है। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं भटिंडा से हूँ। हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए मैं दही लस्सी, नींबू पानी, फ्रूट एंड सैलेड का सेवन करता हूँ, और मेरे घर के छत पर मैं बर्ड्स के लिए पीने का पानी रखता हूँ। 9868-7070 वो नंबर है जहाँ आप भी मुझे बता सकते हो कि आप इन गर्मियों का मुकाबला, बिल्कुल मैं कहूंगी मुकाबला, कैसे कर रहे हो।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: बिल्कुल, यह है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में मैसेज आप भेज रहे हैं, मसाला उसमें मैं लगा रही हूँ। गुड इवनिंग मैम, मीना फ्रॉम मध्य प्रदेश। इस चिलचिलाती धूप में जो भी बाहर जाकर अपना डेली जॉब करते हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने बॉडी को पानी वानी से सींचते रहें। और हाउसवाइफ्स घर में एडजस्ट कर लेती हैं, ऐसा नहीं है एडजस्ट कर लेती हैं, और मेरे को लगता है एसी भी ऑफ रखती हैं क्योंकि उन्हें बाहर के एनवायरनमेंट की भी चिंता होती है। तो इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। जल्दी से मैसेजेस ख़त्म कर रही हूँ। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, सलाम और कैसे हैं लिख रहे हैं, आपसे बात हो चुकी है मेरी। ईद उल अज़हा मुबारक कह रहे हैं मोहम्मद सरफराज आलम जौकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से। गुड इवनिंग रमा, कैसी हैं आप? हैप्पी ईद टू ऑल, थैंक यू सो मच। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब तो इसे हमें झेलना ही होगा। और नमस्ते मैम, मैं नवलू बरक फ्रॉम मलपण गोवा से ईद मुबारक कहता हूँ आपको और आप सबको बधाई देता हूं। तो मैं तो यही कहूंगी वेस्टर्न म्यूजिक का अगला प्रोग्राम लेके सुशांत जो है हमारे साथ हैं और उस प्रोग्राम के बाद मैं आपको मिलूंगी म्यूजिक मस्ती में और नॉनस्टॉप जो है गाने आपके लिए प्ले करूंगी। फिलहाल इस गाने के साथ मैं आपको छोड़कर चली, वापस मिलने के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे।

पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: आकाशवाणी।
1: यह रेनबो रेनबो पर अब चलेगी म्यूजिक और मस्ती, और म्यूजिक मस्ती में बस म्यूजिक जो है वो हमें मस्ती देता है, तो क्यों ना आज इससे शुरू करें। थोड़ा सा हटके बहुत ही स्वीट सा सॉन्ग है आपके लिए। मैं हूँ रमा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बबई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

म्यूजिक मस्ती से मैं रमा इजाजत लेती हूँ, आपसे मुलाकात करने आऊंगी फिर जल्दी ही, और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और ईद की बहुत सारी दुआएं आप सबको।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आज क्योंकि ईद उल अजहा है तो पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। कभी कभी दिल के किसी खास वजह से, कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई खास वजह ही चाहिए हो, बस एक हल्का सा एहसास काफी होता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब शाम धीरे धीरे उतरती है तो कुछ चेहरे, कुछ बातें और कुछ लम्हे खुद ब खुद याद आने लगते हैं। शायद इसी एहसास का नाम है आपकी याद आती रही, है ना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल से दिल तक, और मैं हूं आपके साथ ताहिर। और आज अगले एक घंटे तक हम उन्हीं एहसास के साथ रहेंगे जो कभी मुस्कुराहट देते हैं और कभी बिल्कुल खामोश कर देते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी याद आती रही। कभी कोई याद ऐसे आती है जैसे हवा का हल्का सा झोंका, छूकर निकल जाती है पर दिल को बदल जाती है।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

0: 102.6 आपके लिए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, FM रेनबो आप सुन रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ ताहिर, और प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा, जिसे हम कहते हैं आपकी याद आती रही।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। कभी एक गाना पूरी शाम का मूड बदल देता है और फिर लगता है कि जैसे वक्त ना थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़कर देखा जाए।

जनाब, यादें भी अजीब होती हैं। जब हम उन्हें भूलने की सोचते हैं तब वो और ज्यादा पास आ जाती हैं। नहीं बताइएगा।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। तो किस किस की याद आ रही है बताइए ना, जरूर आ रही होगी।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूँ आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा, जिसे कहते हैं आपकी याद आती रही। जिंदगी में कुछ लम्हे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, और अब वक्त है ये कहने का कि हाँ हमें जाना होगा, लेकिन हम आएंगे, हम 11 बजे आएंगे प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है रंगे महफिल। हाँ, जाने से पहले एक बात जरूर कहूँगा, कहना चाहूँगा, आज के दिन उर्दू अदब की दुनिया का एक बहुत रोशन नाम हमसे जुदा हो गया था, मशहूर शायर बशीत बद्र साहब, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। उनकी शायरी का खास बात यह है, ये थी कि वो मुश्किल अल्फाज में नहीं, बिल्कुल आम जुबां में दिल की बात कह

0: जाते थे। उन्होंने मोहब्बत की लिखी तन्हाई भी और जिंदगी की वो खामोशियां भी जिन्हें हम अक्सर महसूस करते हैं मगर कह नहीं पाते। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिले। ऐसे शायर कम पैदा होते हैं जो सिर्फ किताबों में ही नहीं लोगों की जिंदगी में भी रह जाते हैं। बशीर बद्र साहब को रेनबो की तरफ से खिराज अकीदत।
1: मुझे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को विद्यार्थियों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में

0: Well, you just heard Charlie Parker's The Street Beat. Well, moving ahead with another track, but this one, I have to take a short and sweet break beforehand. So off we go. Do not, I'll repeat that, do not touch that dial. I'll be right back after these messages. Break time.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है, शुरू होता है रंगे महफिल। रात फिर अपनी नरमी के साथ उतर आई है जनाब, और आज की महफिल में एक अजीब सी उदासी भी है, वो अपने साथ लेकर आई है उर्दू अदब के एक बहुत रोशन नाम डॉक्टर बशीर बद्र। आज हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर उनके अल्फाज, उनका लहजा, उनकी शायरी हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को

0: सफल बनाए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, मैं हूँ आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। आज रंगे महफिल थोड़ा सा मुख्तसर है। कभी कभी कुछ शायर सिर्फ किताबों तक नहीं रहते, वो आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी लिखी हुई एक लाइन कभी मुस्कुराहट दे जाती है और कभी खामोशी में साथ निभाती है। कुछ अल्फाज तो वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि गहरे लगने लगते हैं। अच्छी शायरी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता ये भी महसूस हो रहा है कि अब शायद हमें जाना होगा। कोई बात नहीं, एक गजल सुनिए फिर लौट कर वापस आता हूँ।

0: नारे आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: तो जनाब, आज की महफिल यहीं तक, और वक्त तो बिल्कुल होता जा रहा है, चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, हमें कहता है चलिए उठ जाइए और अगले प्रेजेंटर को हम देंगे इजाज़त यहाँ आने की, और इसी वादे के साथ जाएंगे कि बहुत जल्दी आपकी खिदमत में आए। जब तक तो ख्याल रखिए, खास तौर पर उन लोगों का जो आपका ख्याल रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के अध्यक्ष संजय गोविंद ने कहा कि लाउडियम और आसपास के क्षेत्रों में लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर रहते आए हैं और ये एकता आगे भी कायम रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी तो सिर्फ आगाज़ है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी इस खूबसूरत महफिल की बस शुरुआत भर हुई है और 12:11 हो चुके हैं और घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया है कि बस अब वो महफिल, वो बज़्म सज जाए और आगे बढ़ती जाए, परवान हासिल करती जाए जिसका सभी को इंतज़ार रहता है, दिन पिछला ख़त्म होकर अगला दिन शुरू होने के लिए। जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि ये इस दिन का या हर दिन का पहला प्रोग्राम होता है, पहला शो होता है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर। और आपसे मिलने का, आपसे मुलाकात का जो हसीन वक्त हमने मुकर्रर किया हुआ है कैलेंडर बदलते ही, वो बहुत जल्दी दाखिल हो जाता है। समाचारों के ठीक बाद हम दाखिल होते हैं एक खूबसूरत नगमे के साथ और तमाम ऐसी खुशखबरियों के साथ, शुभकामनाओं के साथ जो आपके हमारे सभी के जीवन से हर पल से हर लम्हे से जुड़ी हैं। मैं कोशिश करता हूं अपने हर प्रोग्राम को नायाब बनाने की और ये करने की कि भाई हमारे जो दोस्त हैं जो इस वक्त जागकर हमें सुन रहे हैं, बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, बहुत सारी अपनी परेशानियों को एक तरफ रखते हुए आप हमें सुन रहे हैं और ये बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत अच्छा लगता है। और आभार आप सभी का, बहुत एहतराम आप सभी का कि आप हमें सुनते हैं रात के इस वक्त भी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा श्रोता। और अब जब से ये ऐप न्यूज़ ऑन एयर का चलन शुरू हुआ है हमारी तरफ से, तब से तो देश और दुनिया में तमाम हमारे लिसनर्स बढ़े हैं, श्रोता हमें सुनते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और स्वागत इस कार्यक्रम में जिसे आप और हम कहते हैं ज़ीरो आवर शो, जो कि आवर्स ज़ीरो का शुरू होते ही आपके रेडियो सेट्स पर, आपके मोबाइल्स पर ऐप के जरिए दस्तक दे देता है। तो आप आ चुके हैं ये हमें पता चल रहा है आपके मैसेजेस देखकर, और गाना सुनते ही आपके जो मैसेजेस हैं उनकी भरमार शुरू हुई है, पढ़ेंगे इत्मीनान से और मैं कोशिश करूंगा जवाब भी देने की। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ इन्हीं फ्रिक्वेंसीज पर, इसी प्रोग्राम के साथ जिसका नाम एक बार फिर बता दूं ज़ीरो आवर शो है। और ज़ीरो आवर शो में आप सभी का एहतरामन शुक्रिया कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। मैं रजत आपका दोस्त, और लेकर आएंगे ऐसी कुछ ख़ास खूबसूरत नगमे, खूबसूरत गाने जो आज भी आपके दिल में अमर हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुशी की, यादों की लौ जलाए रखते हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत प्रोग्राम में।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 to 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
7: आकाशवाणी at 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल,
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह

0: के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली है। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के युद्ध विराम विस्तार को लेकर समझौते के मसौदे पर सहमति बनी है। हालांकि इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान हार्मुज जल डमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए बिना किसी रोक टोक के खोल देगा और वहां बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को 30 दिनों के भीतर हटाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM रेनबो के साथ। 1:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: श्रेया घोषाल जी की आवाज में अगर तुम मिल जाओ। 1:11 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9:00।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: एक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक बजकर 27 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो के साथ। 1:37 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्य

0: मंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। यह कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमरीका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया। इससे पहले अमरीका ने होर्मुज जल डरमुर मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमरीकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

2:11 और प्रोग्राम का आगाज़ फिल्म जीना तेरी गली में से किया हमने, और प्रोग्राम का नाम है बुलाए ना बने मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने ट्यून किया हुआ है। इसके अलावा जो लोग हमारे साथ देश और दुनिया से जुड़े हैं वो हैं आकाशवाणी की ऐप के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप। बुलाए ना बने प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।

0: और आने वाले जो दिन की शुरुआत है उससे पहले कुछ खूबसूरत दिलकश और सदाबहार गाने आप के पेश नज़र कर दें, हमारी ये कोशिश रहती है, क्योंकि आने वाला दिन फिर एक थकावट और नई चुनौतियां लेकर आता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जो तरोताजगी आपको मिले वो आपकी मेहनत के साथ चले और आपको आपकी मेहनत के अच्छे नतीजे मिले, अच्छे अंजाम हासिल हों और आप सभी का जो आने वाला दिन है वो बहुत ही मंगलमय और शुभकारी हो। इसी कोशिश को हम अंजाम तक पहुंचाते हैं अपने जरिए, अपने मार्फत, अपने तरीके के रास्ते, और हमारा तरीका है खूबसूरत दिल अजीज गाने और अपने दौर के खूबसूरत नगमे, बहुत ही दिलकश नगमे अपनी तरफ से लेके आने की कोशिश रहेगी आने वाले 40-45 मिनट में। तो प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए और फिर बताइए हमें कैसा लगा ये शो, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम। आप जुड़े हैं मेरे साथ भुलाए ना बने प्रोग्राम में, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार के साथ स्वागतम।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। यह कार्रवाई दक्षिण ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज मेरे यानी अर्चित के साथ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: 3:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 3:33 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वे कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थंगडी स्थित सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वे केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री मांडविया इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल अवसंरचना विकास तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे युवा कार्यक्रम विभाग के एक विचार विमर्श सत्र को भी संबोधित करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉन्राड के संगमा के

राज्य की राजधानी में 132 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 4:10 और ये हो चुका है भोर का अभिवादन शुरू। और भोर का अभिवादन, सुबह का अभिनंदन हम कैसे करते हैं, रोज इसी फ्रीक्वेंसी पर, इसी प्रोग्राम के जरिए जो बस आगाज ले चुका है, इस खूबसूरत गाने के साथ, पंचमदा की आवाज के साथ। और प्रोग्राम का नाम है सारेगामा। सारेगामा की मनमोहक और पुरातन धुनों से जड़ित हमारा ये कार्यक्रम आपको अलग-अलग मूड के गाने यहाँ सुनाने की कोशिश करता है। और कोशिश करते हैं कि इसके बाद जो वक्त शुरू होगा ना, जब पहली किरण सूरज की धरती पर पड़ेगी और बस हमें उठाएगी, जगाएगी, उसके बाद से हलचलें बस करवटें लेने लग जाती हैं, शुरुआत होने लग जाती है, वहाँ सारेगामा हमारी एक स्वस्थ शुरुआत को आगाज देता है। और कोशिश करते हैं कि हम उसी धुन को आगे तक लेकर चलें जो सारेगामा ने हमें दी है, जो ताजगी हमें देगी। सारेगामा की सात सुरों की वो धुन, वो सादगी, वो ताजगी पूरे दिन हमारे साथ रहेगी। इसी कोशिश को फलीभूत करने के लिए लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं हम सब, आप और हम। और इस प्रोग्राम में भी मैं देख रहा हूँ मैसेजेस आने शुरू हो गए इस गाने के बाद ही। खैर, अभी गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और प्रोग्राम को सिलसिला शुरू करते हैं। और कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से अपनी परंपरा के अनुरूप चलते हुए सारेगामा आपको दिखाए सही मंजिल गीत संगीत की। अलग अलग दौर के गानों को शामिल करके मैं एक बार फिर से खूबसूरत और नज़ाकत और नफासत का पिटारा अपनी तरफ से प्रयास करके लाया हूँ आपके लिए। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत अभिवादन सारेगामा में, आकाशवाणी रेनबो 102.6। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए तो आप जुड़ ही सकते हैं, देश और दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से आकाशवाणी FM रेनबो के प्रोग्राम सुनने के लिए। फिलहाल ये है दिन का चौथा शो और सारेगामा का ये पहला शो आज के दिन का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वो कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन कल पणजी के गोवा में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड्डी स्थित CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वो केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी बधाई दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजाति

ये समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। हांगकांग में 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो के साथ। 5:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।

0: घायल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,